आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 जून सन 2026। प्रातः के 5:58 और ठीक 47 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की ये प्रथम प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। सवेरे के 6 बज रहे हैं, कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियो शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हुए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं।

शिवमय होने के लिए शिव की शरण में जाना पड़ता है। शिव की शरण प्राप्त हो जाए तो अकल्याण का भाव ही समाप्त हो जाता है।

माया जीवन यापन के साधनों में से एक है। जीवन में अनेकानेक मनोरथ माया के द्वारा सिद्ध भी होते हैं, लेकिन मनुष्य माया के वशीभूत होकर कब अनाचारी हो जाता है पता ही नहीं चलता। परंतु अंत समय माया भी साथ छोड़ जाती है।

और अली उसका दरवाज़ा, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये एलानिया है रसूलों के सरदार का, दिल से जबान तक विर्द मौला अली हो तो बेड़ा पार है।

मौसमी दत्ता और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना। इसी के साथ कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है संगीतमय श्री रामचरितमानस गान।

वाल्मीकि आश्रम में पहुंच दंडवत प्रणाम कुशलक्षेम की औपचारिकताओं के पश्चात श्री राम ने ऋषिवर से कोई ऐसा स्थान बताने की विनती की जहां पत्तों घास आदि की कुटी बनाकर वो कुछ काल निवास कर सकें। ऋषि बोले, हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं और जनक नंदिनी माया स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपका स्वरूप वाणी तथा बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद नेत नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। इस दृश्य जगत के आप दृष्टा हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके इंगित पर गतिशील होते हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तो अन्य कोई कैसे जान सकता है? आपको वही जान सकता है जिसे आप जानने देते हैं, और जानते ही वो आपका स्वरूप बन जाता है। ऐसे आप भला मुझसे पूछ रहे हैं कि कहां रहें, किंतु मुझे आपसे यह पूछने में संकोच हो रहा है कि आप वो स्थान बता दें जहां आप नहीं हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे संगीतमय श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है चिंतन।
1: कुदरत की रचना में मानव एक आदर्श और सबसे बुद्धिमान प्राणी है, क्योंकि उसके पास चिंतन शक्ति और विवेक शक्ति है। मानव जीवन ही अन्य सभी प्राणियों के लिए भी अनुकरणीय होता है। मानव जो कुछ सोच रहा है और जैसा सोच रहा है, उसकी तरंगे चारों ओर फैलती हैं। मन अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए इन तरंगों का प्रभाव स्थूल प्रकृति पर, अन्य मानवों और जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। यदि मानव समाज में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ जाए तो पशु भी अधिक हिंसक हो जाते हैं।

0: बदते ही जीवन में खुशी, प्रफुल्लता और सच्चे आनंद का प्रादुर्भाव होता है। सहज जीने की कला का आधार भी संतुलन में समाया है। एक बार महात्मा बुद्ध का एक शिष्य आनंद दीक्षा ग्रहण करते ही उग्र तपस्या में लीन हो गया। उसे तन की भी सुध नहीं थी। परिणाम ये हुआ कि तन सूखकर कांटा हो गया। एक दिन अचानक महात्मा बुद्ध की दृष्टि आनंद पर पड़ी। उन्होंने उससे पूछा, वत्स, तुम तो वीणा बहुत अच्छी बजाते हो, तो चलो एक राग तो बजाकर दिखाओ। आनंद बोले, पर ये कैसे बजेगी? इसके तो सभी तार ढीले हैं। बुद्ध बोले, तारों को कस दिया जाए, तब बजा लेना। जब दोबारा वीणा आनंद के हाथों में आई तो उलझन में पड़ गए और बोले, अरे यदि वीणा को अब बजाया गया तो इसके सब तार टूट जाएंगे, क्योंकि इनमें तो बहुत अधिक तनाव है। बुद्ध ने कहा, आओ इसे ठीक करते हैं। तारों में तनाव संतुलित हुआ और वीणा पर धुन झंकृत हो गई। जब वादन समाप्त हुआ तो महात्मा बुद्ध बोले, ये जीवन भी वीणा की तार की तरह है। जैसे वीणा के तार से धुन निकालने के लिए उसे मध्य में रखा जाता है, इसी प्रकार जीवन की वीणा से आनंद, प्रेम, सुख शांति के स्वर तभी झंकृत होते हैं जब वो मध्य में संतुलित हो। संतुलन का अर्थ बराबर बराबर नहीं, पर उतना जिस अनुपात में जो आवश्यक हो। जीवन के प्रत्येक कार्यकलाप में इसकी उपयोगिता है। हमारे मनोभावों को भी इस परिप्रेक्ष्य में भूला नहीं जा सकता, क्योंकि जीवन में भावुकता और व्यवहारिकता में संतुलन भी उतना ही वांछनीय है। इस भौतिक युग में वैज्ञानिक यांत्रिकता के प्रभाव से अछूता हमारा मन भी नहीं रहा है, इसलिए भूल करके भी क्षमा मांगना तो दूर, उसका पछतावा भी हम नहीं किया करते। व्यवहारिक बनो, यही आज की मांग है। भावुक होना आज की तारीख में व्यवहारिक नहीं। भावुकता कमजोरी का पर्याय है जो स्वयं को हास्यास्पद स्थिति तक पहुंचा सकती है, यदि समय पर सचेत रहकर संतुलित सोच के दायरे में रखकर मनन न किया जाए। जीवन की लहरों के उतार चढ़ाव का सही जायजा लेकर आगे बढ़ोगे तो न सपने टूटने का दर्द होगा और न ही अपेक्षाओं के अनुरूप न पाने की तड़प। सब कुछ हमारे हाथ में है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। काव्यधारा के अंतर्गत आइए सुनते हैं श्री शैंकी जैन से उनका पूर्व प्रसारित काव्य पाठ।
2: धर्मों की आपाधापी में सारी आवाम भूल गए, धर्मों की आपाधापी में सारी आवाम भूल गए, हिंदू मुस्लिम पहचान हुई मानवता नाम भूल गए, हिंदू मुस्लिम पहचान हुई मानवता नाम भूल गए, मंदिर में ढूंढा करते हैं मर्यादा में राम भूल गए, मंदिर में ढूंढा करते हैं मर्यादा में राम भूल गए, नफरत से रहते हैं हम सब, नफरत से रहते हैं हम सब, स्नेह घनश्याम भूल गए, चंद पैसों में बिकता इंसान खुद का ही दाम भूल गए, चंद पैसों में बिकता इंसान खुद का ही दाम भूल गए, झूठों की बस्ती के शोरों में, झूठों की बस्ती के शोरों में नानक सतनाम भूल गए, सत्य अहिंसा ख्वाब हुई, सत्य अहिंसा ख्वाब हुई जब जय जिनानाम भूल गए, सत्य अहिंसा ख्वाब हुई जब जय जिनानाम भूल गए, दया दान सम्मान गए जब, दया दान सम्मान गए जब शरणम बुद्धाम भूल गए, दया दान सम्मान गए जब शरणम बुद्धाम भूल गए। मेरी अगली कविता है खुद में ही। खुद में ही गिरफ्तार हूँ, खुद में ही गिरफ्तार हूँ एक अटूट दीवार हूँ, खुद में ही गिरफ्तार हूँ एक अटूट दीवार हूँ, खुद में ही जीत हूँ खुद में ही हार हूँ, खुद में ही जीत हूँ खुद में ही हार हूँ, कभी रक्त सा लाल कभी शीतल जलधार हूँ, कभी रक्त सा लाल कभी शीतल जलधार हूँ, हौसले जो मौन साधे घोष सा तैयार हूँ, हौसले जो मौन साधे घोष सा तैयार हूँ, पीछे जाना क्या जानू, पीछे जाना क्या जानू आर हूँ या पार हूँ,

मैं ही गिरफ्तार हूँ एक अटूट दीवार हूँ। अगली जो गजल है वो है लोग, सूरज के जैसे ढलते हैं लोग, सूरज के जैसे ढलते हैं लोग, धूप से ज्यादा दूसरों से जलते हैं लोग। सूरज के जैसे ढलते हैं लोग, धूप से ज्यादा दूसरों से जलते हैं लोग। मतलब से होते हैं रिश्ते यहाँ, मतलब से होते हैं रिश्ते यहाँ, रोज रोज न जाने घर बदलते हैं लोग। मतलब से होते हैं रिश्ते यहाँ, रोज रोज न जाने घर बदलते हैं लोग। जीते जी कोई पूछने नहीं आता, जीते जी कोई पूछने नहीं आता, अर्थी के साथ कुछ कदम चलते हैं लोग। जीते जी कोई पूछने नहीं आता, अर्थी के साथ कुछ कदम चलते हैं लोग। कद्र नहीं वक्त पर किसी के जज्बात की, कद्र नहीं वक्त पर किसी के जज्बात की, बेवक्त फिर यहाँ हाथ मलते हैं लोग, बेवक्त फिर यहाँ हाथ मलते हैं लोग। सूरज के जैसे ढलते हैं लोग, धूप से ज्यादा दूसरों से जलते हैं लोग। अगली कविता है कहाँ ढूंढे, जो लिख सके किस्मत अपनी ऐसी रोशनाई कहाँ ढूंढे, जो लिख सके किस्मत अपनी ऐसी रोशनाई कहाँ ढूंढे। भरे हैं लबालब आंसुओं से, भरे हैं लबालब आंसुओं से, वो गहराई कहाँ ढूंढे। घिस रहे हैं दिनों दिन खोलने को किस्मत का दरवाजा, घिस रहे हैं दिनों दिन खोलने को किस्मत का दरवाजा। या खुदा वो चिराग या सुराई कहाँ ढूंढे, या खुदा वो चिराग या सुराई कहाँ ढूंढे। चल रहे हैं अंधेरों में रोशनी की तलाश में, चल रहे हैं अंधेरों में रोशनी की तलाश में, अब हाल फिलहाल में परछाई कहाँ ढूंढे, अब हाल फिलहाल में परछाई कहाँ ढूंढे। जो लिख सके किस्मत अपनी ऐसी रोशनाई कहाँ ढूंढे, भरे हैं लबालब आंसुओं से, वो गहराई कहाँ ढूंढे। मेरी अगली जो गजल है वो है काम नहीं आती, जरूरत से ज्यादा रहनुमाई काम नहीं आती, जरूरत से ज्यादा रहनुमाई काम नहीं आती, बरसों की जमा कमाई काम नहीं आती, जरूरत से ज्यादा रहनुमाई काम नहीं आती, बरसों की जमा कमाई काम नहीं आती। जख्म का इलाज मुमकिन है वक्त रहते, जख्म का इलाज मुमकिन है वक्त रहते, वक्त बीत जाने पर दवाई काम नहीं आती, वक्त बीत जाने पर दवाई काम नहीं आती। रोशनी में देता है साथ हर कोई, रोशनी में देता है साथ हर कोई, अंधेरों में खुद की परछाई काम नहीं आती, अंधेरों में खुद की ही परछाई काम नहीं आती। लफ्ज मानते हैं दिल की नहीं मानते, लफ्ज मानते हैं दिल की नहीं मानते, तल्ख लहजा हो तो बिनाई काम नहीं आती, तल्ख लहजा हो तो बिनाई काम नहीं आती। डूबना हो तो तेरी याद ही बहुत है, डूबना हो तो तेरी याद ही बहुत है, हर जगह समंदर की गहराई काम नहीं आती, हर जगह समंदर की गहराई काम नहीं आती। आधुनिक ना सही मगर पागल तो हम भी नहीं, आधुनिक ना सही मगर पागल तो हम भी नहीं, कुर्ता पाजामा पहना हो तो टाई काम नहीं आती, कुर्ता पाजामा पहना हो तो टाई काम नहीं आती। जो कैद है यादों में किसी की मुसलसल, जो कैद है यादों में किसी की मुसलसल, उनके लिए फिर कोई रिहाई काम नहीं आती, उनके लिए फिर कोई रिहाई काम नहीं आती। जिनको सजा मुकर्रर है बिना सबूतों गवाह के, जिनको सजा मुकर्रर है बिना सबूतों गवाह के, उनके लिए फिर कोई सुनवाई काम नहीं आती, उनके लिए फिर कोई सुनवाई काम नहीं आती। थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ खोना ठीक नहीं, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ खोना ठीक नहीं, इतना भी अच्छा होना ठीक नहीं, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ खोना ठीक नहीं, इतना भी अच्छा होना ठीक नहीं। इस दुनिया में कौन अपना है सदा के लिए, इस दुनिया में कौन अपना है सदा के लिए, किसी के लिए हर रोज रोना ठीक नहीं, किसी के लिए हर रोज रोना ठीक नहीं। कुछ सपने देखकर भी कोई फायदा नहीं, कुछ सपने देखकर भी कोई फायदा नहीं, उनके लिए दिन में भी सोना ठीक नहीं, उनके लिए दिन में भी सोना ठीक नहीं। कहाँ छिपा कर रखें खुद को खुद ही में, कहाँ छिपा कर रखें खुद को खुद ही में, टूटे हैं इतना के कोई दिल का कोना ठीक नहीं,

0: टूटे हैं इतना के कोई दिल का कोना ठीक नहीं, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ खोना ठीक नहीं, इतना भी अच्छा होना ठीक नहीं। हर सांस पर पहरेदारी है, क्या यही दुनियादारी है? हर सांस पर पहरेदारी है, क्या यही दुनियादारी है? रंग बदलते हैं हर एक आदमी, धोखा ही अब ईमानदारी है। रंग बदलते हैं हर एक आदमी, धोखा ही अब ईमानदारी है। कर करके भी बुरे हम ही हैं, इससे अच्छा तो फिर नाकारी है। एक तरफ हम हैं अपने हौसले लिए, एक तरफ खिलाफ ये दुनिया सारी है। एक तरफ हम हैं अपने हौसले लिए, एक तरफ खिलाफ ये दुनिया सारी है। दया धर्म दान कुछ नहीं है अब, अच्छे लोगों की दहर में महामारी है। अच्छे लोगों की दहर में महामारी है। बिकते हैं रिश्ते हर मोड़ पर हर दाम पर, बिकते हैं रिश्ते हर मोड़ पर हर दाम पर। यहां कोई व्यापारी कोई जुआरी है, यहां कोई व्यापारी कोई जुआरी है। किसे अपना कहें और किसे अपना समझें, किसे अपना कहें और किसे अपना समझें। बस एक हम हैं और चार दीवारी है, बस एक हम हैं और चार दीवारी है। हर सांस पर पहरेदारी है, क्या यही दुनियादारी है? उसका जिंदगी में कोई डेरा नहीं है वो जो किसी भी तरह मेरा नहीं है। उसका जिंदगी में कोई भी डेरा नहीं है वो जो किसी भी तरह मेरा नहीं है। ये जो चुना है तुमने खुद से ही हिज्र, ये जो चुना है तुमने खुद से ही हिज्र। ये कोई समय का फेरा नहीं है, ये कोई समय का फेरा नहीं है। उठाकर फेंक दे कोई भी अपनी मर्जी से, उठाकर फेंक दे कोई भी अपनी मर्जी से। ये दिल मेरा ऐरा गैरा नहीं है, ये दिल मेरा ऐरा गैरा नहीं है। आज यहां कल वहां नहीं चलता इश्क में, आज यहां कल वहां नहीं चलता इश्क में। ये मेरा दिल है कोई रैन बसेरा नहीं है, ये मेरा दिल है कोई रैन बसेरा नहीं है। मेरा तारुफ हो तो हो सलीके से तेरी महफिल में, मेरा तारुफ हो तो हो सलीके से तेरी महफिल में। ये आदमी वगैरह वगैरह नहीं है, ये आदमी वगैरह वगैरह नहीं है।
1: काव्यधारा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे श्री शैंकी जैन से उनका पूर्व प्रसारित काव्य पाठ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे, पहले संस्कृत में तत्पश्चात हिंदी में।
2: आकाशवाणी संप्रति प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरम् अद्य आरभ्यमाणस्य 25वें G7 शिखर सम्मेलनस्य आयोजनाय सज्जः अस्ति। आल्पस पर्वत श्रेण्याः लेमनाख्य सरोवरस्य च मध्ये स्थितं सुरम्यं लेक्सेंड नगरं वैश्विक कूटनीतेः केन्द्ररूपेण परिवर्तितमस्ति, यत्र नेतारः प्रतिनिधयश्च त्रिदिवसीयेऽस्मिन् कार्यक्रमे आगच्छन्ति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रों अद्य अपराह्णे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान इत्यादीनां G7 राष्ट्राणां नेतृणां यूरोपीय परिषदः यूरोपीय आयोगस्य च अध्यक्षैः सह औपचारिकरूपेण स्वागतं करिष्यति। अयं शिखरसम्मेलनं तस्मिन् समये भवति यदा विश्वं भूराजनैतिकसङ्कटैः आर्थिक अनिश्चिततया नूतनप्रौद्योगिकीनां द्रुतविकासेन च ग्रसितमस्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः आउटरीच इत्येतेषु सत्रेषु भागं ग्रहीष्यति। शिखरसम्मेलने भारतस्य सहभागित्वेन प्रमुख वैश्विक विषयेषु चर्चासु योगदानं कुर्वन् वैश्विक दक्षिणस्य प्राथमिकताः चिन्ताः च प्रकाशयितुम् अवसराः प्राप्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन सह विस्तृत चर्चां विधाय भारत फ्रांस विशेष वैश्विक सामरिक सहभागित्वं सुदृढं कर्तुं चर्चासु भागम् अगृह्णन् फ्रांस देशस्य नीस नगरस्य स्वयात्रा समापिता। विदेश मन्त्रालयेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः फ्रांस देशस्य यात्रायाः परिणामे विशेष सूचनाः प्रदत्ताः। सूचनायां विदेश सचिवः विक्रम मिश्री फ्रांस भारत नवान्वेषणस्य मार्गचित्रं 30,000 इति अस्याः यात्रायाः प्रमुखं परिणामम् इति वर्णितवान्, यस्योद्देश्यं महत्वपूर्ण उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीषु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधनेषु शैक्षणिक विनिमयेषु च सहयोगं सुदृढं कर्तुमस्ति। उत्तर प्रदेशस्य गौतम बुद्ध नगरस्य जेवर नगरे स्थितात् नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकात् वाणिज्य विमानसेवाः अद्य आरभ्यन्ते। इंडिगो एयरलाइन्स संस्थया प्रथमं विमानं लखनऊतः प्रातः 5:07 प्रचालयिष्यते। नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके प्रातः 5:08 तद्विमानम् आगमिष्यति। तदनन्तरं नोएडा नगरात् बेंगलुरु नगरं प्रति प्रथमं नियमितं वाणिज्यिक विमानम् अपि प्रचलिष्यति। एकं विमानं लखनऊ नगरं प्रति प्रस्थास्यति। जेवरस्य एमएलए धीरेन्द्र सिंहेन सह प्रथमे विमाने 20 महिलाभिः सह 270,000 यावत् कृषकाः भविष्यन्ति। एते कृषकाः ते सन्ति येषां भूमिः विमानस्थानकस्य कृते अधिगृहीता आसीत्। लखनऊ नगरं प्राप्य एते कृषकाः मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन सह मिलित्वा कार्तज्ञतां प्रकटयिष्यन्ति। अद्य विश्व वायु दिवसः आचर्यते। पवन शक्तेः जलवायु परिवर्तनं प्रतिरोधे तस्यां भूमिकां च प्रोत्साहनाय प्रतिवर्षं जून मासस्य 15 अयं दिवसः आचर्यते। भारतम् अद्य गोवा राज्ये 26,000 वैश्विक वायु दिवस सम्मेलनस्य आयोजनं करिष्यति। सम्मेलने सर्वकारेण नियामकैः विकासकैः निर्मातृभिः विशेषज्ञैः च सह पूर्णोपवेशनं करिष्यति। महिलानां आईसीसी 20-20 विश्वचषक क्रीडायां बर्मिंघम नगरस्य एजवेस्टन नगरे ग्रुपे क्रीडायां भारतेन पाकिस्तान दलं 64 पराजितम् इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
4: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
3: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही वैश्विक तेल आपूर्ति के 1/5 हिस्से का परिवहन करने वाला हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन का योगदान दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। भारत अब 17 जून को नीदरलैंड से खेलेगा। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया है। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे के 7:05 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आइए सुनते हैं वजन कम करने के उपाय से संबंधित ये जानकारी।
5: वजन घटाने के लिए सही वक्त पर सही खाना बेहद जरूरी है। अगर वजन घटाना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि कोई भी खाना छोड़े नहीं। 3 प्रॉपर मील और बीच में 2 स्नैक्स जरूर लें। कोई भी खाना छोड़ोगे तो अगली बार ज्यादा खाओगे, जो सही नहीं है। दिन की शुरुआत कॉफी या चाय से न करें। नींबू पानी जूस लिया जा सकता है। दिन भर के खाने में सबसे ज्यादा फोकस ब्रेकफास्ट पर होना चाहिए। अक्सर लोग वजन कम करने के धुन में ब्रेकफास्ट नहीं लेते, लेकिन शोध ये कहते हैं कि अगर नियमित रूप से ब्रेकफास्ट लिया जाए तो लंबी अवधि में वजन कम होता है। दिन का खाना पूरा होना चाहिए, जबकि डिनर सबसे हल्का। डिनर रात में 8 बजे तक कर लेना चाहिए। ऐसा संभव नहीं है तो भी सोने से 2 घंटे पहले खाना जरूर खा लें। अगर देर रात तक जागते हैं और भूख लगती है तो फ्रूट्स या सलाद खाने चाहिए। शुगर, जंक फूड, फास्ट फूड, मिठाइयां खाने की लिस्ट से निकाल दें। कैंडी, जेली, शहद, मिठाई और सॉफ्ट ड्रिंक से दूर रहें। इसी तरह बिस्किट, केक, पेस्ट्री में काफी फैट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है, जो मोटापा बढ़ाता है। चीनी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। 5 ग्राम यानी 1 चम्मच चीनी में 20 कैलोरी होती है। परंपरागत मसाले न सिर्फ स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर भी होते हैं। बस इन्हें भूनने के लिए ज्यादा तेल का इस्तेमाल न किया जाए। बिना छना आटा खाएं। गेहूं के साथ चने का आटा मिलाने से पाचन अच्छा होता है।

0: है। गेहूं या जौ का आटा बिना छना, ब्राउन ब्रेड, दलिया, कॉर्न या व्हीट फ्लैक्स, ब्राउन राइस व छिलके वाली दालें आदि खाएं। अंकुरित अनाज व दालें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन से भरपूर होती हैं। मौसमी फल खाएं, जूस के बजाय साबुत फल बेहतर है। सेब के साथ साथ ज्यादातर सभी फलों के छिलकों में पेक्टिन पाया जाता है, ये वसा को अवशोषित करता है। हफ्ते में कम से कम 3 बार सोयाबीन खाने से शरीर में फैट से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। सोयाबीन को अंकुरित करके रोज सुबह लिया जा सकता है। इसके अलावा लहसुन का रस शरीर में मौजूद फैट्स को कम करने में मददगार है। लहसुन कच्चा खाएं और चबाकर खाएं तो बेहतर है। साथ ही मुट्ठी भर नट्स रोज खाने चाहिए। इनमें बादाम, किशमिश, अखरोट और पिस्ता ले सकते हैं, लेकिन ये फ्राइड ना हो और इनमें नमक भी नहीं होना चाहिए। वजन कम करना चाहते हैं तो ज्यादातर सफेद चीजें, आलू, मैदा, चीनी, चावल आदि कम करें और मल्टीग्रेन या मल्टी कलर खाने जैसे दालें, गेहूं, चना, जौ, गाजर, पालक, सेब, पपीता आदि पर जोर दें। बिना फैट वाला दूध या दही खाएं। दूध में फैट कम करने के लिए उसमें पानी मिलाने से बेहतर है कि मलाई उतार लें। पानी मिलाने से दूध में पोषक तत्व कम होते हैं। सोया से बना पनीर, दूध और दही खा सकते हैं। जिन्हें दूध या सोया प्रोडक्ट से एलर्जी है वे राजमा, नींबू, टमाटर, मेथी, पालक, बादाम, काजू जैसी चीजें खाकर कैल्शियम की कमी पूरा कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 लीटर पानी व तरल पदार्थ लें। पानी न सिर्फ फैट कम करता है बल्कि शरीर से जहरीले तत्वों को भी निकालता है। ये भूख कम करता है और कब्ज रोकता है। खाने में 15 मिनट बाद घूट घूट कर गर्म पानी पीना चाहिए। 50 साल के आसपास का समय महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस उम्र में अक्सर मोटापा आने लगता है। दरअसल महिलाओं में इस उम्र में मासिक धर्म बंद होने वाला होता है और उनकी हार्मोन्स प्रक्रिया में बदलाव आने लगता है। इस उम्र में थकावट आदि रहने से महिलाएं आराम परस्त हो जाती हैं और उनके शरीर का वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ पुरुषों को इस उम्र में दमा, खांसी, गठिया, जोड़ों का दर्द आदि हो जाते हैं, जिससे उनकी जिंदगी घर के दायरे में सिमट कर रह जाती है। ये स्थिति उनके मोटापे का कारण बन जाती है। ऐसे लोगों को, महिलाएं हो या पुरुष, घर के अंदर ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम करते रहना चाहिए, जिससे वजन पर नियंत्रण रखा जा सके।
1: स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वजन कम करने के उपाय संबंधित जानकारी। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं खेती की बातें।
2: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों खेती बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं पशुओं के ब्याहते समय जरूरी ध्यान रखने योग्य बातें। किसान भाइयों हम सभी खेती किसानी करते हैं, साथ ही साथ पशुपालन करते हैं। भाई हम जो हमारे पशु होते हैं, चाहे गाय का पशु हो चाहे भैंस का पशु, पशुओं का स्वास्थ्य और उनकी सही देखभाल सीधे उनकी उत्पादन क्षमता को प्रभावित करती है। किसान भाइयों विशेष रूप से ब्याहते समय पशुओं की देखभाल अत्यंत आवश्यक है। किसान भाइयों हमारा पशु ब्याहते समय जब ब्याए तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या हमें उस समय पर भैया ऐसे इंतजाम करने हैं ताकि भाई हमारा पशु जो है सावधानी पूर्वक ब्या ले और भाई समय से जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। तो किसान भाइयों पशु के ब्याते समय सही देखभाल बहुत जरूरी होती है। भाई ब्याने से पहले कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होती है। किसान भाइयों सबसे पहले ब्याने से पहले हमें ये सावधानी बरतनी है कि भैया साफ और सूखी जगह हमें अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिए, जहां पर पशु आराम से बैठ सके, आराम से लेट सके, क्योंकि भाई जब पशु ब्याता है तो उसको भाई काफी पीड़ा होती है, दर्द महसूस होता है, तो भाई उसमें पशु को कभी कभी भैया पैर भी सिद्ध करने होते हैं, लेटना भी पड़ता है, तो भाई हमारा पशु के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। दूसरे भाई हम जो है दुधारू पशु हैं या भैया जो सूखे पशु हैं, ड्राई पशु हमारे पास खड़े हैं, भाई उनसे जो है हम अपने ब्याते पशु को अलग बांधने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि भैया हमारा पशु जो ब्याने वाला है वो परेशान ना हो। भाई हम जो है पशु को सही पोषण देना चाहिए। भाई गर्भावस्था के अंतिम महीनों में संतुलित आहार जैसे कि हरी घास, दाना, मिनरल मिक्सचर हम पशु को देना चाहिए, ताकि भाई हमारे पशु के शरीर में भैया शारीरिक ताकत बनी रहे और भाई ब्याते समय उसको किसी तरह की कोई कमजोरी महसूस ना हो। किसान भाइयों, आजकल वैसे तो हम सभी जागरूक हैं और हमारे किसान भाई समय समय पर अपने पशुओं का टीकाकरण भी करा लेते हैं। भाई टीकाकरण और दवा समय से हम अपने पशु को पशु चिकित्सक के द्वारा सलाह से लेनी चाहिए, ताकि भाई हमारे पशु स्वस्थ रहें और हमारे किसान भाइयों को अच्छा दुग्ध उत्पादन हमारे पशु देते रहें। किसान भाइयों, अब बात आती है ब्याने के समय ध्यान रखने वाली बातों की, कि भाई हम ब्याते समय क्या क्या बातें ध्यान रखें। तो भाई देखो, पशु के पास जो है शांत माहौल रखना चाहिए। भाई उसके पास भीड़ भाड़ या भैया कहने का शोर शराबा नहीं करना चाहिए। दूसरे भाई हाथ और उपकरण लगाने से पहले पशु को, जब हमारा पशु ब्या रहा है तो हम भैया अपने हाथों पर पॉलिथीन या भैया दस्ताने पहन लेने चाहिए, ताकि भाई हमारे पशु को किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। भाई बच्चा सही स्थिति में नहीं आ रहा है तो भैया जबरदस्ती हम नहीं करनी चाहिए। हमें भैया नजदीकी अच्छे पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और भाई यदि जरूरत हो तो अपने किसी नजदीकी पशु चिकित्सक को बुला भी लेना चाहिए। किसान भाइयों, सामान्यतः भैया पशु के प्रसव में 2 से 4 घंटे लग जाते हैं, तो भाई यदि ज्यादा देर लग रही है तो भाई अच्छे डॉक्टर को हमें बुला लेना चाहिए। भाई हमारे किसान भाई जागरूक हैं, समय से सारे काम करते हैं, देखभाल भी अपने पशु की रखते हैं। दूसरे भाई, ब्याने के बाद अपने पशु का जो छोटा बच्चा होता है तो उसको भैया पहला माँ का दूध जिसे हम खीज बोल देते, तो भाई वो अपने पशु को या अपने बच्चे को हम जो है जो हमारा चाहे कटिया हो, बछिया हो, बछड़ा हो, बछिया हो, उसको भैया पिलाना चाहिए। भाई बच्चे की नाक व मुंह साफ करें ताकि सांस लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी पशु को ना हो। किसान भाइयों, नाभि को टिंचर आयोडीन से साफ करें ताकि संक्रमण ना हो। या भिन्न भैंस या गाय थी भैया जो वो ब्याली है तो भाई उसको गुड़ आपको गुन गर्म पानी में देना चाहिए और भाई इससे पशु के शरीर में ताकत महसूस होती है, गर्मी आती है और भाई पशु हमारा कमजोरी महसूस नहीं करता। किसान भाइयों, हम जो है यदि हमारे पशु की जेर की जब बात आती है, भाई हमारे कुछ किसान भाई जेर जब हमारा पशु नहीं डालता है 2 घंटे या 2.5 घंटे के बाद, तो भैया वो जो है अपने आप घर का कोई इलाज करने लगते हैं, तो हम भैया इस तरह की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भाई नॉर्मल भाई जेर गेरने का समय पशु के 6 से 8 घंटे होता है। यदि 6 से 8 घंटे में भी हमारा पशु जेर नहीं डालता है तब हम भैया अच्छे पशु चिकित्सक को बुलाना चाहिए। तो किसान भाइयों, इस तरह से यदि आप अपने पशु के ब्याहते समय भैया कुछ सावधानी बरतेंगे, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, किसान भाइयों आज तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर खेती एवं अन्य विषयों से जुड़ी जानकारी के साथ अवश्य उपस्थित होंगे। किसान भाइयों नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें, आकाशवाणी का यह नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 7:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी। आज रात 9:30 पर कार्यक्रम पब्लिक स्पीक हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रातः 9:15 पर कार्यक्रम जिले की हलचल लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा, जिसमें आप सुनेंगे देवरिया और गाजीपुर जिलों की हलचल। सुबह 7:31 पर ज्ञान और मनोरंजन पर आधारित कार्यक्रम होगा सूरज के साथ साथ धरती गाती है। कार्यक्रम में सुनिएगा रजनी टोंक के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत प्रातः 9:25 पर। सुबह 9:50 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम बात आसपास की, वाचन एवं संकलन होगा इशिका कौशिक का। दोपहर 11:30 पर एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1306वां भाग सुनवाया जाएगा। दिन में 12:05 पर शास्त्रीय संगीत में निषाद खान का सितार पर बजाया राग चांदनी कल्याण सुनवाया जाएगा। परिवार जगत में दोपहर 1:15 पर ग्लोबल वार्मिंग पर परिचर्चा के पुनः प्रसारण में प्रतिभागी होंगे डॉक्टर के गुप्ता, श्री श्याम तिवारी और डॉक्टर विक्रांत। परिचर्चा का संचालन ज्योतिपाल करेंगी। लोकधारा में दिन में 1:45 पर आप सुनेंगे दयाशंकर फुलारा के गायक कुमावनी लोकगीत। संध्या 5 बजे मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही रोजगार सृजन योजनाओं में श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजना राष्ट्रीय कैरियर सेवा NCS और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP पर चर्चा की जाएगी। युवाणी में शाम 5:15 पर कुछ खास है। आज क्रम में विश्व पवन दिवस पर चर्चा होगी। बूझो तो जाने क्रम में फिल्म चक दे इंडिया से संबद्ध सवाल पूछा जाएगा। साथ ही श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित क्रम रहेगा गपशप अड्डा। संध्या 6:45 पर कृषि जगत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर मोहम्मद अवैस से नरेशपाल की बातचीत का विषय रहेगा AI और कृषि। विविधा में शाम 6:45 पर श्री शौकीन अहमद की पूर्व प्रसारित वार्ता का विषय होगा प्रदूषण नियंत्रण में आम जन की भूमिका। संध्या 7:32 पर सुगम संगीत में हम आपको सुनवाएंगे पुनीत मेहरा के गाए भजन। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सवेरे 8:45 पर गोल्डन हिट्स कार्यक्रम में। प्रातः 10:00 गीत तुम्हारे कार्यक्रम के अंतर्गत, सुबह 11:00 चित्रपट संगीत में, दोपहर 12:30 पर मिड डे मेलोडी के अंतर्गत, दिन में 2:30 पर नई फिल्मों से कार्यक्रम में, शाम 6:55 पर छाया गीत के अंतर्गत, गीत संध्या में रात 8:30 पर एक ही फिल्म से क्रम के तहत, रात 10:00 भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में और रात 10:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम में फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। ये थी कार्यक्रमों की जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 kHz।
3: प्रदूषण पर
1: कुछ पलों में प्रादेशिक समाचार, हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
3: स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
4: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाए, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
5: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का भी हुआ शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान, अब आगरा में भी लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज से शुरू हो रही है वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। प्रधानमंत्री ने 28 मार्च 2026 को किया था इस एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन। और मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नई तकनीकों को अपनाकर उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की जगह देश का ग्रोथ इंजन बन गया है।
6: यूपी की एक नई पहचान बनी है। कहीं भी आप चले जाइए, गौरव के साथ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आज अपनी इस पहचान के साथ जाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का देश का सबसे अच्छा नेटवर्क है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, मेट्रो बन रही है, प्रदेश में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बन रही है, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने का कार्य भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
5: मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ उन्हें समय से पूरा करने के निर्देश दिए।
7: श्री योगी ने संबंधित अधिकारियों से दोनों मंडलों में संचालित पुराने और निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सड़क निर्माण के कार्यों में तेजी लाने और सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अंदर पूरा किए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने देवरिया में निर्माणाधीन मोहन सेतु के कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली और अधिकारियों को कार्यस्थल का मुआयना कर सेतु निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री योगी ने अधिकारियों पर जोर दिया कि वे जन प्रतिनिधियों से मिले प्रस्तावों के आधार पर प्राथमिकता तय कर सड़कों का काम जल्द शुरू कराएं ताकि आम नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिल सके। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
5: मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर के सभा कक्ष में कल शाम महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की बैठक में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को अत्याधुनिक विषयों में दक्ष बनाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप की 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर श्री सिंह ने महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग और उनके संघर्ष को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में विश्व स्तर पर भारत की पहचान बदली है।
8: आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 के बाद से दुनिया के 38 देशों के साथ व्यापार करने का समझौता भारत ने किया है। इसके पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है। डिफेंस फैक्ट्रियां अब इधर भी लगेंगी, लखनऊ से लगनी शुरू हो गई है, चित्रकूट में लगी, कहीं न कहीं कोई न कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की लगती चली जाएगी। अभी तो यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है मेरे बहन भाइयों, समय की प्रतीक्षा कीजिए।
5: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं आज से शुरू हो रही हैं। एक रिपोर्ट।
9: पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला यह एयरपोर्ट भविष्य में 22.5 करोड़ यात्रियों का वैश्विक हब बनेगा। अंतिम चरण में 5 रनवे होंगे जो इसे विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल करेगा। पश्चिम यूपी, दिल्ली, NCR और आसपास के राज्यों के लिए यह नया एविएशन गेटवे बनेगा। इंडिगो चरणबद्ध तरीके से लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़, अमृतसर समेत 16 से अधिक शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगी। इसी के साथ अन्य उड़ान कंपनियां उड़ान भरेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया था। इस हवाई अड्डे की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 नवंबर 2021 को रखी गई थी। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में संवाद कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं।
10: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल बाराबंकी जिले में मीडिया से बातचीत कर पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री पाठक ने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा सुशासन और जन कल्याण को शासन का मूल आधार बनाया है। वहीं अंबेडकर नगर जिले में पहुंचे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से युवाओं किसानों और महिलाओं को बड़ा लाभ मिला है। आगरा में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की मौजूदगी में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों की यात्रा ने देश की तस्वीर ही नहीं तकदीर भी बदली है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
11: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कल अयोध्या में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि श्री राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले में सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। श्री मिश्र ने कहा कि जांच समिति की संस्तुतियों के आधार पर इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज भी कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने की चेतावनी दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का भी हुआ शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान, अब आगरा में भी लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज से शुरू हो रही हैं वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। प्रधानमंत्री ने 28 मार्च 2026 को किया था इस एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन। और मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
12: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
13: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में तिथि विशेष पर जानकारी विश्व पवन दिवस पर और जानकारी विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर। इसके अलावा अखबारों की सुर्खियां और फिल्मी गीत भी कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विश्व पवन दिवस से। दोस्तों, आज पूरे विश्व में सतत विकास और आर्थिक प्रगति के लिए ऊर्जा अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक विकासशील देश के तौर पर भारतवर्ष के लिए भी ऊर्जा का विशेष महत्व है। यूं तो हमारे देश में मानव संसाधन से लेकर सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, लेकिन ये भी एक वास्तविकता है कि पेट्रोलियम और गैस जैसे ऊर्जा स्रोतों के लिए हम लगभग पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर हैं। खाड़ी के देश हमारी ऊर्जा जरूरतों का सबसे सहज, सरल और सस्ता ठिकाना है, लेकिन खाड़ी में चल रहे अनावश्यक युद्ध और वैश्विक शक्तियों के बीच वर्चस्व को लेकर चल रही खींचतान ने न केवल दुनिया की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई है, बल्कि विश्व के सामने एक विकराल ऊर्जा संकट भी खड़ा कर दिया है। न हम युद्ध के समर्थक हैं और न ही किसी पक्ष की तरफ से युद्ध में शामिल हैं, लेकिन विडंबना यह है कि फिर भी हम युद्ध से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने इस संकट काल में आम जनता से राष्ट्रहित में ऊर्जा को बचाने का आह्वान किया है। छोटी दूरी के कामों के लिए पैदल अथवा साइकिल का उपयोग, लंबी दूरी के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल और पेट्रोल वाहन के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। दोस्तों, आज की परिस्थितियों में पेट्रोलियम

रूप में बढ़ावा दिया, जिसका उद्देश्य लोगों को ऊर्जा स्रोत के रूप में पवन की क्षमता और दुनिया को बदलने की इसकी संभावनाओं के बारे में जानने में सहायता करना था। ये दिवस जलवायु परिवर्तन से निपटने और एक स्थायी ऊर्जा प्रणाली बनाने में पवन की भूमिका को भी उजागर करता है। इस संबंध में भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आज ही यानी यानी 15 जून 2026 को गोवा में एक प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे। इसका उद्देश्य पवन ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना, ग्रिड की क्षमता में सुधार करना, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और भारत के निर्यात अवसरों का विस्तार करना है। भारत वर्तमान में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा बाजार है। वैश्विक स्तर पर और भारत में भी नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के बाद पवन ऊर्जा का ही स्थान आता है। ये दुनिया में बिजली उत्पादन के लिए सबसे तेजी से बढ़ते स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में से एक है।

0: मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: साथियों, कहा जाता है कि आपका व्यवहार ही आपके व्यक्तित्व का आईना होता है। व्यवहार की आदर्श स्थिति के बारे में महात्मा कबीर ने हमारा भरपूर मार्गदर्शन किया है। वो कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। व्यवहार का ये आदर्श तरीका सबकी तरफ से सबके लिए लागू होता है, लेकिन गांठ बांध लीजिए जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए हर स्थिति में ये दोहा सूत्र के रूप में परमावश्यक है। जब हम उनसे बात करें तो हमारा लहजा नर्म हो और भाषा में हो सहानुभूति। याद रखें, बड़े बूढ़ों के साथ दुर्व्यवहार हमारे व्यक्तित्व के पतन को दर्शाता है। बुजुर्गों की गरिमा के साथ ही हमारी गरिमा भी जुड़ी होती है। अपने जीवन के ढलान पर जब बुजुर्गों का शरीर कमजोर होने लगता है तब उन्हें हमारी ज्यादा जरूरत होती है, सहज शारीरिक क्रियाओं के लिए भी और मानसिक संतुष्टि के लिए भी। अपनी जवानी का सुनहरा कालखंड जिन्होंने हमारे लालन पालन और हमारी जिदों को

0: इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 2011 में इसे आधिकारिक मान्यता दी गई। ये दिन बुजुर्गों के मानवाधिकारों का एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दा है। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार एक ऐसी समस्या है जो विकासशील और विकसित दोनों ही तरह के देशों में मौजूद है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसकी रिपोर्ट आम तौर से कम ही दर्ज की जाती है। कुछ चुनिंदा देशों में ही इसके प्रसार की दर या अनुमान उपलब्ध हैं जो 1% से 10% के बीच हैं। हालांकि बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की वास्तविक सीमा अज्ञात है, लेकिन इसका सामाजिक और नैतिक महत्व बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए इसके लिए एक वैश्विक बहुआयामी प्रक्रिया की आवश्यकता है जो बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा पर केंद्रित हो। और साथियों, ये दायित्व हम सभी का है ताकि हमारे बुजुर्ग हमेशा प्रसन्नचित रहें।
1: क्या
2: हम जब होंगे 60 साल के

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: दोस्तों अब जान लेते हैं आज के दिन हो चुकी प्रमुख घटनाओं के बारे में। आज सोमवार 15 जून है, मौजूदा साल 2026 का 166वां दिन। श्रोताओं, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब के अनुयायियों में हिंदू और सिख दोनों हैं। इनके द्वारा सिखाई गई यौगिक पद्धति सुरत शब्द कोश के तौर पर जानी जाती है। अपने गद्य और छंद में सार वचन शीर्षक से दो पुस्तकें लिखी। 15 जून सन 1878 को शिवदयाल साहब का स्वर्गवास हुआ। उनकी समाधि आगरा के पास दयाल बाग में स्थित है, यही इस संप्रदाय का मुख्यालय भी है। प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक तारकनाथ दास का जन्म 15 जून 1884 को बंगाल के 24 परगना जिले में हुआ था। छात्र जीवन में ही वे अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और चित्तरंजन दास जैसे बड़े नेताओं के संपर्क में आए और पढ़ाई छोड़ क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। अनुशीलन समिति तथा युगांतर के कामों में सक्रिय होकर उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई देशों की यात्राएं की। उन्होंने कलकत्ता में विवेकानंद सोसाइटी की स्थापना भी की थी। श्रोताओं, अपनी कलाकृतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखने वाले कटिंगेरी कृष्ण हेब्बार ने ब्रुसेल्स और लंदन में 1965 में आयोजित हुए आर्ट नाउ इन इंडिया में पहली बार दर्शकों का दिल जीता था। इसके अलावा उन्होंने वेनिस, साओ पोलो और टोक्यो में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। 15 जून 1911 को कर्नाटक के उडुपी में जन्मे के हेब्बार को पद्मश्री, पद्म भूषण और ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 15 जून 1917 को सीताऊ में जन्मे मैंडोलिन के जादूगर सज्जाद हुसैन बेहद स्वाभिमानी, स्पष्टवादी और खुद को पूर्णतावादी मानते थे। अनिल विश्वास ने उन्हें एकमात्र मौलिक संगीत निर्देशक के रूप में प्रमाणित किया है। नूरजहां और लता मंगेशकर के अलावा किसी को भी गायकी के काबिल न समझने वाले सज्जाद हुसैन का स्वभाव ही उनकी कमजोरी बन गया। तलत महमूद को गलत महमूद और किशोर कुमार को शोर कुमार कहने वाले सज्जाद नौशाद और मदन मोहन के भी कटु आलोचक रहे। अंततः वे अकेले पड़ गए। हिंदी फिल्मों में अपार लोकप्रियता हासिल करने वाली सुरैया को अभिनय के साथ पार्श्व गायन में भी महारत हासिल थी। 15 जून 1929 को गुजरांवाला में जन्मी सुरैया अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। 1937 में फिल्म उसने क्या सोचा में उन्हें पहली बार बाल कलाकार के रूप में भूमिका निभाने का अवसर मिला। इसी तरह नौशाद ने उन्हें फिल्म शारदा में पहली बार गवाया। अदाओं में नज़ाकत और गायकी में नफासत सुरैया की खास पहचान थी। उनके गाए हुए गीत आज भी गुनगुनाए जाते हैं। ध्रुपद गायक उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर का जन्म 15 जून 1932 को उदयपुर में हुआ था। उनके पिता उदयपुर रियासत के महाराणा भूपाल सिंह के दरबार में संगीतज्ञ थे। उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर उस परिवार से हैं जिसने 19 पीढ़ियों तक ध्रुपद गायकी को आगे बढ़ाया। पद्मश्री, तानसेन सम्मान और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जिया फरीदुद्दीन डागर ने फ्रांस और ऑस्ट्रिया में भी कुछ सालों तक ध्रुपद की तालीम दी थी। गांधीवादी समाज सेवक अन्ना हजारे का जन्म महाराष्ट्र के गांव रालेगण सिद्धी में 15 जून 1937 को हुआ था। अन्ना 1963 में सेना की मराठा रेजिमेंट में ड्राइवर के रूप में भर्ती हुए और 1975 में सेवा के 15 साल पूरे होने पर स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद उन्होंने अपने ही गांव को सामाजिक कर्मस्थली बनाकर समाज सेवा शुरू की। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित अन्ना हजारे को 2011 में हुए भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन का नेतृत्व करते हुए विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। लक्ष्मी निवास मित्तल विश्व की सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेरर मित्तल के कार्यकारी अध्यक्ष और भारतीय अरबपति उद्योगपति जिन्हें स्टील किंग के नाम से भी जाना जाता है 15 जून 1950 को राजस्थान के सादुलपुर में जन्मे थे। उन्होंने 1970 के दशक में इंडोनेशिया से स्टील व्यवसाय आरंभ किया और फिर विश्व स्तर पर कई बंद पड़ी स्टील कंपनियों का अधिग्रहण करके उन्हें लाभप्रद बनाया। 1996 में उन्हें स्टील मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, भारतीय टेबल टेनिस की बेहतरीन सितारों में से एक मनिका बत्रा ने ओलंपिक डेब्यू करने से पहले सन 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। उन्होंने वर्ष 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में अपने शानदार प्रदर्शन से हलचल सी मचाते हुए कुल 4 पदक जीते, जिसमें से 2 स्वर्ण पदक थे। वर्ष 2020 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। 1995 में दिल्ली में पैदा हुई मनिका बत्रा का आज जन्मदिन है। तो दोस्तों, ये थी इतिहास के पन्नों में दर्ज आज की तारीख की प्रमुख घटनाएं, और अब एक दृष्टि आज की सुर्खियों पर डाल लेते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव की हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में बिखराव गत रविवार को पूरा हो गया। तृणमूल कांग्रेस के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने नया गुट बनाकर खुद को त्रिपुरा के दल नेशनल सिटीजन पार्टी में शामिल होने की घोषणा करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मान्यता देने के लिए आवेदन दे दिया। इस आशय का विस्तृत समाचार देते हुए दैनिक जागरण ने सुर्खी लगाई है, टूटी तृणमूल, 20 बागी सांसद त्रिपुरा के एनसीपी में शामिल हुए। दैनिक अमर उजाला ने फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में पिछले 92 सालों में ब्राजील के पहला मैच हारने से बाल बाल बचने, T20 महिला विश्व कप में भारत द्वारा चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 7वीं बार मात देने और ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा के राष्ट्रमंडल खेलों की टीम में शर्त के साथ शामिल होने के समाचारों को अपने खेल पृष्ठ पर सचित्र प्रकाशित किया है। बैंकों में जमा धन की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार बैंक जमा बीमा की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए करने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया है, इस पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। दैनिक हिंदुस्तान ने अपना बिजनेस पृष्ठ पर इस समाचार को लीड खबर के तौर पर छापा है। दैनिक हिंदुस्तान ने इसी पृष्ठ पर एक और महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित की है। इस खबर में साइबर ठगी का शिकार हुए लोगों के लिए राहत है। दरअसल गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने MRM पोर्टल की शुरुआत की है। इसके जरिए डिजिटल अरेस्ट, OTP से जुड़ी धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराधों के पीड़ित घर बैठे धन वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ये पोर्टल तभी धन वापसी की प्रक्रिया पूरी करेगा जब ठगी करने वाले के बैंक खाते में रकम पहले ही फ्रीज कर दी गई हो। और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: साथ साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
7: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
6: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
8: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
6: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
0: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवीआर फ्रांस।
6: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
9: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
6: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थीं। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
10: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
6: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
11: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
12: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
11: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ के रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
13: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
11: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
14: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
15: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने

0: प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार, अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है, आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार, पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा, विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है, एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा, वे खुद संगठन को परखें।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। अमेरिका और ईरान फौजी कार्रवाई खत्म करने, आबनाए हुरमुज खोलने और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर रजामंद हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ब्रतिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हममनसब रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। 52वीं जी सरबराह 7 कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कल आउटरीच सेशन में शिरकत करेंगे। जेवर में नोएडा बैन-अल-अक़वामी हवाई अड्डे से आज सुबह कमर्शियल परवाजें शुरू हो रही हैं। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। ये इम्तिहानात इस महीने की 21 तारीख को होंगे। और क्रिकेट में बर्मिंघम में एजबेस्टन में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। अमेरिका और ईरान ने 107 दिन से जारी जंग खत्म करने और आबनाए हुरमुज खोलने के मकसद से एक समझौते को कतई शक्ल दी है। आबनाए हुरमुज एक तंग आबी गुजरगाह है जहां से आलमी तेल सप्लाई का 5वां हिस्सा गुजरता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल पर एक ऐलान किया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से अपनी बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। इस अमन मुआहदे पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में दस्तखत किए जाएंगे, जहां ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुरमुज इस मुआहदे पर दस्तखत किए जाने के बाद जुमे को खोल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत पूरे खित्ते में अमन सलामती कायम होगी। इस मुआहदे में अमरीका और ईरान से कहा गया है कि वो ईरान की न्यूक्लियाई अफजूदगी और उसकी इंतहाई ताकतवर यूरेनियम के खात्मे पर 60 दिन के अंदर अंदर मुज़ाकरात करें। ईरान की कौमी सलामती की सुप्रीम काउंसिल ने कहा है कि लिबनान समेत सभी महाजों पर फौजी कार्रवाई आज रात से मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी जाएगी। खबरों के मुताबिक तेल की कीमतों में कमी आ गई है। ब्रंट खाम तेल में आज सुबह 4% की कमी वाकई हुई, जबकि अमेरिका का वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट 4.6% से भी ज्यादा गिर गया। इधर एशिया में स्टॉक मार्केट में उछाल आया है। दुनिया के रहनुमाओं ने अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन समझौते का खैर मकदम किया है और इसे एक बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया है जिससे मगरबी एशिया में अमन की बहाली में मदद मिल सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रतिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फिको के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी स्लोवाकिया के सदर पीटर पेरेगिनी के साथ भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के शहर नीस के अपने दौरे का पहला मरहला मुकम्मल करने के बाद स्लोवाकिया के 2 रोजा सरकारी दौरे पर कल रात ब्रतिस्लावा पहुंचे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि यह दौरा भारत और स्लोवाकिया के ताल्लुकात को मजीद वसअत देने का एक अहम मौका फराहम करता है और दोनों मुल्कों के दरमियान तआवुन के नए मौके तलाश करने में मददगार साबित होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यह भी कहा कि वो स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेगिनी और वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट फिको के साथ सूदमंद मुज़ाकरात के मुंतजिर हैं। 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद से किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का इस मुल्क के लिए यह पहला दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म की यह दौरा अप्रैल 2025 में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के स्लोवाकिया के दौरे के बाद हो रहा है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कल रात राजधानी ब्रतिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के वजीर खारजा जुराज ब्लेनर ने शानदार खैर मकदम किया। किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का स्लोवाकिया का यह पहला सरकारी दौरा है। ब्रतिस्लावा पहुंचने पर गैर मुकीम भारतीय बिरादरी के लोगों ने नारों के साथ उनका इस्तकबाल किया। स्लोवाकिया के मौसीकारों ने वज़ीर-ए-आज़म के पहुंचने पर वंदे भारत वंदे मातरम की धुन बजाई। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बाकायदा इस्तकबालिया दिया जाएगा। आकाशवाणी न्यूज से स्मृति एम पलुरती की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: 52वीं G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू हो रही है। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में G7 के सभी रुकन ममालिक शिरकत कर रहे हैं, जिनमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बर्तानिया, अमरीका और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। अरकान के अलावा फ्रांस ने आउटरीच शराकत दार मुल्कों की हैसियत से कॉन्फ्रेंस में भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, जनूबी कोरिया, कतर, सऊदी अरब, मुल्क शाम, यूक्रेन और मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मदऊ किया है। ये 13वां मौका होगा जब भारत एक शराकतदार मुल्क की हैसियत G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आउटरीच इजलास में शिरकत करेंगे। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम की शिरकत से आलमी जोग्राफियाई सियासत में भारत का अहम रोल उजागर होता है। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त हो रही है जब दुनिया को जोग्राफियाई सियासी कशीदगी, माशी गैर यकीनी सूरत हाल और नई टेक्नोलॉजी की तेजी से इर्तका के चैलेंज दरपेश हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: जैसे ही इजलास शुरू होगा तो आलमी अदम तवाजुन को कम करना मेजबानी करने वाले मुल्क की G7 सदारत सबसे अहम तरजीह बन जाएगा। सरबराह कॉन्फ्रेंस के सरकारी फ्रेमवर्क के मुताबिक G7 के रहनुमा जोग्राफियाई सियासी चैलेंजेस, बैन अलाक्वामी अमन और सलामती, बाहमी इख्तिसादी तरक्की और अहम आलमी बहरान पर तबादले ख्याल करेंगे। ये तबादले ख्याल बंद कमरों में होंगे जो आज से शुरू हो रहे हैं। सरबराह इजलास में भारत की शिरकत आलमी जुनूब की तरजीहात और तशवीश को उजागर करने के लिए एक मौका फराहम करेगी, जबकि अहम आलमी मसाइल पर भी मुजाकरात होंगे। फ्रांस से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में वाकई नोएडा बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे से कमर्शियल परवाजों की खिदमात आज से शुरू हो गई हैं। जेवर हवाई अड्डे से लखनऊ के लिए पहली परवाज ने थोड़ी देर पहले उड़ान भरा। इस परवाज में MLA धर्मेंद्र सिंह 20 खवातीन समेत 172 किसानों के साथ हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीन एयरपोर्ट के लिए हासिल की गई थी। लखनऊ पहुंचकर ये किसान वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। इंडिगो एयरलाइन की पहली परवाज लखनऊ से जेवर एयरपोर्ट के लिए सुबह 7:05 पर रवाना हुई। इसके बाद नोएडा से बेंगलुरु के लिए पहली बाकायदा कमर्शियल परवाज चलाई जाएगी।
2: यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी तकरीबन 3300 एकड़ जमीन हासिल की गई है। पहले मरहले में 1,20,00,000 मुसाफिरों की सलाहियत वाले इस एयरपोर्ट से मुस्तकबिल में 22,50,00,000 मुसाफिरों को सहूलियत फराहम की जा सकती है। ये मगरबी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी रियासतों के लिए एक नई हवाई कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो की परवाजें लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ और अमृतसर समेत 16 से ज्यादा शहरों के लिए शुरू होने वाली हैं। दीगर एयरलाइंस की परवाजें भी जल्द शुरू होंगी। मुसाफिरों की सहूलियत के लिए हवाई अड्डे से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इनमें 90 जनरल और 10 डबल डेकर बसें शामिल हैं। लखनऊ से खबरनामे के लिए सुशील चंद्र तिवारी।
0: इम्तिहान कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने अंडर ग्रेजुएट तिब्बी तालीम के दाखिले के लिए NEET UG के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार NTA की सरकारी वेबसाइट neet.nta.nic.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। NEET UG के दोबारा इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को कराए जाएंगे, जो दोपहर 2 से शाम 5:15 तक होंगे। NTA ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते की तफसीलात की तस्दीक करें। उसने उम्मीदवारों को ये भी मशवरा दिया है कि वह हिदायत पर अमल करें और साथ ही इतिलानामे पर अपनी तवज्जो मरकूज करें। भारत में पिछले 12 साल के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के वसूलों पर मबनी काबिले जिक्र तब्दीलियां हुई हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीब, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए गए। आकाशवाणी का खबरों का शोभा 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के मौजू के उन्वान से एक खुसूसी फीचर नशर कर रहा है। आज हम भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के तसव्वुर के साथ जदीद बुलंद ढांचा तामीर करने के सरकारी इकदामात पर नजर डालेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: किसी मजबूत और जदीद मुल्क की तामीर आलमी दर्जे के बुनियादी ढांचे पर मबनी होती है। पिछले 12 साल में भारत ने यकसर तब्दीली का एक बेमिसाल सफर तय किया है, जिसके तहत बुनियादी ढांचे पर सरकारी अखराजात में 6 गुना इजाफा किया गया है। इस तरह 2014-15 ये अखराजात 2,00,000 करोड़ रुपए के थे, जबकि रवा माली साल में ये अखराजात 12.2 लाख करोड़ रुपए के हो गए। मुल्क के शहरी ट्रांसपोर्ट में एक इनकलाब लाया गया। भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क को तकरीबन 5 गुना तोसी दी गई। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए दिल्ली की अलीशा ने, जो दिल्ली मेट्रो से रोजाना सफर करती हैं, अपने सफर के तजुर्बे के बारे में बताया।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत में आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। कौमी शाहराह नेटवर्क में इजाफा करके इसे 1,46,000 किलोमीटर से ज्यादा कर दिया गया है। रेलवे के शोबे में भी बड़ी तब्दीलियां नुमाया हैं। भारतीय रेलवे से मुतालिक बजट में तकरीबन 9 गुना इजाफा कर दिया गया है, जिससे इस पूरे नेटवर्क में जदीदकारी की गई है और मुसाफिरों के लिए बेहतर सहूलियात मुहैया की गई हैं। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए लखनऊ से वंदे भारत की एक मुसाफिर पूजा ने कहा कि ये ट्रेन बहुत आरामदेह है, जिससे वक्त की भी काफी बचत होती है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि सफर करने में टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे भी पसंद आए, क्योंकि इसकी वजह से यात्रियों की सुरक्षा बनी रहती है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। 19वां मुंबई बैन अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल MIFF आज से शुरू हो रहा है। शाम को मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में फिल्म फेस्टिवल की बाकायदा इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद होगी, जबकि सुबह से ही फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। इस साल मुकाबला जाति जुमरे में 52 बैन अल-अक़वामी और 92 कौमी फिल्मों में समेत कुल 144 फिल्में दिखाई जाएंगी, जबकि 13 मुल्कों के फिल्म साज फिल्म फेस्टिवल में नुमाइंदगी कर रहे हैं। गैर मुकाबला जाति जुमरे में शिरकत करने वाले 46 मुल्कों की 106 बैन अल-अक़वामी फिल्मों और 96 कौमी फिल्मों समेत कुल 202 फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। फौजदारी तहकीकाती महकमे ने तृणमूल कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट अभिषेक बैनर्जी से 9 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की है। ये पूछताछ उनसे पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के जाली दस्तखत के एक केस में उनकी मुबैना तौर पर मुलविस होने के सिलसिले में की गई है। बर्मिंघम में खवातीन के ICC T20 आलमी कप के ग्रुप ए के पहले मैच में भारत ने कल रात रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रन का निशाना रखा था, लेकिन पाकिस्तान की पूरी टीम 17 ओवर में 106 रन बनाकर आउट हो गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन बनाए थे, जिसमें स्मृति मंधाना ने 44 गेंदों में 68 रन बनाए। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराहे रास्त

0: अपने रंग हजार। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर और किशोर कुमार के युगल स्वर में। गीतकार थे अनजान और धुन थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं मैं हूं अल्लादीन फिल्म का गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। गीत लिखा है फारूक कैसर ने और धुन उषा खन्ना की है।

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे मैं हूं अल्लादीन फिल्म का गीत। आवाजें थी आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, और गीत लिखा था फारूक कैसर ने।

0: चंदन का एहसास।
1: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत की धुन तैयार की थी इंतकाम फिल्म के लिए।

आप सुन रहे थे इंतकाम फिल्म का ये दो गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे सरस्वती चंद्र, फिल्म का गीत। गीतकार थे इंदिवर और धुन थी कल्याण जी आनंद जी की। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अभी जारी है। अगला गीत सुनने से

45 मिनट पर सुनवाया जाएगा। संध्या 5 बजे मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही रोजगार सृजन योजनाओं में श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजना राष्ट्रीय कैरियर सेवा NCS और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP पर चर्चा की जाएगी। शाम 5:15 पर युवावाणी के कुछ खास है आज क्रम में विश्व पवन दिवस पर चर्चा होगी। बूझो तो जाने क्रम में फिल्म चक दे इंडिया से संबद्ध सवाल पूछा जाएगा। साथ ही श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित क्रम रहेगा गपशप अड्डा। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सरकारी मेहमान फिल्म से। आवाज आशा भोसले की है और गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही पलों में कार्यक्रम जिले की हलचल हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए देवरिया और गाजीपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं देवरिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है ब्रजेश चंद्र शर्मा का।
1: केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के विभिन्न मंदिरों में पूजा पाठ हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही विभिन्न जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई भी किया गया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान की मूल भावना के साथ विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत चयनित लाभार्थियों में स्वीकृत पत्र का वितरण किया गया। जिले में उत्तर प्रदेश आरक्षित नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा का आयोजन जिले में 12 परीक्षा केंद्रों पर सकुशल संपन्न हो गया। विकास के क्षेत्र में जिले को प्रदेश का रोल मॉडल बनाने के लिए जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने अपने अधिकारियों के साथ बैठकें कर विकास की गति को और अधिक तेज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। विकास कार्यों का क्रियान्वयन पूरी गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। लापरवाही मिलने पर अधिकारी व कर्मचारी की जिम्मेदारी तय करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जल स्तर एवं वर्षा संबंधी आंकड़ों का नियमित प्रदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कटान रोधी परियोजनाओं को स्वसमय पूरा करने का स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जिले की बाढ़ से संबंधित 3 तहसीलों में से बरहज व रुद्रपुर में बाढ़ आने की ज्यादा संभावना रहती है। ऐसे में संभावित बाढ़ वाले क्षेत्र में सभी जरूरी एहतियातों को स्वसमय पूरा कर ले, जिससे कि आमजन को कोई समस्या न हो। बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर सिंचाई व बाढ़ विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जिले के सलेमपुर, बरहज व रुद्रपुर तहसील में राज्य स्तरीय मार्ग एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। इस दौरान डूबे व्यक्तियों की खोज, बाढ़ के दौरान भवन ध्वस्त होने पर लोगों को बचाना आदि का सजीव प्रदर्शन किया गया।
2: हमारे जिले में बाढ़ विभाग द्वारा, सिंचाई विभाग द्वारा लगातार इसमें मॉनिटरिंग करके जो बाढ़ से बचाने हेतु तटबंध बनाने होते हैं उसके कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है, ताकि हम लोग कोई कटान ना हो और कोई भी आम जनमानस को किसी भी तरह का कोई इश्यूज क्रिएट ना हो। उसके साथ हमारी पूरी बाढ़ की तैयारी भी है, हमारे बाढ़ चौकी की तैयारी है, तो जिला पूरा तैयार है अगर कोई ऐसी सिचुएशन आता है तो सिचुएशन को एक साथ जोड़कर फेस कर सके।
1: विगत दिनों विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह ने जनप्रतिनिधियों के साथ एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। साथ ही जिले में 5,27,000 पौधे रोपित किए जाने के लक्ष्य के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि जलवायु संतुलन और पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने एक पेड़ माह के नाम पौधा लगाने और उससे संरक्षित करने के लिए आह्वान किया।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल की जो हमारी उपलब्धियां हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए 9 प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में सभी जगहों पर सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी और समाज के सभी लोग एक एक पेड़ अपने माँ के नाम पर लगा रहे हैं। केवल पेड़ ही नहीं लगाएंगे, बस इस पेड़ की सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी हमारी होगी।
1: केंद्र सरकार की महिलाओं के लिए संचालित महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले के सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर वृहद रूप से गर्भवती महिलाओं की जांच करते हुए उन्हें निःशुल्क दवाएं दी गई। इस दौरान 105 हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को चिन्हित करते हुए उचित परामर्श दिया गया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुलकी ने सीएम डैशबोर्ड से संबंधित कार्य परियोजनाओं का समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्वक समयबद्धता के साथ परियोजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क निर्माण में अनावश्यक विलंब पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध FIR दर्ज किया जाए। विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड के अंतर्गत 14 ऐसे बच्चे जो कक्षा 9 अथवा उससे अधिक की कक्षाओं में अध्ययनरत है, उन बच्चों में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह द्वारा विकास भवन के गांधी सभागार में लैपटॉप वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल संसाधनों का उपयोग कर वे अपनी शिक्षा को और बेहतर बनाते हुए अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति जन जागरूकता जरूरी है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी अधिकारी व कर्मचारी टीम भावना के साथ कार्य करें, जिससे कि योजनाओं का लाभ आमजन को मिल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निपुण बनाने के लिए सभी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी, शिक्षक एक साथ मिलकर टीम भावना के साथ कार्य करें। अभिभावकों में जन जागरूकता लाना जरूरी है, इसके लिए शिक्षक विभाग बैठकों का आयोजन नियमित रूप से करें और अधिक बच्चों का नामांकन प्रसदी विद्यालयों में कराने के लिए प्रेरित भी करें।
0: देवरिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्री राम राय का।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर तथा सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में जनपद गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह

0: प्रसिद्ध देवालयों में रुद्राभिषेक पूजन आदि कर प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने एवं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की कामना की एवं एक पेड़ माँ के नाम अभियान को गति देते हुए गांव-गांव में वृक्षारोपण भी किया गया। विगत दिनों तीन राज्यों पश्चिम बंगाल असम एवं पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। उत्साह उस समय और दूना हो गया जब गाजीपुर के पलिया गाँव निवासी उमेश राय पश्चिम बंगाल में तथा गाजीपुर के ही कमसड़ी गाँव निवासी कौशिक असम में मंत्री बनाए गए। जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय ने कहा कि गाजीपुर जनपद के इन प्रतिभाओं के विभिन्न प्रदेशों में मंत्री बनने से युवाओं में यह संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही वह पार्टी है जहां एक साधारण कार्यकर्ता भारत के किसी कोने में पैदा होकर किसी भी राज्य में मंत्री पद को सुशोभित कर सकता है। गाजीपुर से प्रारंभ होकर लखनऊ तक जाने वाला एवं बिहार बंगाल सहित पूरे उत्तर प्रदेश को दिल्ली से जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर से लखनऊ तक 341 किलोमीटर की अपनी सुगम यात्रा के लिए प्रसिद्धि पा चुका है। गाजीपुर के हैदरिया से प्रारंभ होकर लखनऊ तक जाने वाला यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे न केवल यात्री वाहनों के लिए बल्कि ट्रकों मालवाहक वाहनों एवं किसानों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। जनपद गाजीपुर में आपदा प्रबंधन के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट राम भवन के नेतृत्व में पिछले दिनों गाजीपुर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से बाढ़ राहत एवं अन्य आपदा के नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल तथा मोबिलाइजेशन अभ्यास किया गया। ज्ञातव्य है कि गाजीपुर गंगा तट पर अवस्थित है एवं इसका एक लंबा क्षेत्रफल गंगा के किनारे ही अवस्थित है। ऐसी स्थिति में अक्सर आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ एवं जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से यह अभ्यास किया जिससे आने वाले समय में बाढ़ राहत का कार्य सुचारू रूप से अंजाम दिया जा सके।
1: यूपी के जितने भी हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें हर जगह तैयारी की समीक्षा के लिए 11 एनडीआरएफ की टीमें बनारस से यहाँ पे आई थी गाजीपुर में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसका मकसद यही था कि बारिश शुरू होने वाली है और जब भी बारिश होती है तो फ्लड सीजन शुरू हो जाता है, उससे पहले हमारी क्या तैयारी है बेसिकली उसकी समीक्षा के लिए एक मॉक एक्सरसाइज किया गया था। और इसका यह मकसद ये भी था कि लोगों में थोड़ा सा एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि हम फुली प्रिपेयर्ड हो जाएं किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए।
0: पिछले दिनों गाजीपुर जनपद में एक दुखद घटना भी हुई। प्रसिद्ध होटल व्यवसायी आलोक राय के पुत्र विनीत राय की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए तत्काल अपराधियों के खिलाफ इनाम घोषित कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी। पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी वैभव कृष्ण एवं पुलिस अधीक्षक ईरज राजा के नेतृत्व में लखनऊ एसटीएफ की टीम ने विनीत राय हत्याकांड में शामिल 1,00,000 के इनामी बदमाश कमलेश चौधरी को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। गाजीपुर के दो युवा पर्वतारोही खिलाड़ियों ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा लहराकर परचम फहराया है। गाजीपुर के नौली गांव निवासी पुनीत श्रीवास्तव मर्दा क्षेत्र के सरी मुबारक निवासी अंकित चौबे ने लगभग 8 दिनों के अखथ प्रयास के बाद बीते 19 मई को सुबह 11 बजे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का सफर पूरा कर लिया एवं -17 डिग्री तापमान होने के बाद भी तिरंगा फहराकर एक मिसाल कायम की। जनपद गाजीपुर के जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के नेतृत्व में लोगों को दिन प्रतिदिन त्वरित न्याय सुलभ हो रहा है। 10 दिनों के अंदर ही 700 से ज्यादा राजस्व मामलों का निपटारा कर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने गाजीपुर के लिए एक मिसाल कायम की एवं विभिन्न राजस्व निस्तारण के क्रम में 140 हेक्टेयर जमीन भी खाली करा ली गई है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि अनुचित रूप से राजस्व कर्मियों का विरोध करने सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी बरसात से पूर्व जनपद के चिन्हित तालाबों पोखरों आदि को खाली करा लिया जाएगा।
2: राजस्व कर्मचारियों को काम न करने देना, राजस्व कर्मचारी अधिकारियों के साथ गुंडागर्दी करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है और इस तरह का कृत्य अगर कहीं पे किया जाएगा तो हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। और मेरा जनपद गाजीपुर की जनता को ये कहना है कि इस तरह का कृत्य में ना पड़े और अगर ये जानकारी आएगी तो फिर हम लोग सब कार्रवाई करेंगे, शासकीय कार्य में बाधा ना पड़े। यहाँ पे पीड़ित जनता भी है जिसका कार्य हम लोग डेली जनता दर्शन भी करके सुनवाई करते हैं और न्याय करने का प्रयास करते हैं।
0: पर्यावरण दिवस के दिन प्रारंभ होकर वृक्षारोपण अभियान को विशेष गति दी जा रही है जिसमें जनपद गाजीपुर में वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण स्थान बना सके। प्रख्यात पर्यावरणविद एवं गाजीपुर के मूल निवासी कृष्णानंद राय ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को गाजीपुर एवं वाराणसी में वृक्षारोपण कर पूरे भारत में पर्यावरण संबंधी बैठकों को वृक्ष के नीचे ही करने की सरकार से मांग की। ज्ञातव्य है कि गाजीपुर के बजलपुर गांव निवासी कृष्णानंद राय 40 वर्षों से साइकिल से यात्रा कर लाखों की संख्या में वृक्षारोपण कर लोगों के लिए पर्यावरण को जागरूक कर रहे हैं।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रजनी टोंक के स्वर में रोहेलखंडी लोकगीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को
2: शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
1: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु
2: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा
1: साप्ताहिक आयोजित कार्यक्रम।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आइए अब सुनते हैं रजनी टॉक के स्वर में ये रोहिल खंडी लोकगीत।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से मीडियम वेव 314.47 मीटर पर आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रजनी टोंक के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत।

रजनी टोंक के स्वर में आप सुन रहे थे रुहेलखंडी लोकगीत। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 304.47 मीटर पर। प्रातः के 9:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बात आसपास की।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम बात आसपास की में आपका स्वागत है। मैं हूँ इशिका कौशिक।
1: और मैं दिव्यम कंडवाल।
0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं, बात आसपास की हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम अपने आसपास हो रही घटनाओं की जानकारी आप तक पहुँचाते हैं, साथ ही स्थानीय समस्याओं और मुद्दों पर भी आपका ध्यान केंद्रित करते हैं।
1: श्रोताओं, आज बात आसपास की में हम आपको ले चलते हैं जनपद बिजनौर के सिहवारा क्षेत्र के अंतर्गत ताजपुर में स्थित एक ऐतिहासिक और बेहद सुंदर चर्च में, जिसका नाम है सेकर्ड हार्ट चर्च, जिसे लोग राजा का ताजपुर चर्च के नाम से भी जानते हैं।
0: यह चर्च न सिर्फ अपनी धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी ऐतिहासिक विरासत, शांति भरे वातावरण और सुंदर संरचना के कारण भी लोगों को आकर्षित करता है।
1: श्रोताओं, करीब 113 वर्ष पुराने इस चर्च का संबंध ताजपुर की रियासत और यहाँ के राज परिवार से बताया जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस चर्च का निर्माण राजा फ्रांसिस जेवियर श्याम रिक और उनके भाई कुमार सिल्वेस्टर नॉबर्ट शिवनाथ रिक ने कराया था। इतना ही नहीं, एक शिलालेख के अनुसार इस चर्च को 18 नवंबर 1913 को आगरा के आर्च बिशप चार्ल्स जेंटली ने आशीर्वाद भी दिया था।
0: श्रोताओं, चर्च के आसपास का वातावरण बहुत ही शांत, स्वच्छ और अनुशासित है। दीवारों पर धार्मिक चिन्ह, पवित्र स्मृतियां और ऐतिहासिक पट्टिकाएं इस स्थान की गरिमा को और बढ़ाती हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, इस समय चर्च परिसर में विद्यार्थियों के लिए एक विशेष कैंप चल रहा है, जिसमें कक्षा 10 तक के छात्र भाग ले रहे हैं। छात्रों के लिए यहाँ कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि वे सुरक्षित और अनुशासित वातावरण में सीख सकें।
0: यहाँ बच्चे न केवल पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि खेल, गीत संगीत, वाद्य यंत्र और नृत्य जैसी गतिविधियों में भी उत्साह से भाग ले रहे हैं।
1: श्रोताओं, आइए सबसे पहले बातचीत करते हैं ब्रदर अनुज जॉन से और जानकारी लेते हैं यहाँ चल रही गतिविधियों के विषय में।
2: नमस्कार, मेरा नाम ब्रदर अनु जॉन है। मैं पुरोहिताई के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे लगभग 8 साल पढ़ाई करते हो चुके हैं और लगभग 3 वर्ष बाद मैं एक पुरोहित बन जाऊंगा। और मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पर दोबारा आया हूँ, क्योंकि मैंने 2012 से 2016 के बीच लगभग 4 साल यहाँ पर मैंने कृपाओं की माता स्कूल है पास में ही, उधर पढ़ाई की है। हम इधर ही हॉस्टल में रहा करते थे, लगभग 10-12 जन थे। पे हम बच्चों के लिए एक छोटा सा कैंप चला रहे हैं, तो लगभग 50 बच्चे हमारे साथ हैं और उनके जो देखभाल के लिए मुझे यहाँ रखा गया है। तो मुझे खुशी होती है इस परिवेश को देखकर और इसमें रहकर, क्योंकि जब मैं पीछे की ओर अपनी दृष्टि को लगाता हूँ, जब हम यहाँ पर रहते थे तो पूरा जंगल रहता था चर्च के आसपास, पूरी घास फूस और इतना डेवलप नहीं था। लेकिन अभी आप भी देख सकते हैं, जैसे ही आप चर्च परिसर के अंदर आते हैं, बहुत सुंदर सा दिखाई देता है चर्च के आसपास पूरा, जो अच्छे से बना दिया गया है। जब हम रहा करते थे, एक छोटा सा कमरा था, हम 10-12 जन उसमें रहते थे, लेकिन अभी एक बहुत सुंदर हॉस्टल बनाया है। चर्च का परिवेश है बहुत सुंदर दिखाई देता है और बहुत ही मन लगता है। और ये चर्च एक ऐतिहासिक इमारत है जिससे लगभग 113 साल हो चुके हैं।

0: अभी भी जो सुंदरता है इस चर्च की वो अभी बनी हुई है, क्योंकि देख उसकी देख रेख सब फादर बहुत अच्छे से करते हैं, तो हमें खुशी होती है लोगों को यहाँ देख कर।
1: बच्चों का यहाँ पे डेली रूटीन क्या रहता है और आप क्या क्या चीज़ें उनको सिखाते हैं?
0: जो ये कैंप लगाया गया है ये अभी हमारे मेरठ धर्म प्रांत की ओर से है, तो इसमें हम सुबह उठते हैं, बच्चों के लिए योगा कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, उसके बाद जो बच्चों के लिए क्लासेस हैं, जो डांस क्लासेस हैं, म्यूजिक क्लासेस हैं, और इनको एटिकेट्स वगैरह सिखाते हैं, बिहेवियर सिखाते हैं, शाम को गेम्स वगैरह सिखाते हैं, फिर शाम को प्रेयर रखी जाती है उनके लिए, दिन में 2-3 बार हम प्रेयर कराते हैं चर्च में। तो ये इन बच्चों को बेसिकली 1 महीने का कार्यक्रम है। पहले हम पल्ली स्तर पर, मतलब एक जगह से जाकर दूसरी जगह पर लगभग 5 दिन का कैंप किया जाता था, लेकिन अभी हमारे बिशप स्वामी जी ने एक कदम उठाया कि एक ही स्थान पर हम सभी बच्चों को इकट्ठा करके उनके लिए कैंप कर रहे हैं।
2: आगे की क्या प्लान्स है, मतलब कब कब ये कैंप लगाया जाएगा?
0: अभी ये पहला साल है जो ऐसे करके लगाया गया, इसकी सफलता पर निर्भर करता है, क्योंकि पूरा 1 महीने का कैंप होता है, इसके लिए बजट है, मेंटेनेंस के लिए देखना पड़ता है, बाहर से टीचर्स बुलाने पड़ते हैं। फिर मेन थिंग है जो बच्चे कितना ग्रास्प कर पा रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो कितना सीखते हैं, कितना ग्रास्प करते हैं, अगर वो अच्छे से पकड़ते हैं उस चीज़ को। एट दी एंड एक छोटा सा प्रोग्राम भी रखा गया है बच्चों के द्वारा, जो आने वाली 19 तारीख को बच्चों के द्वारा पुटअप किया जाएगा। सो उसके बाद बिशप स्वामी डिसाइड करेंगे कि अगले साल से ये करना है कि नहीं करना है।
1: श्रोता हमारे साथ जुड़ी हैं सिस्टर टिसीना, आइए जानते हैं उनका अनुभव।
3: मैं वैसे अक्सर हर साल जाती हूँ, स्कूल में टीचर्स को भी स्टाफ को भी सेमिनार कंडक्ट करती हूँ, इसलिए ये इनको सिखाना, इनके साथ रहना बहुत खुशी की बात है। मैं आशा करती हूँ कि इसमें अंत में कुछ तो बदलाव जरूर आएंगे, तो ही हमारी आशा है।
1: आपने बताया कि आपका 30-35 साल का अनुभव रहा है, तो उसके विषय में थोड़ा बताइए।
3: मैं तो सदा ही समाज सेवा का काम करने के लिए चाहती थी, मैं बराबर स्कूल में भी पढ़ाती थी, क्योंकि पढ़ाई दोनों जुड़े हुए हैं, स्कूल में हो या सोशल वर्क विलेज में हो, पर मुझे अच्छा लगता है सदा ही गाँव के लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ थोड़ा सा एक साथ मिलकर उनकी भी काफ़ी विकास के लिए मैंने काम किया, विशेषकर हरियाणा और राजस्थान में जहाँ बहुत परेशान है महिलाओं के बारे में, तो हमें बहुत लड़ाई करना पड़ा उनके आगे आने के लिए। तो आखिर में ये सब सघन करके अच्छा परिणाम हुआ कि एक उनकी भी जीवन में विकास हुआ है। आज देखे मैं बहुत खुश है कि हमारे काम एफर्ट कामयाब हो गया है।
2: किस सब्जेक्ट पर आपका मेन फोकस रहता है?
3: वीमेंस डेवलपमेंट और यूथ का डेवलपमेंट है, मैं बहुत बॉयज एंड गर्ल्स और सब चिल्ड्रन।
1: मैम एक मैसेज जो हमारे सभी लिसनर्स आपको सुन रहे हैं उनको आप देना चाहेंगी कि
3: हर इंसान को मौका मिलता है अपने जीवन में दूसरों के लिए थोड़ा कुछ करने के लिए, ये तो हमारी ईशा मसीह ने ही कहा था, तो मैं फ्री में मिला है, इसका मतलब है हमें जो भी हमारे अनुभव है, हमारी पढ़ाई लिखाई है, ये हम अपनी परिश्रम से नहीं किया है, जब हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उनकी परिश्रम जैसे हम आज हुआ है, तो हमें काफी अनुभव हुआ है फील्ड में रह के, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो अनुभव है दूसरों के साथ बांटेगा, अनुभव के साथ बताएंगे। कोई भी इंसान इसमें शामिल हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, पढ़े लिखे हो, बस आपकी सोच सही हो उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
2: श्रोताओं इसी क्रम में आइए जानते हैं यहाँ उपस्थित कुछ छात्रों से।
1: आपका नाम?
4: मेरा नाम अक्षय जॉर्ज है।
1: यहाँ पर आपको कैसा लगता है?
4: यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा लगता है, डेली क्लासेस होती हैं, म्यूजिक क्लास, डांस क्लास, प्रेयर होती है, इतना सुंदर चर्च है, शाम डेली चर्च में प्रेयर करने के लिए जाते हैं, चर्च में ही बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है मन को।
1: और हॉस्टल में आपके दोस्त हैं?
4: जी सब दोस्त ही हैं, सारे एक साथ ही रहते हैं, सारे दिन भर मस्ती करते हैं, पूरी क्लासेस लेते हैं, फ्री टाइम में खेलते हैं।
1: तो अक्षय ये जो कैंप चल रहा है, इस कैंप में आपको अभी क्या क्या सीखने को मिला?
4: इस कैंप में अभी तक मैंने कैश्यू सीखा और डांस क्लासेस चलते हैं, डेली डांस सीख रहे हैं, वही स्पोर्ट्स भी सीख रहे हैं, और 19 को रात में यहाँ पे परफॉर्मेंस होगा पूरा, जो कुछ हम यहाँ पे सीख रहे हैं वो सारा हम परफॉर्म करेंगे।
2: आपका नाम?
5: मेरा नाम लियोन खलखो है।
2: लियोन आप कैंप में अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए।
5: ये कैंप काफी अच्छा रहा मेरे लिए, स्पेशली मैंने अपने आप को कंट्रोल करना ज्यादा सीखा है इस कैंप, स्पेशली मैं बहुत ज्यादा गुस्सा या फिर एंगर इश्यूज होते थे, पर यहाँ पे बाकी लोगों के साथ एडजस्ट करते हुए बहुत अच्छा लगा है, अलग अलग लोगों से मिलकर यहाँ के पता चला मेरे से भी काफी ज्यादा टैलेंटेड लोग और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, मेरे से कम उम्र वाले भी और मेरे से बड़ी उम्र वाले भी, तो मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ के।
2: और किन एक्टिविटीज में आपने पार्टिसिपेट किया है?
5: मेरा इंटरेस्ट तो म्यूजिक में ही है, स्पेशली कीबोर्ड बजाने में ज्यादा।
1: लियोन आप बड़ों के क्या बनना चाहते हैं?
5: अभी डिसाइडेड तो नहीं है, बट हमारे पेरिस प्रीस्ट हैं फादर मेंडोंसा, वो म्यूजिक को लेके काफी ज्यादा मुझे प्रोत्साहन देते हैं, तो वो मेरा एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइड होने वाला।
2: कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर अस?
5: आई वुड स्टार्ट फ्रॉम द कोरस। I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I've fallen to. I was lost within the darkness, but then I found her. I found

0: श्रोताओं साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं म्यूजिक टीचर हर्षित, आइए उनसे जानते हैं। सर, आपका इस कैंप में अब तक का अनुभव क्या रहा है?
1: एज ए म्यूजिक टीचर, एज ए स्टूडेंट, मैंने अपने लाइफ में जिस तरह से अपना टाइम म्यूजिक को दिया है, उतना ही मुझे अपने बच्चों के बीच में रह के सीखने को मिलता है। द थिंग इज कि मोस्ट ऑफ द बच्चों को एक्सेस नहीं है। ये क्या है कि जैसे कीबोर्ड हो गया, कैशियो हो गया, गिटार हो गया, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, फिर वोकल के कुछ कुछ मेथड्स होते हैं, तो इन लोग को बच्चों को मालूम नहीं। अभी गाना गाना बोलो तो बच्चे अपने अपने पैशन से गाते हैं, लेकिन वो सही तरीका सिखाने में, और इनका इंटरेस्ट भी देखे हैं कि इनको सीखने में जो मजा आ रहा था उसको देख के भी हम लोग को सिखाने में और थोड़ा सा अच्छा लग रहा था।
2: श्रोताओं, इसी के साथ मैं इशिका कौशिक
0: और मैं दिव्यम कंडवाल आपसे अनुमति चाहते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए
3: सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बात आसपास की। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है आपके अनुरोध पत्रों और व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार।

0: आए दिन बहार के। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे। इस गीत के लिए फरमाइश की थी हमारे इन सब श्रोताओं ने, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा और उनके साथी। कालका से आप थे शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल।
1: और श्रोताओं, इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास भेजी है ग्राम पंचायत बठेना, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा और आपका पूरा परिवार ने। और एक और मैसेज हमारे पास पहुंचा है सारा गांव चटौदा से, लिखने वाले हैं सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा।
0: महाराष्ट्र से इस गीत की फरमाइश करने वाले थे महाराष्ट्र के बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और राम निवास अग्रवाल।
1: और इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है लेवा खेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से, नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, परी खर्चे, गणेश, कार्तिक, देविका कुमारी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी और खुशी वाणी ने।
0: मॉडल टाउन करनाल से आप थे सुधीर नूतन, संदीप गोगलानी, सुनीता शर्मा और अनामिका।
1: और श्रोताओं, अब जो गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस गीत की फरमाइश भी हम शामिल कर लेते हैं। और ये गीत सुनने की फरमाइश हमारे पास भेज रहे हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जौंधले, आरती और नांदेड़ महाराष्ट्र से ही आपका पूरा परिवार।
0: यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र, धर्मेंद्र और उनके परिवार के अन्य सभी सदस्य।
1: और किशोर कुमार की आवाज़ का कोई गीत सुनने की फरमाइश हमारे पास लिखकर भेज रहे हैं ग्राम जौहलदा बागपत से संजय ढिंडिया, नमन, मुस्कान और कुणाल।
0: जतो का किशनपुर से फरमाइश करते हैं आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, चांदनी नाज और आलम शेख।
2: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे गोपी फिल्म का गीत। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन थी कल्याण जी आनंद जी की। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है अमानत फिल्म से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, शब्द रचना साहिल लुधियानवी की और संगीत रचना रवि की और पसंद आप सब श्रोताओं की। कंडला बंदर कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा जौहरी और जैनिश, गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, अहमदाबाद से कंचन सोनार और कुसुम।
1: मोहम्मद रफ़ी का ही गीत सुनने की फरमाइश लिखकर हमारे पास भेज रहे हैं कवाई सालपुरा जिला बौरी राजस्थान से। लिखने वाले हैं सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक और आपका पूरा परिवार।
0: इंदिरा विहार रायगढ़ से अक्रम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम नूरजहां और वलीउल्ला नूरजहां। राजनांदगांव से आप हैं याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा और उनके परिवार के सदस्य। जेल रोड रायगढ़ से इस गीत को पसंद करते हैं रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी।
1: और इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास आई है मानिकराम प्रजापति, जानकी प्रजापति, घनश्याम, हरिशंकर, प्रशांत, रत्नेश प्रजापति जी के द्वारा। ये लिखकर भेज रहे हैं ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिखी है ग्राम राजापुर, लकरापारा, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़, खेल साय मरकाम से नयन, प्रकाश, शारदा, संतरी और रूपमती।
0: करणवीर हाउस भुच्चो कैचियां भटिंडा से इस गीत को पसंद करते हैं प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, सिमरन, एकम दमन और अभिजोत।
1: और मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ में गीत सुनने की फरमाइश लिखकर हमें भेज रहे हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतेक बीरक और मीका बीरक।
0: तो आइए सुनते हैं अमानत फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं कारवां फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। शब्द रचना है मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत रचना राहुल देव बर्मन की है। पसंद करते हैं इस गीत को प्रमिलागंज आलोर जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा और उनके दोस्त।
1: और चूंकि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम, जिसमें आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो जल्दी से आप भी अपना व्हाट्सएप मैसेज कीजिए हमें। हमारा नंबर है 9457078288 और इस नंबर पर मैसेज हमारे पास आ गए हैं।

0: मैसेज आया है अविका आर्ट श्रीरामपुर से। डॉक्टर अशोक कुमार, अविका, जीविका, सानू और अर्चना का। और इसी
1: निकट बिजली घर कस्बा मीरगंज बरेली से आप हैं कल्लू भाई मिस्त्री, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद दानिश और इकराम अली प्रेमी। हलवाईयान कस्बा शेरकोट से फरमाइश करते हैं मोहम्मद वाकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू, साजिदा और चांदनी रानी। दाऊद सराय सहारनपुर से फरमाइश करने वाले श्रोता हैं अनवर साबरी, शन्नो साबरी, इरम और अमान साबरी। दूल्हापुर जिला मुरादाबाद से हैं मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य और सोनी। ये पत्र हमारे पास आया है अफगानान मोहल्ला कस्बा शेरकोट जिला बिजनौर से। अनुरोध करते हैं नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, नाजिमा बी, अलमीर और जन्नत।
0: और इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास लिखकर भेज रहे हैं ग्राम जुझेला थाना शिवाला कला जिला बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयशा, आलिया, साइना, महविश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर।
1: जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजिमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, समरीन परवीन, मोहम्मद रेहान और माहिरा नूर ने भी इसी गीत के लिए फरमाइश की है। ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड से आप हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र यादव, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका और रोमिका यादव।

0: किशोर कुमार की आवाज में एक और गीत हम आपको सुना रहे हैं सौतन फिल्म से। संगीत है उषा खन्ना का और गीत सावन कुमार ने लिखा है। पसंद करते हैं इस गीत को आप सब श्रोता। महिंद्रा वाच कंपनी अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
1: और इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास पहुंची है विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक और चेतन नाहटा के द्वारा, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से।
0: शिवाजी चौक कटनी, शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से फरमाइश करते हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से आप हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव।
1: सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से आप हमें मैसेज भेज रहे हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। और ये मैसेज हमारे पास आया है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक परी और स्वाति के साथ हैं प्रयाग चौधरी।
0: ये पत्र है मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमेलागंज आलोड जिला रतलाम से। फरमाइश करते हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा।
1: किशोर कुमार की ही आवाज़ में गीत सुनने की फरमाइश लिखकर हमें भेजे है श्रोता रघुवीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब और लड्डू ने।
0: तो आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं सौतन फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: अपनी भी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं घरवाली की जय।
1: आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर में अब आपको सुनवाते हैं जवाब फिल्म का गीत। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के लिए फरमाइश की है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा ने।
2: और इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास आई है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला के द्वारा।
1: पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से आप हैं मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री।
2: रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश कर रहे हैं।
1: सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से पसंद करते हैं इस गीत को कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, मुश्तबा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई।
2: ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं हमारे पास मैसेज राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
1: तो आइए सुनते हैं जवाब फिल्म का ये लाजवाब गीत।

0: सुनने की फरमाइश हमारे पास लिखकर भेजी है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा ने।
1: जिला मुरादाबाद संबल रोड बस्तौर से फरमाइश करते हैं अतर सिंह सैनी, मीना, मुन्ना, पवित्रा, आंचल, अजय, आकांक्षा और आकाश।
0: डायमंड रेडियो श्रोता संघ महबूबपुरा सनावद मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं मोहम्मद जावेद खत्री, मोहम्मद इकबाल खत्री, जैद मुनीरा और बाबू भाई खत्री।
1: डबवाली हरियाणा से जेके बोकोलिया, सुनीता बोकोलिया, संजय, अनिल और मीनू बोकोलिया।
0: और ये मैसेज हमारे पास आया है आकाशवाणी नजीबाबाद मोहल्ला धर्मदास नजीबाबाद से ही। आपकी पसंद जो आप सुनना चाहते हैं, लिखने वाले हैं गुलाम हसन, निशाद बानो, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फरमान, साबरा खातून और शहजादी।
1: आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये पत्र है, अनुरोध करने वाले श्रोता हैं मेरा जहां गुलाम साबिर राही और ताज मोहम्मद अंसारी।
0: और इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिखकर भेजी है कोल सिटी बरका काना से अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू कमल और मोहम्मद अफजल मल्लिक।
1: तो आइए सुनते हैं चौधवी का चांद फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।
2: का सवाल है बाबा, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला।

0: दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है। ये दुनिया गोल है ऊपर से।
1: ये कहां से मर गए, ट्यून बदलो।

0: ने इसे।
1: इसे नहीं बाबा, मुझे। अच्छा बेटा अच्छा, लंबी उम्र हो, जल्दी से लंबे हो जाओ।
0: ये बुढ़ा गोल है, ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है, ये दुनिया गोल है वाय।
2: श्रोताओ, अब आपको सुनवाते हैं कण कण में भगवान फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। शब्द रचना है भरत व्यास की और संगीत रचना शिवराम की है। पसंद

0: करते हैं शाही मार्केट से और जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, अराफात चौधरी, आदिब चौधरी और कादिर चौधरी।
1: और इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिखकर भेज रहे हैं तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम मुन्ना और दानिश शेख।
0: मौला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से फरमाइश करते हैं विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, अनितापुरी, ममतापुरी, मेघापुरी, पूजापुरी, गगन कपूर, गुंजन कपूर, लायसा कपूर, रामा मलिक, कुणाल मलिक, निधि मलिक, हरीशपुरी, सतीशपुरी, राकेशपुरी, विनोदपुरी, पालीपुरी, डीसीपुरी, अरुणपुरी और पुरी परिवार के सभी सदस्य।
1: पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से फरमाइश कर रहे हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक।
0: दौलतबाग मुरादाबाद से आप हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी।
1: उत्तम नगर दिल्ली से फरमाइश लिखकर भेजी है कमला रानी, बोधराज, खोरवाल, गीतिका और भानु प्रकाश ने।
0: ये पत्र है पट्टी मेहर बड़ौत से रामानंद कश्यप, विमलेश कश्यप, आर एन कश्यप, आर के कश्यप, पालीराम भगत, आयुष आदित्य और उनके मम्मी पापा का।
1: जेवरा हिसार से फरमाइश हमें लिखकर भेज रहे हैं वीरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण, सुरेंद्र भ्याण और मनोज भ्याण।
0: महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे ने भी इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी है।
1: और इसी गीत को सुनने की फरमाइश कर रहे हैं कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार और साई गायकवाड़।
0: तो आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर के स्वर में ये गीत।

0: दोस्तों कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं रूप कुमार राठौर के स्वर में बॉर्डर फिल्म का गीत। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और धुन है अनु मलिक की। पसंद आप सब श्रोताओं की है। मनकारा मंदिर, बीडीए कॉलोनी, करगैना बरेली से पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश उर्फ बंटी, रूबी भारती, रचना भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, ममता भारती, ओमवती भारती, बेटी खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश।
1: और बॉर्डर फिल्म के इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है पंकज शर्मा उर्फ निक्की शर्मा ने। आपके साथ हैं सुभाष शर्मा, गायत्री शर्मा, नीरज शर्मा और सरस्वती शर्मा। गांव उदमा बाला, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से आप हमारे साथ हमारे पास ये फरमाइश भेज रहे हैं।
0: ड्राइवर कॉलोनी निजामाबाद से आप हैं शेखुल्ला बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, शेख वहाब और नूरजहां बानो। बदलापुर मुंबई से बंटी गंवाणकर और सुभाष पोतेवार ने भी इस गीत को पसंद किया है।
1: रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से इसी गीत को पसंद कर रहे हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार।
0: तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत बॉर्डर फिल्म से।

श्रोताओं, बॉर्डर फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत तुम्हारे अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बजे हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का प्रोग्राम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं अमर अकबर एंथोनी फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ। आवाजें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और मुकेश की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत के लिए संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कच्च पाए रखा शोला दबाए रखा हमेशा रूठा रहता है खुदा गवाह हम कस कह

0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले यहाँ हम रुकते हैं कुछ जरूरी संदेशों के लिए।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: श्रोताओं, चित्रपट संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आइए अब आपको सुनवाते हैं बगावत फिल्म का ये प्यारा सा नगमा आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। और श्रोताओं, आइए इसी कार्यक्रम में एक और प्यारा सा नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नसीब से। आवाज़ें हैं कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना नसीब फिल्म का ये प्यारा सा गीत, और आइए अब इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं बाजी फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कभी कभी से। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, कभी कभी फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
3: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, जय हिंद जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडे और संजय मार्कंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
3: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
2: जी,
3: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
2: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
3: अगला संदेश हमें मिला तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
2: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
3: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
2: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ

0: शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
1: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
0: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
1: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
1: श्रोताओं हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
0: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 to 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।

0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
1: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
1: कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहां थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था। वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई।
2: लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
2: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
2: क्या कंचा चाहिए?
1: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
1: नहीं।
2: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा। क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
1: आह, कितने सुंदर कंचे। ओह।
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता कंचा ले सकता था। लिया होता तो।
1: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहला श्लोक।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
1: आ गया, जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
1: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना?
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी, उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
6: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है
1: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
1: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
6: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
1: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें

0: चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
1: अरे तू उधर क्या कर रहा है?
0: उसका दम घुट रहा था।
1: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
1: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
2: मास्टर जी,
1: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
2: वो
0: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
1: हाँ हाँ बता, डरना मत।
2: वो
0: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
1: हाँ हाँ
0: वो कांपते हुए बोला,
2: वो कंचा।
1: कंचा?
0: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
1: स्टैंड अप।
0: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
2: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
0: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
2: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
0: तब शक हुआ,
2: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो?
1: किसी को शक हो तो पूछ लो।
0: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
1: क्या किसी को कोई शक नहीं?
2: नहीं मास्टर जी।
0: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
2: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
1: अप्पू क्या सोच रहे हो?
2: वो मैं
1: पूछ लो ना, शंका क्या है?
2: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
1: क्या सोच रहे हो?
2: वो पैसे।
1: क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
2: हाँ।
1: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले

0: तो उसे लेकर क्या करेगा?
1: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
2: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
1: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
4: लाओ।
1: मास्टर जी ने कहा,
0: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
1: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
2: ओए,
1: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
2: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
1: वो बेंच से उतरा।
0: किधर?
1: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
2: फीस देनी है।
0: फीस मत देना,
1: मास्टर ने कहा। वो झिझकता रहा।
0: ऑन द बेंच।
1: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
0: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
2: ध्यान दूंगा।
1: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
5: बच्चों, एक एक करके आओ।
1: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
2: पहले मैं आया हूँ। मेरे बाकी पैसे।
1: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
2: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
1: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
0: क्या सब फीस जमा कर चुके?
6: जी मास्टर जी।
1: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

0: शाम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सींकचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर?
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया।
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
3: माँ,
4: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
2: क्या देखो माँ?
4: अरे ये क्या है?
2: मैं नहीं बताऊंगा।
4: मुझसे नहीं कहेगा?
2: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
2: खरीदे हैं।
4: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
2: दोपहर को दिए थे ना।
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
4: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गईं। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
2: बुरे कंचे हैं, है ना?
4: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
2: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
4: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
3: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:01 हुआ है। अब सुनिए जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में। श्रोताओं, आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। ये प्रोग्राम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। दोपहर 12:05 पर हम आपको सुनवाएंगे निशात खान द्वारा सितार पर बजाया राग चांदनी कल्याण, अलाप और गत तीन ताल। तबले पर संगत करेंगे उस्ताद शफात अहमद खान। दोपहर 1:15 पर कार्यक्रम परिवार जगत में आज चर्चा होगी विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस पर। साथ ही हम आपको सुनवाएंगे एक परिचर्चा जिसका विषय रहेगा ग्लोबल वार्मिंग। परिचर्चा में प्रतिभागी होंगी डॉक्टर एसके गुप्ता, श्याम तिवारी और डॉक्टर विक्रांत। संचालन करेंगी ज्योति पाल। लोकधारा कार्यक्रम में आज दिन में 1:45 पर आप सुनेंगे दयाशंकर फुलारा की आवाज में कुमाऊनी लोकगीत। शाम 5:00 कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत के अंतर्गत आज भारत की 2 रोजगार सृजन योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। युवा श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम युववाणी में आज शाम 5:15 पर क्रम होंगे बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, गपशप अड्डा, क्रैश कोर्स पैसा वसूल और कहानी के उस पार। किसान श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में आज शाम 6:05 पर चर्चा होगी गन्ने की फसल में उर्वरक प्रबंधन विषय पर और साथ ही जानकारी दी जाएगी प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना के विषय में। कृषि जगत कार्यक्रम में किसान श्रोता सुनेंगे एक भेंटवार्ता जिसका विषय होगा AI और कृषि, इस विषय पर सहायक प्राध्यापक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद ओवैश से बातचीत करेंगे नरेश पाल। विविधा कार्यक्रम में शाम 6:45 पर आज वार्ता का विषय होगा प्रदूषण नियंत्रण में आम जन की भूमिका। वार्ताकार होंगे शौकीन अहमद। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज शाम 7:32 पर हम आपको सुनवाएंगे पुनीत मेहरा की आवाज में भजन। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे आज दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम मिड डे मेलोडी में, दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम नई फिल्मों से के अंतर्गत और शाम 6:55 पर छाया गीत कार्यक्रम के अंतर्गत। रात 8 बजे गीत संध्या में, रात 8:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत, रात 10 बजे भूले बिसरे गीत और रात 10:30 पर आप सुनेंगे आपकी फरमाइश के अंतर्गत फिल्मी गीत। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत निषाद खान का सितार पर बजाया राग चांदनी कल्याण। अलाप और गत 3 ताल, तबले पर संगत दे रहे हैं उस्ताद शफात अहमद खान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत निशात खान का सितार पर बजाया राग चांदनी कल्याण, अलाप और गत तीन ताल। तबले पर संगत दे रहे थे उस्ताद शफात अहमद खान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। श्रोताओं नमस्कार, मिड डे मेलोडी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं कसूर फिल्म के इस प्यारे से नगमे के साथ। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। और श्रोताओं, आइए इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज का ये प्यारा सा गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने। फिल्म का नाम है अकेले तुम, क्षमा कीजिए, फिल्म का नाम है अकेले हम अकेले तुम।

0: अकेले हम अकेले तुम, इस फिल्म से अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक को। और श्रोताओं, आइए अब इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना।
1: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हों। सभी इच्छुक अभ्यर्थी एवं संस्थाएं योग्य बच्चों के नामांकन सिफारिशें केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेज सकती हैं। पोर्टल है https://awards.gov.in। नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। विशेष रूप से बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अथवा संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
0: श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं मिड डे मेलोडी कार्यक्रम के अंतर्गत सोनू निगम और श्रद्धा पंडित की आवाज में ये प्यारा सा नगमा, जिसे लिखा है समीर ने और इसको संगीत दिया है जतिन ललित ने। फिल्म का नाम है संघर्ष।

संघर्ष फिल्म का गीत अभी आपने सुना कार्यक्रम मिडडे मेलोडी के अंतर्गत। और श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं आशिकी फिल्म का ये प्यारा सा गीत। कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में गीत लिखा है समीर ने और धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

आशिकी फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। और आइए कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति हम आपको सुनवाते हैं अंदाज फिल्म से। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में ये गीत लिखा है समीर साहब ने और आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

अंदाज फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर का 1 बजने वाला है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले होंगे।

0: सर के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13 भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to Slovakia after completing the first leg of his visit to Nice in France. Mr. Modi said this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. In a social media post, Mr. Modi also said he is looking forward to productive meetings with Slovakia's President Peter Pellegrini and Prime Minister Robert Fico. This is the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovakia since its independence in 1993. The 52nd G7 summit will begin at Evian in France today. The three-day event is being attended by G7 members, Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US and the European Union. In addition to the members, France has invited India, Brazil, Egypt, Kenya, South Korea, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Ukraine and the UAE as outreach partner countries. This will be the 13th time that India will participate in the G7 summit as a partner country. Prime Minister Narendra Modi will participate in outreach sessions tomorrow, a report from our correspondent.
2: The G7 summit under the French presidency had chosen some key priorities for the current year. In broader terms, these include reducing excessive macroeconomic imbalances, fostering shared growth and renewing international partnerships. Discussions are also expected on strengthening the resilience of critical and mineral value chains, protecting miners online and settling major geopolitical crises. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian tomorrow to participate in the summit. The Prime Minister is visiting the French city at the invitation of French President Emmanuel Macron. The visit holds immense significance, providing Prime Minister Narendra Modi a crucial platform to engage with world leaders on issues vital not to just India but to the entire global south. Ankit Kumar, Akashwani News, Evian, France.
3: Prime Minister Narendra Modi has said the middle class of the country have contributed to nation building in countless ways and the NDA government is privileged to be working towards fulfilling their aspirations. In a social media post, Mr. Modi noted that over the last decade, governance has increasingly focused on improving the quality of life.

0: बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार।
1: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए दोबारा होने वाले इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इसे NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर का 1:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम परिवार जगत।

कार्यक्रम परिवार जगत सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी साथी ज्योति का स्नेह भरा नमस्कार। श्रोताओं कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपना और अपनों का बहुत ध्यान रख रहे होंगे। श्रोताओं जैसा कि आप जानते हैं गर्मी का मौसम अपने पूरे सबाब पर है, ऐसे में बहुत आवश्यकता है अपना और अपने परिवार का ध्यान रखने की। श्रोताओं जैसे जैसे गर्मी अपना विकराल रूप लेती है वैसे वैसे बीमारियां बढ़ती जाती हैं। बीमारियां जैसे लू लगना, डिहाइड्रेशन, फूड पॉइजिंग, दस्त, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, टाइफाइड, वायरल संक्रमण आदि बीमारियां हमें घेर लेती हैं। श्रोताओं हमें बहुत जरूरत है कि गर्मियों में होने वाली इन बीमारियों से हम अपना बचाव करें। इसके लिए हमें पूरे दिन में कम से कम 5 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी ना रहे। आशुताओं बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो अधिक पानी पीने से दूर हो जाती हैं, तो ऐसे में हमें पानी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी आदि का सेवन भी हमें हमारे शरीर को पानी की कमी नहीं होने देता। ऐसे में इस मौसम में कोशिश करनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक पानी और इन फल सब्जियों का सेवन अवश्य करें। श्रोताओं कोशिश करें कि तला भुना और मसालेदार भोजन कम से कम करें या फिर बिल्कुल भी ना करें और धूप में कम से कम निकलें, और बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकला आ जाए, और बाहर जाते हुए छाता, टोपी, गमछे का उपयोग अवश्य करें। किसी भी गंभीर स्थिति में अपने चिकित्सक से जरूर संपर्क करें। श्रोताओं बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इस मौसम में थोड़ी सी सावधानी हमें कई बीमारियों से बचा सकती है। स्वच्छता, संतुलित आहार और पर्याप्त पानी का सेवन स्वस्थ जीवन की कुंजी है, इसलिए बचाव ही सबसे अच्छा उपचार है। तो श्रोताओं हम बात कर रहे हैं कि गर्मियों में हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे करें, कैसे रखें। आशा करती हूँ आप इसका अवश्य ही लाभ उठाएंगे, और जानकारी अभी और भी है, परंतु अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, संदेशों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम परिवार जगत में। श्रोताओं, कार्यक्रम में संदेशों से पहले हम आपसे बात कर रहे थे कि गर्मियों के मौसम में किस तरह से अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें। और श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम में चर्चा करते हैं दिन विशेष पर, तो आज के दिन हम बात करते हैं आज के दिन की। तो आज खास दिन है हमारा विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस। साथियों, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे प्रत्येक वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। श्रोताओं, इसका उद्देश्य बुजुर्गों के साथ होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक दुर्व्यवहार के प्रति लोगों को जागरूक करना है तथा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए समाज को प्रेरित करना भी है। श्रोताओं, इस दिवस की शुरुआत 2006 में हुई थी और बाद में यूनाइटेड नेशंस ने भी इसे वैश्विक स्तर पर मान्यता प्रदान की। श्रोताओं, बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने अपने अनुभव, ज्ञान और त्याग से आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन किया है। लेकिन बदलती जीवन शैली, एकल परिवारों की बढ़ती प्रवृत्ति और सामाजिक मूल्यों में आ रहे परिवर्तन के कारण अनेक वरिष्ठ नागरिक उपेक्षा, अकेलेपन और दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं। ये दुर्व्यवहार केवल मारपीट तक सीमित नहीं है, बल्कि अपमानजनक व्यवहार, भावात्मक प्रताड़ना, आर्थिक शोषण, आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं से वंचित करना तथा उनकी इच्छाओं को अनदेखी करना भी इसके अंतर्गत आता है। श्रोताओं, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हमें ये सोचने का अवसर देता है कि हम अपने घर और समाज में बुजुर्गों के प्रति कितना संवेदनशील व्यवहार करते हैं। उनकी आवश्यकताओं को समझना, उनके अनुभवों का सम्मान करना, उन्हें निर्णय लेने के प्रक्रिया में शामिल करना, उनके साथ समय बिताना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वे वरिष्ठ नागरिकों के प्रेम, सुरक्षा और आत्मसम्मान का वातावरण उन्हें प्रदान करें। सरकार और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा बुजुर्गों के कल्याण हेतु उनकी योजनाएं, अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, किंतु उनके प्रभावी क्रियान्वयन के साथ साथ जन जागरूकता भी आवश्यक है। विद्यालय, महाविद्यालयों तथा सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवा पीढ़ी में बुजुर्गों के प्रति आदर और सहानुभूति की भावना विकसित की जानी चाहिए। अत्यंता किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि अपने बुजुर्गों के साथ व्यवहार कैसा व्यवहार करते हैं। आइए इस विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हम अपने घरों और समाज में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, सुरक्षा और उन्हें स्नेह प्रदान करेंगे तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। बुजुर्ग केवल हमारी अतीत की याद नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान का अनुभव और भविष्य की प्रेरणा है। उनका सम्मान करना हमारे कर्तव्य ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की भी पहचान है। श्रोताओं, अपने परिवार और परिवार के बुजुर्गों का हम ध्यान रखें, ये तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है ही, परंतु श्रोताओं, उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पीढ़ी को स्वच्छ हवा, साफ पानी दे, और ये हमारा कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य को किस तरह से हम पूरा करें, इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में एक परिचर्चा की है ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव पर, जिसमें हमें जानकारी दे रहे हैं जाने माने शिक्षाविद के गुप्ता सर, वालिया ग्लोबल एकेडमी के प्रिंसिपल श्री एस के तिवारी जी और विख्यात पर्यावरणविद विक्रांत शर्मा जी। आइए जानते हैं उनसे ग्लोबल वार्मिंग के विषय में।
3: परिवर्तन जीवन का शाश्वत नियम है, प्रकृति में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है।
2: यदि जल बहने की बजाय एक जगह एकत्रित हो जाए तो वो उपयोग के लिए योग्य नहीं रहता। हमें जीवन में भी इसी तरह परिवर्तन करते रहना चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सके और विकास हो सके। परंतु विकास का अर्थ विनाश बिल्कुल नहीं है। हम विकास की दौड़ में अंधे होकर प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। हम यह भूल गए कि प्रकृति से हमारा ही नहीं वरन प्रत्येक जीव जंतु का जीवन है। आज यही हो रहा है कि अंधाधुंध पेड़ों का कटान, जिसके परिणाम स्वरूप बेमौसम बारिश, अत्यधिक गर्मी, सर्दी और भूमंडलीय उष्मीकरण, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, नहीं संभले तो वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी पर कुछ भी हरा भरा नहीं रह जाएगा। सबको जागरूक होना होगा। कोई भी संस्था या सरकारी प्रयास कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य ना समझे। श्रोताओं, आज भूमंडलीय उष्मीकरण की महत्ता को देखते हुए हमने इसकी विस्तार जानकारी के लिए एक संगोष्ठी की और अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर के गुप्ता जी को, जो कि केमिस्ट्री के अध्यापक होने के साथ साथ अर्थशास्त्र में पीएचडी हैं और पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं। उनके साथ साथ हमें जानकारी देंगे श्याम तिवारी जी, जो ग्लोबल वालिया स्कूल के प्रधानाचार्य हैं और पर्यावरण प्रेमी भी हैं। इनके साथ ही हमें जानकारी देंगे विक्रांत जी, जो पर्यावरण प्रहरी के रूप में कार्य कर रहे हैं और प्रत्येक जन को अपने कार्य से जागरूक भी कर रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले डॉक्टर के गुप्ता सर से जान लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है।
3: ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान में वृद्धि को समझाने के लिए मुझे कुछ तथ्यों को पहले बताना पड़ेगा
2: जी।
3: जिनमें से एक नाम प्रकाश संश्लेषण है, दूसरा नाम ग्रीन हाउस और तीसरा नाम जो है वो इसका मेन कारण दिया गया कि किस प्रकार से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण में पुरानी स्थिति थी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल के क्रियाओं से एक महत्वपूर्ण यौगिक ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज के बनने के साथ साथ कुछ ऑक्सीजन भी मुक्त होती है। अब यही ऑक्सीजन बाद में सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित करता है। ये कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। ये आरंभिक अवस्था है कि ऑक्सीजन किस प्रकार से ग्लूकोज को बर्न कर रहा है, वो है प्रकाश की अनुपस्थिति में। और प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनना है, लेकिन उसके लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, नमी चाहिए और जिसको हम कहते हैं कि हरी वस्तुएं चाहिए, हरी चीजें, हरे पेड़ पौधे, जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। अब ये है, ये तो हुआ आपका प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद में अगली चीज आती है यहाँ पर शुरू, ठंडे स्थानों पर जहाँ पर तापक्रम -20 -30 होता है, वहाँ इतना कम तापक्रम पर पेड़ पौधे ठीक तरह से वृद्धि नहीं कर पाते। तो उसके लिए उन्होंने पहले कोशिश करी कि शीशे के एक पात्र में इस प्रकार के पौधों को लगाया जाए, सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ रहा है, उसकी ऊष्मा से जो शीशे का कक्ष है जिसको उन्होंने नाम दिया ग्रीन हाउस, उस कक्ष के अंदर तापक्रम नियंत्रित रहता है। लेकिन अब आ रहा है रूप इसका, अब खाली ऐसे प्रदेशों के लिए बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है पूरे संसार। हम खास तौर भारतवर्ष की बात करेंगे। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कई ओजोन की परतें होती हैं जो हानिकारक सूर्य की किरणों से हमें बचाती हैं। इसके अतिरिक्त और गर्म गैसें भी होंगी जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैसें और होती हैं। अब प्रकृति की स्थिति ये इस प्रकार की हो गई है कि किसी चीज पर कंट्रोल नहीं रहा, कितनी गैस बन रही है, उसका कैसा उपयोग हो रहा है, इसका कोई चीज सामने पहलू सही नहीं बन पाया। अब होता क्या है कि जो सूर्य की किरणें पृथ्वी के बीच में, ये जो ओजोन की है परत, ये हमारी सेफ करती है, लेकिन इतनी ज्यादा वायु में प्रदूषण है, इतना ज्यादा वायु में ये गैसें बन गई हैं कि उनका अंदर तक, उस पृथ्वी तक आने में समय लगता था पहले बहुत ज्यादा, लेकिन अब समय बहुत लगता है कम, क्योंकि भयंकर बन रही है। जब वो पृथ्वी के पास आती हैं ओजोन की परतों को चीरते हुए, उस समय ये स्थिति बन जाती है कि ये गैसें कहाँ एब्जॉर्ब होंगी। पेड़ पौधों में एब्जॉर्ब होने की क्षमता तो बहुत कम है, जितनी गैसें हैं उससे बहुत गुने अधिक वो गैसें उत्पन्न होती हैं। तो वही गर्म गैसें जो पृथ्वी पर आनी चाहिए थी वो पृथ्वी से लौट जाती हैं, अर्थात पृथ्वी से परावर्तित होकर पुनः वायुमंडल में चली जाती है। वायुमंडल धीरे धीरे गर्म हो रहा है, गर्म गैसों का उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, शोषण बहुत कम हो रहा है, इसी के कारण ये ग्लोबल वार्मिंग शुरू हुई है।
2: डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है।
4: अब हम इसका कारण जानना

0: गणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां

0: को अगर हम बिंदुवार से देखें तो उसमें कुछ बिंदुवार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहला जो बिजली के संयंत्र हैं जिससे बिजली उत्पन्न होती है, अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो करीब करीब 8,500 या उसके लगभग कम ज्यादा थोड़ा हो सकता है, इतने बिजली के संयंत्र हैं जो कोयले से बिजली को बनाते हैं। जब वो कोयला जलता है तो जब प्रज्वलन से वो ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं, और वो ग्रीन हाउस गैसेस का या ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा एकल स्रोत बना हुआ है, तो वो जो बिजली के संयंत्र भी या बिजली बनाना उत्पन्न करना नहीं सर, कृषि भी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसमें कृषि या कृषि से संबंधित जो कार्य है वो भी ग्लोबल वार्मिंग के कारक है। जो पशुधन भी ग्रीन हाउस इफेक्ट या मीथेन और ऐसी गैसेस उत्सर्जित करता है। जब हम चावल की खेती करते हैं तो चावल भी मीथेन गैस को पैदा करता है। आप विश्वास करिएगा 8 बिलियन जो हमारी जनसंख्या है विश्व की, उसका पेट भरने के लिए कृषि करनी है, लेकिन कृषि भी ग्लोबल वार्मिंग में अपना योगदान दे रही है। तीसरा बिंदु अगर मैं लेना चाहूं तो वो परिवहन और परिवहन के साधन वाहन है। ये जो वाहन है ये भी एक बहुत बड़ा स्रोत है ग्रीन हाउस इफेक्ट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। अनुमान के अनुसार 2050 तक 43 मीट्रिक गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होगा। आप विश्वास करिएगा कि शायद ये वायुमंडल सांस लेने के लिए भी एक सुरक्षित वायु हमारे को नहीं मिलेगी। और फेनोमेना है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कारक है उसका, इसको हम बोलते हैं लैंडफिल। लैंडफिल एक्चुअली पर्यावरण में जो मानव स्वास्थ्य से संबंधित गहरे खतरे पेश करती है। मीथेन हमारा बहुत पुराना दोस्त भी है, लेकिन किसी भी चीज की अधिकता वो दुश्मन बन जाती है। जब जैविक जो कचरा है, खाद्य अपशिष्ट है, ये जमीन में जाके बैठ जाते हैं तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो से वो हार्मफुल गैसेस उत्सर्जित होती हैं, तो वो भी एक कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। अगला जो मैं बिंदु रखूं तो उसमें समुद्री तट पे जो ड्रिलिंग करते हैं वो ड्रिलिंग हम शायद पेट्रोलियम तेल या उन जैसे पदार्थ की खोज के लिए कर रहे हैं, जहां से पेट्रोलियम कंपनियां कुएं खोदती हैं और पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस को निकालती हैं, तो वो जो ड्रिलिंग करते हैं तो उस ड्रिलिंग करते समय भी बहुत ज्यादा जो पृथ्वी के नीचे जो मीथेन गैस है उसका रिसाव हो जाता है। वो भी एक स्रोत है, वो भी एक कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और जैसा कि आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि वनों की कटाई, तो ये भी वनों के महत्व को तो हम कम करके आंक ही नहीं सकते। अगर वन नहीं है, पौधे पेड़ नहीं है, तो कितने घर, इंसान, जातियां, जानवरों की प्रजातियां, पौधों की प्रजातियां होंगी नहीं। तो उन वनों से तो दवा, खाना, फल फूल सब मिल रहा है, लेकिन जब हम इन वनों को काटते रहते हैं तो फिर उसे एक जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, इससे वनों की कटाई से भी एक ग्लोबल वार्मिंग एक उसका इफेक्ट है। फार्माफ्रॉस्ट होता है जो मिट्टी है, ये उस क्षेत्र में जहाँ पे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे रहता है, माइनस में रहता है, बर्फ जमी रहती है, तो बर्फ के नीचे भी तो मिट्टी है, तो वो जो मिट्टी है जो जमीन के नीचे जो जीरो लेवल या हिमांक स्तर से नीचे जमी हुई है, जमीन जो शायद पोलर एरिया में ज्यादा हो, साउथ पोल या नॉर्थ पोल के क्षेत्र में ज्यादा हो, तो उस क्षेत्र में जो मिट्टी होती है तो वहां से भी अगर कुछ रिलीज होता है तो बहुत सारा वो मिट्टी जब कहीं को मौका मिलता है, एवलांसेस आते हैं, समुद्र ये तूफान आते हैं जो बर्फीले तूफान होते हैं, तो वहां से भी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड या ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। और अंत में मैं कहूंगा हमारा जो उपभोक्तावाद है, जो हमारा रहन सहन का स्तर है, या हमारे जो रहन सहन की जो हमने आजकल स्थिति या प्रणाली अपना ली है, वो भी बहुत बड़ा कारण है। आप विश्वास करिएगा कि घरेलू सेवाओं और वस्तुओं को उत्पादन करने में और उसको इस्तेमाल करने में ही शायद पूरे ग्रीन हाउस गैसेस का 60% तो शायद वहीं से जनरेट हो रहा है। चीन समय में इसका इम्पैक्ट या प्रभाव इसलिए नहीं था कि शायद हमारे पूर्वज ये भौतिकवादी नहीं थे। आज इस भौतिकतावादी समाज में उपभोक्ता हम लोग, कंपनियां बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं और उपभोक्तावाद है जी। वो भी ग्लोबल वार्मिंग का एक मुख्य कारण है। तो ऐसे ही ये सारे मेरे हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण थे, जरूर इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा।
1: बिल्कुल सर, हमने जानकारी ली ग्लोबल वार्मिंग क्या है और उसके कारण क्या हैं। अब विक्रांत जी से हम जानना चाहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के हमने जाना क्या है, उसके कारण क्या हैं, और

0: अब हम उनसे जानना चाहेंगे कि हम इसका निदान किस तरह से कर सकते हैं।
1: देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने आप को पृथ्वी का मालिक मानना छोड़ना पड़ेगा।
0: जी, बहुत अच्छी बात।
1: पृथ्वी का मालिक बन के बैठ गया है और जो पृथ्वी का विकास क्रम है उसमें जो जीव पहले आए हम उनके सबसे बाद में आए हैं।
0: जी।
1: परिवार में भी जो सबसे बाद में आता है वो सबसे छोटा होता है, उसका अधिकार सबसे कम होता है।
2: बिल्कुल।
1: लेकिन हम लोग मालिक बन बैठे, फिर इस पृथ्वी के विकास क्रम में एक चीज विचार करनी पड़ेगी कि हर अगली स्पीशीज जो आई उसका बौद्धिक विकास ज्यादा था और ये पृथ्वी का विकास अभी रुका नहीं है। क्या गारंटी है कि हमारे बाद कोई स्पीशी नहीं आएगी? इस पे हमें पूरी तरह से विचार करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: ग्लोबल वार्मिंग की इससे ये समझिए, पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री के लगभग रहना चाहिए लेकिन आज ये लगभग 16.5 के करीब हो चुका है। तो ऐसे समझ लिए जैसे इंसान को बुखार होता है, 37.5 डिग्री से जब उसका टेम्परेचर ऊपर जाता है तो बुखार होता है। पृथ्वी को बुखार आ रहा है और जब इंसान को बुखार आता है तो जाहिर है अंदर कोई इन्फेक्शन है, इसलिए बुखार आ रहा है। उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए वो शरीर और गर्म करता है, पृथ्वी भी और गर्म करेगी। जब हम इस तरह का
0: बिल्कुल
1: रहन सहन अपनाएंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे, पृथ्वी के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमें बहुत गंभीर होना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग में का जो मेन जो मुख्य गैसेज हैं 75% तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, इसके अलावा मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है, बाकी क्लोरो फ्लोरोकार्बन वगैरह अन्य गैसेज भी हैं लेकिन मेन तो यही है। और इनका यह होता है कि जितना रेडिएशन आता है अल्ट्रावायलेट उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। हमें सबसे पहले देखना है कि ये कहाँ से कार्बन जो है किस तरह से निकल रहा है, तो उस पर हमें ध्यान करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कार्बन एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग अधिकतर पेड़ लगाते हैं। हम ये सोचते हैं कि पेड़ लगा दो और समस्या का हल हो गया
0: जी।
1: तो एक आपको डाटा बताऊं कि एक स्वस्थ पेड़ जो लगभग 22 किलो कार्बन एब्जॉर्ब करता है एक वर्ष में, और एक इंसान लगभग 4700 किलो कार्बन एमिट करता है। तो आप ये समझ लीजिए पेड़ लगाना तो हल नहीं है, लेकिन पेड़ लगाना भी होगा क्योंकि ग्रीन कवर पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी है। जितना ग्रीन कवर होगा, इसमें थोड़ा सा हमें थोड़ा ही आजकल संशोधन करना पड़ेगा। लोग घास के मैदान देखते हैं, वहां पे भी कहते हैं यहाँ भी पेड़ लगा दो, ये थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा। घास जब कार्बन लेती है तो वो कार्बन सारा मिट्टी में दे देती है, लेकिन पेड़ जब कार्बन लेता है तो उसे तना बनाता है, और जब हम उस पेड़ को काटते हैं गिर जाता है, सूख जाता है, जलाते हैं, कार्बन वापस आ जाता है। तो प्रकृति ने कहीं घास के मैदान दिए हैं, कहीं जंगल दिए हैं, कहीं झाड़ियां दी हैं, जहां पे आप प्रकृति को ऐसे ही छोड़ सकते हैं कि वो अपना ताना बाना बुन ले तो वहां ऐसे ही छोड़ दें। जहां पे आपने देखा घास के मैदान है वहां घास के मैदान रहने दें, और जहां कहीं भी आप खाली जगह देखते हैं, जहां कहीं भी देखें, गली में देखें, सड़क के किनारे पे देखें, कहीं पार्क में देखें, किसी संस्थान में देखें, स्कूल में देखें, वहां आपको पेड़ लगाने ही होंगे। क्योंकि पेड़ लगाएंगे तो बारिश आएगी और बारिश होगी तो पेड़ होंगे, ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो सबसे पहले तो पेड़ पे तो हमें ध्यान देना होगा, लेकिन पेड़ पूरी तरह से निदान नहीं है। पेड़ लगाना होगा लेकिन वो पूरी तरह से निदान नहीं है। दूसरा, जैसे भाई साहब ने बताया अभी डॉक्टर साहब ने कि हम उपभोक्तावाद में बहुत जा चुके हैं, हमारी संस्कृति कभी उपभोक्तावादी नहीं रही। हालांकि हमारे यहाँ 9 दर्शन हुए, उनमें से एक चार्वाक दर्शन भी था, वो उपभोक्तावादी भी था
0: जी।
1: लेकिन फिर भी जो बाकी 8 दर्शन तो उपभोक्तावादी नहीं थे, हमें उस पर जाना पड़ेगा। तेन त्यक्तेन भुंजिता, जिस तरह से हम जीते आए हैं
0: जी।
1: हमें त्यागपूर्वक भोग करना ही होगा, और अगर हम ये आज से ही प्रारंभ नहीं करते हैं तो फिर बहुत स्थिति खराब होने वाली है। क्योंकि एक तरह से पर्यावरण के संबंध में लिटरेसी है तो लोगों को पता नहीं वो कर क्या रहे हैं। इस समय भारत का कोई शहर ही बचा है, अभी मैं बल्कि मेरा बेटा ही बता रहा था कुछ दिन पूर्व, सिक्किम में एक शहर बता रहा था कि वहां का AQI 33 है, बाकी सब का AQI 100 से ऊपर है। और आप एक सिगरेट पीते हैं तो 50 AQI शरीर में लेते हैं, और 133 में आप लगभग 5 सिगरेट डेली आप सांस ले रहे हैं, आपको फेफड़े का कैंसर होने वाला है। तो इस पे हमें बहुत तरह से ध्यान देना पड़ेगा, उपभोक्तावाद से तो हमें बचना ही होगा। अभी डॉक्टर साहब ने कहा ऊर्जा के संबंध में, जो हम बिजली खर्च करते हैं, हम बिल्कुल आदी हो चुके बिजली के, हमें हर समय फैन चाहिए, एसी चाहिए। मैंने इस तरह के एक तरह से एसी के मरीज बच्चे देखे हैं
0: जी,
1: एसी के बिना रह नहीं सकते,
0: नहीं रह सकते।
1: रेफ्रिजरेटर 24 घंटे चलता है सबके यहाँ, मेरे यहाँ मुश्किल से 3 घंटे चलता है, और उसमें भी सब्जी सुरक्षित रहती है, उसमें भी खान पान सुरक्षित रहता है। तो हमें इस बात पे जाना होगा अपना। तीसरा हमें देखना होगा ग्रीन एनर्जी के बारे में। ग्रीन एनर्जी जैसे कि ये विंड एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, लेकिन ग्रीन एनर्जी पे जाने का मतलब ये नहीं है कि हम ऊर्जा ज्यादा खर्च करें। इसका एक उदाहरण आपको बताऊं, बीकानेर में अडानी का एक पावर हाउस बना है सोलर का, उसमें डेली उसको जो प्लेट्स होती है उनको धोने में 1 करोड़ लीटर पानी खर्च हो जाता है। तो हमें संयमित तो होना ही पड़ेगा, और संयमित हुए बिना काम चलने वाला नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: इसके अलावा हमें अपने खान पान पे ध्यान देना होगा। जो मीथेन का एमिशन का मुख्य कारण है वो मीट इंडस्ट्री डेयरी प्रोडक्ट है। मीट इंडस्ट्री से मतलब यह है कि आजकल जो है कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। पहले पशु 2 या 3 साल में गर्भाधान होता था उनका नेचुरल तरीके से, और उस तरह से जो बच्चे पैदा होते थे। तो अब जो मीथेन का मुख्य कारण है वो पशुओं का जुगाली करना है, क्योंकि हमें मीट चाहिए तो अत्यधिक हम उत्पादन कर रहे हैं पशुओं का
0: जी,
1: और हर वर्ष गर्भाधान हो रहा है तो पशु पैदा किए जा रहे हैं। एक आंकड़ा है, जिस तरीके से पशु डेली मारे जाते हैं अगर इस तरीके से इंसानों को मारा जाए तो 19 दिन में सारे इंसान खत्म हो जाएंगे।
0: अच्छा,
1: पृथ्वी से सारे इंसान खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह पशुओं को मारा जा रहा है, और मार तब पा रहे हैं जब आप उनको पैदा कर रहे हैं
0: जी।
1: और वह पशु जब जुगाली करते हैं तो उनसे मीथेन उत्सर्जित होती है, वह जब गोबर करते हैं वो डिकम्पोज होता है उससे मीथेन निकलती है। मीथेन कार्बन से 25 गुना ज्यादा घातक, उससे ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है। तो इस पर हमें ध्यान देना होगा, हमें संयमित होना होगा।
0: बिल्कुल।
1: भोजन आज लगभग 50% से ऊपर लोग नॉनवेज, और नॉनवेज ना खा के हम अगर वेज पे जा सकते हैं, क्योंकि इस समय पृथ्वी पे जितने एरिया में कृषि हो रही है उसका 75% मीट इंडस्ट्री के लिए हो रहा है, डेयरी प्रोडक्ट के लिए हो रहा है। तो अगर उसको हम संयमित कर देंगे तो हमारे लिए अभी बहुत जमीन ऐसी बचेगी जहां हम जंगल खड़े कर सकते हैं। और इस समय जितने एरिया में कृषि हो रही है उसका 33% में ही कृषि करके हम सबका पेट भर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे खान पान में अंतर है तो हमें खान पान पर अपना ध्यान देना ही होगा। इसके अलावा पेड़ काटना, आज जहां भी विकास कार्य हो रहा है, कहीं भी कुछ भी बिल्डिंग बननी है पेड़ काट दो, सड़क बन रही है पेड़ काट दो, हाईवे बन रहे हैं पेड़ काट दो, हर बात पे पेड़ कटता है। यहाँ तक कि उदाहरण है, एक रेलवे स्टेशन में बाहर इतना बड़ा पिलखन का पेड़ कटा था, मतलब वो किसी भी तरह से नक्शे में नहीं आ रहा था लेकिन पेड़ काट दिया गया। तो पेड़ कटता है, ग्रीन कवर कम होता है। आप एक स्वस्थ पेड़ काट रहे हैं उसकी जगह अगर आप 1,000 पेड़ भी लगा देंगे तो वो बच्चा है, जैसे कि मैंने आंकड़ा बताया कि एक स्वस्थ पेड़ मात्र 22 किलो कार्बन ले रहा है, तो छोटा बच्चा क्या लेगा। हालांकि पेड़ बहुत लगाते हैं लेकिन इसके अलावा भी हम संयमित जीवन जीने को भी कहते हैं, उपभोक्तावाद से बाहर आने को कहते हैं। तो जब तक उपभोक्तावाद से हम बाहर नहीं आएंगे ग्लोबल वार्मिंग का असर हम कम नहीं कर पाएंगे, कार्बन एमिशन हम कम नहीं कर पाएंगे। नाइट्रस ऑक्साइड जो कि खेती से ज्यादा होती है, खेती में हम नाइट्रोजन वगैरह का प्रयोग करते हैं और तो उसको भी हम कम नहीं कर पाएंगे।
0: अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए हम कम से कम कुछ नहीं तो एक स्वच्छ ताजी हवा तो देकर जाएं। इसके लिए बहुत सारे पेड़ लगाना तो जरूरी है ही, उसके साथ इन छोटे छोटे टिप्स का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई, आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होंगी। और आप सब हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, हमने परिचर्चा सुनी, विषय था ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। जानकारी दे रहे थे श्री के गुप्ता जी, एसके तिवारी जी और विक्रांत शर्मा जी, सभी ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आशा करती हूँ आप इसका अवश्य ही लाभ उठाएंगे। श्रोताओं, अब समय हमें अनुमति नहीं दे रहा कि हम आपसे और जानकारी साझा करें। आप हमें अगले कार्यक्रम तक के लिए अनुमति दें और हमें बताएं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा। हमारा पता है, कार्यक्रम परिवार जगत द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 2467। और इसी के साथ अपनी साथी ज्योति को कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिवार जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर का 1:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकधारा। श्रोताओं, लोकधारा कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं दयाशंकर फुलारा की आवाज़ में कुमाऊनी लोकगीत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस लोकगीत के साथ।

0: दयाशंकर फुलारा की आवाज़ में आज आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीत कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत।
1: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को
2: शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
1: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु
2: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा
1: साप्ताहिक आयोजित कार्यक्रम

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: लोकधारा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं दया शंकर फुलारा की आवाज में कुमाऊनी लोकगीत।

0: favorable for further advance of southwest monsoon into more parts of Maharashtra, some parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, West Bengal, Odisha, Jharkhand, Bihar and South Chhattisgarh during the next 4 to 5 days. India's wholesale price index
1: होगा प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त

0: दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बटाई एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
3: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
1: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
4: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
1: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30

0: ये फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
1: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। रजत का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा अरिसा पिठा मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक रजपान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। श्रोताओं, नई फिल्मों से इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं नई फिल्मों के ही कुछ गीत, और ऐसे गीत जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स कहलाते हैं। आइए ऐसे ही एक प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम का आगाज करते हैं। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत से सजाया है शाश्वत सचदेव और नुसरत फतेह अली खान ने। आवाज है खान साहब और शाश्वत सचदेव की ही। सुनते रहिए कार्यक्रम। फिलहाल हम आपको सुना रहे हैं धुरंधर द रेवेंज फिल्म का ये गीत।

0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम में अभी और भी हम आपको गीत सुनाएंगे नई फिल्मों के, लेकिन यहां जरा रुकते हैं कुछ जरूरी संदेशों के लिए।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं बॉर्डर 2 फिल्म का ये गीत, विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की आवाज में। संगीत दिया है विशाल मिश्रा ने ही और गीत के बोल लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने।

0: बॉर्डर टू फिल्म का गीत अभी आपने सुना विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की आवाज में। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से नई फिल्मों से।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं सैयारा फिल्म का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत लिखा है तनिष्क बागची ने और इस गीत के लिए संगीत दिया है मिथुन ने।

वॉर टू फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, और आइए अब इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं ओ रोमियो फिल्म का भी ये गीत, अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है विशाल भारद्वाज ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम नई फिल्मों से अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3 बजे हैं। अब हमारी ये प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत में। श्रोताओं, आज के इस दौर में हर युवा की आंखों में एक ही सबसे बड़ा सपना होता है, एक बेहतरीन करियर और एक सुरक्षित नौकरी। लेकिन अक्सर सही जानकारी न होने की वजह से हमारे देश की प्रतिभाएं भटक जाती हैं। लेकिन श्रोताओं, अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने देश के करोड़ों युवाओं के सपनों को सच करने के लिए एक ऐसा डिजिटल पुल तैयार किया है जो सीधे रोजगार के अवसरों तक जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं NCS नेशनल करियर सर्विस यानी राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये योजना है क्या। राष्ट्रीय करियर सेवा भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 20 जुलाई 2015 को की गई थी। सरकार ने एक केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जिसकी वेबसाइट है www.ncs.gov.in। ये पोर्टल देश के युवाओं के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन यानी एक ऐसी खिड़की है जहां करियर से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल जाता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा श्रोताओं कि इस पोर्टल पर ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी जॉब वेबसाइट से अलग बनाता है। तो चलिए मैं आपको इसकी 4 सबसे बड़ी खूबियां बताती हूँ। पहली खूबी ये है श्रोताओं कि सब कुछ पूरी तरह मुफ्त है। इस पोर्टल पर पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन 100% मुफ्त है। दूसरी खूबी है सरकारी और निजी नौकरियां एक साथ। यहां देश की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों की वैकेंसी तो दिखती ही है, साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निकाली जाने वाली सभी सरकारी नौकरियों की जानकारी भी एक ही जगह मिल जाती है। तीसरी खूबी है मुफ्त करियर काउंसलिंग। देश के बेहतरीन करियर काउंसलर्स यहाँ युवाओं को मुफ्त सलाह देते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। और चौथी खूबी है घर बैठे फ्री स्किल ट्रेनिंग। सबसे कमाल की बात यह है कि सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट और TCS IUN जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है। इसके जरिए युवा घर बैठे कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग और बातचीत की कला की मुफ्त ट्रेनिंग ले सकते हैं और सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं। श्रोताओं, ये योजना सिर्फ कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन तक सीमित नहीं है। जो युवा ग्रामीण इलाकों में रहते हैं या जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, सरकार ने उनके लिए देश भर में मॉडल करियर सेंटर्स खोले हैं। इन केंद्रों पर जाकर युवा अधिकारियों से आमने सामने बैठकर करियर गाइडेंस ले सकते हैं। सरकार ने आपकी मदद के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जो है 1514। इस पर आप मंगलवार से रविवार सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच फोन करके अपनी भाषा में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, अगर आपके पास कोई हुनर है या आप हुनर सीख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं तो आज ही इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए और लॉगिन कीजिए www.ncs.gov.in पर।

श्रोताओं, अब बात करते हैं PMEGP योजना के बारे में, जो कि भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही एक बहुत ही शानदार क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की जिम्मेदारी खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पास है। इसका सीधा और साफ उद्देश्य है देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में नए नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना और बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर देना। ये योजना कहती है कि अब नौकरी मांगना बंद करो और नौकरी देने वाले बनो। अब बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे की, यानी इस योजना के तहत आपको कितना पैसा मिल सकता है और सरकार कितनी मदद करती है। ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं, इस योजना को दो मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण क्षेत्र। अगर आप कोई फैक्ट्री, आटा मिल, कपड़ा उद्योग या अगरबत्ती बनाने जैसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो सरकार आपको 50 लाख रुपए तक का लोन दिला सकती है। दूसरा क्षेत्र है सर्विस यानी सेवा क्षेत्र। अगर आप कोई कंप्यूटर सेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, ब्यूटी पार्लर या कोई लॉजिस्टिक्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। लेकिन इस योजना की सबसे बड़ी और जादुई बात जानते हैं क्या है? वो है इस पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी। अगर आप ग्रामीण इलाके में बिजनेस शुरू करते हैं और आप महिला, SC, ST, OBC या अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, तो सरकार आपको कुल प्रोजेक्ट लागत पर 35% तक की भारी सब्सिडी देती है। यानी 10 लाख के लोन में 3.5 लाख रुपए सरकार खुद चुकाएगी। वहीं अगर आप शहरी इलाके के सामान्य वर्ग से हैं, तो भी आपको 15% से 25% तक की सब्सिडी का सीधा लाभ मिलता है। आवेदन के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस लोन को चुकाने के लिए सरकार आपको 3 से 7 साल तक का लंबा समय देती है। आपको किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप सीधे घर बैठे इंटरनेट पर PMEGP ई पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और जाति प्रमाण पत्र अपलोड कीजिए और आपका आवेदन सीधे बैंक के पास पहुंच जाएगा। याद रखिए, जब आप अपना एक छोटा उद्योग लगाते हैं तो आप न सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं बल्कि अपने साथ 4 और लोगों को रोजगार देकर इस देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाते हैं। यही तो है असली आत्मनिर्भर भारत का सपना। तो कदम बढ़ाइए, खुद का बिजनेस शुरू कीजिए और देश की तरक्की में अपना योगदान दीजिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। श्रोताओं, आज रात्रि 9:30 पर दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

सुगम संगीत में शाम 7:32 पर हम आपको सुनवाएंगे पुनीत मेहरा के गाए भजन। शाम 6:45 पर विविधा में आज आप सुनेंगे शौकीन अहमद की वार्ता। विषय रहेगा प्रदूषण नियंत्रण में आम जन की भूमिका।

कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर किसान भाई सुनेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर मोहम्मद अवैस से नरेश पाल की बातचीत। विषय रहेगा एआई और कृषि।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत और रात्रि 10:30 पर पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम रहेगा आपकी फरमाइश। श्रोताओं ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे श्रोताओं प्रातः 6:05 पर। श्री रामचरित मानस गान का समय रहेगा प्रातः 6:30 पर। 7:31 पर सुनेंगे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी दी जाएगी अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस के बारे में और चर्चा का विषय रहेगा इस बरसात में जल संरक्षण के लिए क्या आप तैयार हैं।

आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए दिन में 12:05 पर, बहनें सुनेंगी कार्यक्रम महिला जगत दिन में 1:15 पर।

लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में श्रोताओं हम आपको सुनवाएंगे कल दिन में 1:45 पर भरत सिंह नेगी के गाए गढ़वाली लोकगीत। युवा श्रोता सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर। क्रम रहेगा बूझो तो जाने, कुछ खास है आज दिल से दिल तक और कहानी के उस पार। कृषि जगत कार्यक्रम में कल शाम 6:05 पर हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर सुमन देवी से प्रमोद सिंह की बातचीत। विषय रहेगा बासमती धान की नर्सरी में समेकित कीट प्रबंधन।

कल रात्रि 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम शेरी नशिस्त। प्रतिभागी कलाकार होंगे श्री यूनुस, श्री फारूक खान, श्री इशरतुल्लाह खान उर्फ सनावर किरतपुरी। संचालन करता होंगे श्री गुलाम अब्बास उर्फ गुलशन बिजनौरी। और श्रोताओं, कल रात्रि 10 बजे राज्य स्तरीय प्रसारण लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कार्यक्रम खेल दर्पण में प्रस्तुति रहेगी आकाशवाणी लखनऊ की। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सुन रहे होंगे आपके और हमारे फेवरेट प्रोग्राम युववाणी को। दोस्तों, आज हाजिर हूँ मैं आपके अपने साथी सिमरन।
1: नमस्कार, मैं हूँ यूसुफ अजहरी।
0: दोस्तों, आज है 15 जून और आज हम पूरे 45 मिनट पवन ऊर्जा को सेलिब्रेट करेंगे और इस नेक काम में आप हमारी हेल्प करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी ग्लोबल विंड डे।
1: हमारे सेगमेंट गपशप अड्डा के जरिए नंबर होगा 9457078288। आप हमें कॉल कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपनी पसंद का गीत सुन पाए
0: और हमारे सवालों के जवाब भी दे पाए। मिसाल के तौर पर हम पूछ ली कि क्या है पवन ऊर्जा,
1: तो आप कहें कि आपकी हल्की सी मध्यम आवाज में कि कुदरत की हवा चलती है, फिर उससे पंखा चलता है और फिर वहां से बिजली बनती है। In other words, wind energy means electricity generated from wind.
0: अच्छा, अब इसका यूज क्या है? घर, स्कूल, फैक्ट्री, ऑफिस में बिजली सप्लाई करना, मतलब वो सारे काम जिनमें लाइट यूज होती है उन सब में पवन ऊर्जा हेल्प करती है।
1: और एक और मजे की बात बताऊं आपको, जब ये लाइट बनती है उस दौरान कोई ग्रीन हाउस गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, तो प्रदूषण की गुंजाइश कम होती है।
0: तो कुछ मींस मान लीजिए कुल मिलाकर जैसे सराहों में चले हौले से बांधे नसीम, यानी वाणी की किल्लत भी है और बिजली बनाना यूज करना थोड़ा तकलीफ देह हो, तो ऐसे में पवन ऊर्जा लाइक अ ठंडी हवा।
1: तो जी, यही है आज की खास बात। आज है विश्व पवन दिवस और इस दिन का मकसद है कि आप समझे इस बात को कि पवन ऊर्जा कितनी इम्पोर्टेंट है।
0: जैसे बूझो तो जाने का सवाल जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही हमारे जनरल नॉलेज को बढ़ाता है और फिल्मी ढंग से ये सेगमेंट और नॉलेज बना देता है।
1: पता ही नहीं लगता कि कब एक्टर और एक्ट्रेस की और साइंस की बातें करते करते बूझो तो जाने का सवाल आ जाता है।
0: अब आज का ही किस्सा देख लो, बातें हो रही थी पवन ऊर्जा की, विंड की, और ऐसे ही एनर्जी से भरपूर फिल्म पर एक सवाल आ गया
1: कि फिल्म चक दे इंडिया में कोच कबीर खान का किरदार किस अभिनेता ने निभाया था।
0: तो दोस्तों, आपको पता ही है आपको हमारे सवाल का जवाब देना है हमारे FB पेज पर और सर्च करना है आकाशवाणी नजीबाबाद, जाना है कमेंट सेक्शन में और लिख देना है इसका सही जवाब। और साथ ही आपको पता है कि आज आपका फेवरेट सेगमेंट गपशप अड्डा है, तो आप हमें कॉल करना ना भूलिएगा, हमें रहेगा आपकी कॉल का बेसब्री से इंतजार।
1: और इसी बात पर पेश है सेगमेंट कहानी के उस पार, तो हाजिर है आज की कहानी सिमरन की जुबानी।
0: कहानी के बाद हम फिर लौटेंगे अपने सेगमेंट गपशप अड्डा को लेकर, जिसमें आपकी फरमाइश और हम और साथ ही हमारी पवन ऊर्जा।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी साथी सिमरन आज आपके लिए लेकर हाजिर हूँ हमारे सेगमेंट कहानी के उस पार की एक प्रेरणादायक कहानी जो कि KS अब्बास द्वारा लिखित है। ये कहानी आत्मसम्मान और शिक्षा के महत्व को दर्शाती है। दोस्तों, एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में पत्नी और उसके 7 बच्चे थे। उसकी सबसे छोटी बेटी का नाम सुलेखा था। जब सुलेखा मात्र 10 महीने की थी तब उसे चेचक हो गया। कुछ समय बाद चेचक तो ठीक हो गया लेकिन उसके चेहरे पर गहरे दाग छोड़ गया। इसके बाद धीरे धीरे जैसे सुलेखा बड़ी हुई, एक दिन की बात है, वो अचानक चारपाई से गिर गई जिससे उसके दिमाग पर गहरी चोट लग गई और उसके कारण सुलेखा हकलाकर बोलने लगी। दोस्तों, इन सभी कारणों की वजह से गांव के लोग और उसके छोटे बहन भाई उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई उसे सुंदर नहीं मानता, ना कोई उससे प्यार करता, ना ही प्यार से बात करता। धीरे धीरे उसे सबने उसके असली नाम से भी बुलाना बंद कर दिया और भोली कहने लगे। भोली बहुत ही सीधी साधी और शर्मीली लड़की थी। वो लोगों की हंसी और तानों से डरती थी और अधिकतर चुप ही रहती थी। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा ये हम आपको बताएंगे हमारे अगले एपिसोड में जो कि आएगा कल। तो दोस्तों, भोली की चुप्पी के बाद उसका जीवन आगे कैसे व्यतीत होता है ये आप जानेंगे एपिसोड नंबर 2 में। तो आप हमारा एपिसोड सुनना ना भूलिए।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे एहसास कर लोटपोट,
1: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
5: डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: नमस्ते नमस्ते। और मुनमुन कैसे हो अब?
5: डॉक्टर साहब, ये खांसी पीछा ना छोड़ रही।
3: हाँ, ये तो तुम्हारी कंडीशन दिखा रही है। अच्छा, मैंने तुम्हें कल खांसी के लिए काढ़ा दिया था, तुमने लिया क्या? कुछ हुआ उससे फायदा?
5: अरे हाँ डॉक्टर साहब, काढ़ा तो मैंने पी लिया। पिया क्या, मैंने थोड़ा सा चखा था और फिर सोचा इससे अच्छा तो मेरी खांसी है।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
6: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
7: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
10: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
9: 12 साल

0: विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: तो चलिए यूसुफा, टाइम हो चुका है हमारे सेगमेंट गपशप अड्डा का।

0: हेलो 9457078288।
1: कौन बोल रहा है?
2: ये है गपशप अड्डा।
1: ये है गपशप अड्डा।
3: यूसुफा, हमारे पहले लिसनर्स की कॉल तो आ ही चुकी है। चलिए देख लेते हैं हमारे पहले लिसनर कौन है। हेलो।
4: हेलो,
3: नमस्कार जी।
4: नमस्ते, मैं नवनीत, मैं सतीश बात कर रहा हूँ।
3: जी जी सतीश जी, कैसे हैं आप?
4: मैं बढ़िया हूँ
3: जी। सतीश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
4: मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से, कानपुर के पास से मेरा जिला लगता है, फर्रुखाबाद जिला लगता है, वहाँ से बात कर रहा हूँ।
3: जी जी सतीश जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी जी धन्यवाद, क्योंकि अभी तो मौसम अपनी अपने करवट ले रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है। कुछ दिनों तक गर्मी से बहुत राहत मिली है मैम, और जैसे अभी तो कुछ दिन बाद धान की जैसे रुपाई होने वाली है, तो बारिश होगी तो गर्मी से राहत मिल जाएगी।
3: जी जी सतीश जी, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन अभी उतनी नहीं मिल पाई। तो सतीश जी
4: तो जैसे अभी तो थोड़ा बहुत मौसम चेंज होगा, फिर जुकाम वगैरह है तो उनका ख्याल रखना चाहिए।
3: जी
4: तो
3: जी,
4: खान पीन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खान पीन में जैसे अभी तो मौसमी फल तो खत्म हो गए हैं, जैसे टमाटर पे तरबूज है, खरबूजा है, क्या ककड़ी, ये तो खत्म हो गए, तो जामुन चल रहे हैं और करके ये मैंगो चल रहे हैं, तो इसका सेवन करना चाहिए।
3: जी बिल्कुल। तो सतीश जी
4: ज्यादा पानी पीना चाहिए, और आकाशवाणी नंबर पर कर चुकी है, तो आकाशवाणी के नंबर पर कामना देना चाहता हूँ।
3: जी जी
5: जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो इसी बधाई पर आप बताइए कि आपकी फरमाइश आज क्या है।
4: कौन से मैडम बोल रही हूँ?
5: हम यूसुफ अजैदी बात कर रहे हैं, आप प्रोग्राम नहीं सुने सतीश जी?
4: मैं सुन रहे हैं, मैं तो देखो मैं कहाँ सुन पा रहे, मैं तो फोन से बात कर रहे हैं, और एक बड़े वाले फोन से बात कर रहे हैं, बड़े वाले सुन रहे हैं।
3: जी जी सतीश जी, मैं सिमरन और मेरी साथी यूसुफ अजैदी, हम दोनों ही आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आज आप हमें बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे।
4: सिमरन को नमस्कार, युवा बहुत दूसरी मैडम बोल रही
3: है। जी जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप।
4: मौसम कैसा है मैम?
3: जी सर, यहाँ पर तो अभी बारिश भी हो जाती है कभी कभी, और धूप भी बहुत ज्यादा है, तो मिक्सअप चल रहा है।
4: क्योंकि अभी तो बारिश के मौसम में कुछ दिन बाद बच्चे नहाएंगे और गर्मी के मजे लेंगे बारिश के मौसम में।
5: जी सतीश जी, इसीलिए तो अपना भी ख्याल रखना है और सभी का, और इसी खुशी के मौके पर आपको कोई गीत सुना है तो आप बता दीजिए।
4: हाँ, खुशी के मौके पर गीत सुनवा दीजिए। मौसम का मौसम ऐसा है कि मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम ढूंढता है।
5: जी जी,
4: तो माध्यम से तो कुछ दोस्तों को नाम लेना चाहता
5: हूँ। जी जी बताइए।
4: पहले आपके लिए सिमरन के लिए गान डेडिकेट करना चाहता हूँ।
3: जी जी धन्यवाद सतीश जी।
4: और उनको नाम भूल गए, उनका नाम क्या है?
3: यूसुफ आजादी।
4: हाँ, यूसुफ आजादी, तो उनको गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ। और राकेश चंद्रा है, और भट्टाचार्य जी हैं, तो जितने तमाम सुनने वाले हैं सबको गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ। गाना मेरा प्ले कर दीजिए।
3: जी सतीश जी, तो आपके सभी दोस्तों का हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है, और उनको डेडिकेटेड ये गाना हम आपको सुनवाएंगे।
4: आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, सबसे पड़ा है, बहुत प्रोग्राम बढ़िया लगता है।
3: जी जी धन्यवाद सतीश जी। जी चलिए हम सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार मैम जी।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं मैम। मैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीबीपुर से मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी मकसूद जी, तो आज आपकी कॉल लगी, आपको कैसा लगा?
1: मैम बहुत काफी दिनों के जो है बाद में इसे युवाड़ी प्रोग्राम में मैं शामिल हो चुका हूँ मैम। और इसका जो है मैम थोड़ा सा मतलब सुझाव ये है
0: जी
1: कि इसमें जो है कॉल ज्यादा शामिल कर लिया करो, क्योंकि लोग अपना जो है श्रोता लोग जो है अपना काम धाम छोड़ के प्रोग्राम सुनते हैं तो दो कॉल या तीन कॉल ली जाती है। ये प्रोग्राम खासतौर से श्रोताओं पर ही आधारित होना चाहिए मैम।
0: जी जी ये श्रोताओं
1: जब
0: पर ही आधारित है और हमारी कोशिश यही होती है, क्योंकि हमें भी बहुत खुशी होती है जब हमारी आप सबसे बात होती है।
1: हाँ मैम, तो ज्यादा से ज्यादा सौदा इसमें शामिल कर लिया करो। ये कहानी वगैरह ये लंबे है कि ये लतीफे वगैरह शामिल मत किया करो मैम इसमें, क्योंकि 6 दिन ये बाली आता उसमें कुछ भी कर लिया करो आप, लेकिन इसमें श्रोताओं पर ही रहने दे करो केवल
0: जी आपकी
1: प्रोग्राम।
0: इस क्या कहते हैं रिक्वेस्ट को हम अपने पास रखेंगे, लेकिन आप
1: हाँ
0: हमारी एक रिक्वेस्ट पूरी कीजिए कि आप अब जल्दी से बता दीजिए कि आपको कौन सा गीत सुनना है।
1: हाँ मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं काम धाम छोड़ कर आदमी बैठता तो हक्का बक्का मतलब सतर्कता भटकता रह जाता मैम, कॉल नहीं शामिल होती और प्रोग्राम दे देते हो इसमें बीच बीच में
0: जी,
1: तो मैम। हाँ
0: वो है ना
1: मैम
0: एक
1: गीत है
0: लाइन कि किसी को मिल गई मंजिल, कोई जिंदगी भर यूं ही
1: हाँ
0: चलता रहा, तो बस वही है।
1: मैम गीत है मेरा बाल ब्रह्मचारी फिल्म में है, अलका याग्निक की आवाज में बहुत ही प्यारा गीत है। नजरे लड़ गईया मैं लुट गई मैं सैया, कुछ इसी प्रकार के बोले मैम। और साथ में सुनने वाले डॉक्टर असर हुसैन, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, राजा हुसैन, गफ्फार हाजी जी, मुकेश भाई।

0: मोहम्मद बख्तार और निजामुद्दीन भाई, रऊफ भाई और ये आसिफ अली चौधरी और ये हैं साहब राशिद अली अंसारी मांगीला चंदेल मध्य प्रदेश से मैम, और साथ में आप भी हो।
1: ठीक है ठीक है, तो आपकी फरमाइश पर और आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनाते हैं।
0: और मैम हमारी तरफ आंधी शुरू हो गई है, तूफान शुरू हो गया है मैम मुरादाबाद में,
1: तो आप बिल्कुल सतर्क रहिए और छत पर ना जाइए और अपने आसपास भी ध्यान दीजिए, छोटे बच्चे जो हैं उन्हें घर में इकट्ठा करके रखिए ताकि बाहर ना जाए।
0: छत पर ही है मैम, बड़ा मस्ती आ रही है छत के ऊपर में, सब बच्चे खेल रहे हैं, बाउंड्री है चारों तरफ से, कोई दिक्कत ना।
1: फिर भी ध्यान रखिए क्योंकि हवा से कोई भी चीज कहीं भी उड़कर चली जाती है, इसलिए तो
0: हाँ धूल मिट्टी आती है मैम। थैंक यू, ओके धन्यवाद मैम।
1: ठीक है ठीक है।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार सर
1: नमस्कार दीदी। नमस्कार
0: जी, आपका
1: दीदी। मैं ग्राम बिडोरा तहसील सेवड़ा जिला दक्षिण मध्य प्रदेश से लोकन गुर्जर बोल रहा हूँ।
0: जी, एक बार आपका शुभ नाम आप दोबारा बताएंगे?
1: दीदी मैं ग्राम बिडोरा तहसील सेवड़ा जिला दतिया से लोकेन्द्र सिंह गुर्जर बोल रहा हूँ।
0: जी, लोकेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: जी बिल्कुल बढ़िया है दीदी, और आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम को इतना प्यार देते हैं, इतने ध्यान से सुनते हैं। स्वास्थ्य कैसा है आपका
1: बिल्कुल दीदी बढ़िया है, स्वास्थ्य और अच्छे हैं।
0: जी? और मौसम कैसा हो रहा है?
1: मौसम दीदी क्या है कि आंधी वगैरह आ जाती है जब तक, लेकिन अब तो क्या है कि बारिश का मौसम मानसून आने वाला है मध्य प्रदेश में, तो
0: जी,
1: बहुत जल्द से जल्द 20-25 तारीख नौ मानसून आ जाएगा, तो बारिश भी होने लगेगी। और अभी भी बीच में बारिश 1-2 दिन हो गई है, उसके बाद फिर आंधी आंधी वगैरह आ रही है, आंधी भी आती है।
0: लोकेंद्र जी, आज आपका कॉल हमारे स्टूडियो में लग चुका है, तो आपको कैसा लग रहा है?
1: बिल्कुल दीदी मुझे बहुत खुशी हो रही है, और हेलो नजीबाबाद पे लग जाता है जब जब कभी 2-4 महीने में, तो मुझे बहुत खुशी होती है। नजीबाबाद से तो मुझे बहुत प्रेम है दीदी, क्योंकि और बहुत से घोषक जी ऐसे हैं कि उनसे मेरी बातचीत भी होती रहती है, जैसे राजवीर सर जी हैं
0: जी,
1: और ज्योति जी हैं, तो जी माने सभी उद्घोषक ऐसे हैं कि मेरी बात भी होती है, और अच्छे कार्यक्रम आपके बहुत अच्छे लगते हैं दीदी।
0: आपका बहुत धन्यवाद। तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: अरे उसका मूवी का नाम प्यार हफ्ता नहीं है, उसका एक गीत है तुमसे मिलकर न जाने क्यों, और कुछ दोस्तों को भी डेडिकेट करना चाहता
0: जी
1: हूँ।
0: जी श्योर
1: और तो पहले तो दीदी आप हो, उसके बाद सतीश भाई है
0: जी, आपका
1: फरुखाबाद से,
0: धन्यवाद।
1: और मेहरबान नागा है जयपाल यादव जी हैं, और सुनने वाले माने सभी दोस्त हैं जो नजीबाबाद कर रहे हैं सभी लोगों को।
0: जी, तो आपके सभी दोस्तों को डेडिकेटेड है ये गाना, और उनका भी स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।
1: जी जी धन्यवाद।

आपसे मिलकर हमें बहुत कुछ याद आ जाता है, जैसे कि क्रैश कोर्स पैसा वसूल। हाँ, ये सेगमेंट अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो आपके लिए हाजिर है हमारा सेगमेंट क्रैश कोर्स पैसा बोलो वसूल। और इसमें क्या जानकारी आपको मिलेगी ये तो आप सुनने के बाद ही पता चलेगा, तो सुनिएगा जरूर।

0: वेलकम बैक। तो आप सुन रहे हैं सेगमेंट क्रैश कोर्स पैसा वसूल। आपने ये मिसाल तो जरूर सुनी होगी कि गागर में सागर, और ये कैसे मुमकिन है? नहीं सुनी तो ये तो जरूर सोचा होगा कि कभी कभी जो हम ये अपने फोन में बड़ी बड़ी वीडियो बनाते हैं, बड़े बड़े से फोटो क्लिक कर लेते हैं, वो एक छोटे से चिप में कैसे आ जाती है। हम बताते हैं कि नन्ही से चिप में दुनिया कैसे समा जाती है। हमारे पास होता है फोन, फोन में होती है चिप, और चिप यानी कि सेमी कंडक्टर मेमोरीज। अब इसके भी अंदर होते हैं करोड़ों बेहद छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक स्विच, जिन्हें हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की मजे की बात यह है कि ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आंखों से देखना तो बिल्कुल मुश्किल है, ये समझ ली कि नामुमकिन ही है। अब ट्रांजिस्टर का काम होता है ऑन और ऑफ, 0 से 1 तक का काम करना। इस 0 से 1 को कहते हैं बाइनरी सिस्टम। अब होता यह है कि जब हम कोई फोटो या वीडियो सेव करते हैं, 0 से 1 के पैटर्न में बदल जाती है, और ये पैटर्न ट्रांजिस्टर में स्टोर हो जाता है। फिर वही फोटो जब हम खोलते हैं, 0 और 1 दोबारा मिलकर अपनी वही तस्वीर बना देते हैं। अब आगे की कहानी ये है कि हजारों करोड़ों टीबी डाटा आखिर हवा में कहाँ टंगा हो। क्लाउड स्टोरेज का नाम सुना है? बादल वाला क्लाउड नहीं, इंटरनेट वाला क्लाउड। क्लाउड स्टोरेज होता है जिसमें आपकी फाइल, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर नहीं बल्कि सर्वर में सेव होता है। अब सर्वर क्या है? क्या कोई रूम है या किसी का दिमाग या कुछ और? सर्वर रखे होते हैं डाटा सेंटर में। डाटा सेंटर में हजारों कंप्यूटर एक साथ काम करते हैं। सर्वर यानी असली मशीन जो डाटा रखती हैं और सेव भी रखती हैं डाटा सेंटर में। डाटा सेंटर शहर में बड़े बड़े कंप्यूटर से भरे हुए सेंटर होते हैं, जिनको चाहिए होती है फुल स्पीड इंटरनेट और फुल कूलिंग। तो जो चिप आए चिप में ट्रांजिस्टर, फिर पूरी कहानी बदल गई बाइनरी सिस्टम में। अब बाइनरी सिस्टम ने स्टोरेज सेव किया क्लाउड स्टोरेज में। अब माँ सारा खेल है सर्वर का। सर्वर यानी कि बड़े बड़े कंप्यूटर। अब वो बड़े बड़े कंप्यूटर वो डाटा को तोड़ तोड़ कर मल्टीपल जगह पर सेव करते हैं। ये सारा काम होता है डाटा सेंटर में, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्लाउड स्टोरेज। तो समझिए आप, वन क्लिक फोटो के पीछे कितना बड़ा कंप्यूटर है। ये जानकारी आपको सिर्फ यहाँ मिलेगी क्रैश कोर्स पैसा वसूल में। तो अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही क्रैश कोर्स के साथ। तब तक आप सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम युववाणी।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
4: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब देख।
5: अरे अरे हाँ मिंटू, बताओ बताओ क्या हुआ, कैसी तबीयत है अब?
4: तबीयत तो बस ऐसी है, आप देखो रिपोर्ट, मेरी नब्ज देख के बताओ।
5: लाओ लाओ मुझे रिपोर्ट दिखाओ।
6: अरे यार अब इसे कैसे बताऊं, किसके पास समय बहुत कम है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे बताऊं इसे।
4: डॉक्टर साहब कहाँ खो गए, बताओ कुछ तो बोलो।
5: अरे नहीं नहीं देखो बात ये है भाई साहब, देखो आपकी रिपोर्ट तो ठीक ही है, बट मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
4: हाँ तो बस जल्दी कह दो।
5: देखो इस बार ना 84 दिन वाला रिचार्ज मत करवाना।
4: है?
2: जी हाँ मजा आ गया।
7: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद

0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: तो दोस्तों, हमने आपसे पूछा था बूझो तो जाने का सवाल। सवाल ये था कि फिल्म चक दे इंडिया में कोच कबीर खान का किरदार किस अभिनेता ने निभाया, और जिसका सही जवाब है शाहरुख खान। और सही जवाब देने वाले दोस्तों के नाम हैं जॉन डी कैस्ट्रो, पुंजन जी नवाकर, हिरमानी वर्मा, तानी नौटियाल, गंगा सिंह रावत, सुदर्शन शाह, रियासत हुसैन सिद्दीकी, अनिल विनोचा, कैलाश आरवी सिंह, निसार सलमानी, फागुराम यादव, जसदीप सिंह धाकड़, मोहम्मद रफीक पवार, नंदन कुमार सिंह, बी आई धाकर, संजय ढींगिया, हलके जयपाल यादव, अनिल बी गोट के, राजू मिगलानी, देवशंकर तमुरिया, आर्यन राज, एमडी यासीन अनजान, सत्येंद्र और आफ्ताब अंसारी, परवीन चौहान, विजय सरुलकर, जाकिर मंसूरी लाल, मोहम्मद अंसारी, जिशान वारसी, आसिफ चौधरी, मोहम्मद अफसल ताज और गंगा सिंह गेले, राजेश वर्मा।
3: तो चलो यूसुफा, देख लेते हैं हमारे अगले कॉलर कौन हैं। हेलो।
4: हेलो, नमस्कार।
3: जी जी नमस्कार, आपका शुभ नाम?
4: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
3: जी जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: जी जी धन्यवाद आपका।
3: जी राकेश जी, आज आपको कैसा लगा? आपकी कॉल हमारे स्टूडियो में लग चुकी है, आपको मौका मिल चुका है अपने फरमाइशी गीत सुनने का।
4: जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नजीब बात पे कॉल लगी तो बहुत अच्छा लग रहा, क्योंकि आपके प्रोग्राम में कॉल लगी, क्योंकि आपके प्रोग्राम में इतनी कॉल लगना बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर लॉटरी आज मेरी खुल गई, क्योंकि इतने श्रोता जुड़ते हैं आपके प्रोग्राम से, तो फिर तो मेरा कॉल भी लग गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
3: जी जी, ये तो आप सभी का प्यार है कि आप आकाशवाणी नजीबाबाद को इतना प्यार से सुनते हैं, हमारे कार्यक्रम का ध्यान रखते हैं।
2: जी हमसे हमारा आपसे एक सवाल है कि हमने स्टार्टिंग में भी कहा था कि हम कुछ सवाल पूछेंगे, तो पवन ऊर्जा के बारे में आप क्या जानते हैं?
4: पवन ऊर्जा?
2: जी
4: पवन ऊर्जा के बारे में मैं ये ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत ये जानता हूँ कि पवन ऊर्जा जो है हमारे जो है बहुत अच्छा होता है, इससे हमारे शरीर की भी और ऊर्जा बनी रहती है, और हमारा जो है ये जो हवा जो गति बहुत अच्छी रहती है, और पवन का भी बहुत जो पैदल चलने के लिए भी क्या बोलते हैं बहुत अच्छा रहता है।
2: जी जी, यांत्रिक ऊर्जा को फिर चेंज किया जाता है, फिर उसको लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर उस लाइट को यूज कर लेते हैं।
4: तो लाइट की यूज कर लेते
2: हैं। जी जी जी
3: जी जी जी, पवन ऊर्जा एक बहुत ही सस्ता साधन है हमारे लिए, जो कि हमें
4: और
3: लाइट प्रोवाइड
4: क्या होता है, इससे हम बिजली की बचत भी कर सकते हैं। और आज को जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हम बोल रहे थे कि बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, तो अगर हम हमारे पास 24 घंटे ऐसी कुदरत की बिजली हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो फिर हमारे को इस बिजली से खपत, हम बिजली की परेशानी भी नहीं होनी पड़ती, और हमारा बजट भी और बिल का भी क्या बोलते हमारा
3: जी जी बचत हो पाएगी। जी राकेश जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपका जवाब सुनकर, तो आप हमें बताइए कि आज आपका फरमाइशी गीत कौन सा है?
4: बेवफा मूवी का गाना सुना है, प्यार का अंजाम किसने सोचा।
3: जी तो चलिए फिर हम आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।
4: जी जी सुना दीजिएगा, धन्यवाद।

0: तो दोस्तों हमारा बूझो तो जवानी का सवाल तो आपको पता ही है, उसका सही जवाब है शाहरुख खान। और सही जवाब देने वालों की लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें शामिल है मसरूर हसन, दिग्दर्शन गौर, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, सुरेश गंगनेजा, मिसबा शमसी, राजकुमार डूडी, शाहरुख नूर अंसारी, विठल सरोशे, शेख मूसा और मुकेश कश्यप।
1: तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम, आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं ये भेजने बताने के लिए भेजने होंगे ढेर सारे खत। और आप जानते हैं कि खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 246763। साथ ही आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको नोट करना होगा 9457078288।
0: आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी और यूट्यूब आईडी तीनों का ही नाम सेम है आकाशवाणी नजीबाबाद। डाकर फौरन से सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो कीजिएगा और कमेंट सेक्शन को भर दीजिएगा कि कैसे लग रहे हैं हमारे प्रोग्राम आपको। और इसी के साथ मुझे यूसुफा जैदी को
1: और सिमरन कौर को दीजिए कार्यक्रम सम्पन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
3: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक LNG ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टर्बाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में

0: रिकॉर्ड 6.1% गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए कवच सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 दर्ज हुआ। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्दे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया अंकित कुमार की राम राम। और सुनाओ किसान भाइयों, कैसे हाल चाल है थारे? खैर देखो भैया, हाल चाल तुम्हारे किसान भाई के भैया बढ़िया ही होंगे, और भैया हमारे किसान भाई की जो खेती बाड़ी है भैया वो भी ठीक ठाक चल रही होगी, और भैया हमारे किसान भाई अपनी खेती बाड़ी का ध्यान भी रख रहे होंगे। और देखो बात करो मौसम की, तो भैया देखो मौसम अब जा गर्मी हो रही है बढ़िया वाली, और धीरे धीरे भैया अब जा गर्मी बढ़ भी रही है। तो ऐसे में भैया हमारे किसान भाइयों को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत हो, और भैया साथ साथ अपने पशुओं का भी हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना, जो हमारे किसान भाइयों ने पशु पाल रखे हैं उन्हें भी भैया देखो गर्मी से बचाना है। सुबह शाम दोपहर उन्हें ताज़ा पानी पिलाना है, और भैया टैंक का गर्म पानी हमारे किसान भाइयों को अपने पशुओं को नहीं पिलाना है, इन बातों का ध्यान रखना है। और देखो भैया साथ साथ एक बात का और ध्यान रखना, वो है भैया पशुशाला का। पशुशाला का हमें ध्यान ये रखना है कि हमें पशुशाला की नियमित साफ सफाई करते रहना है, और भैया पशुओं को समय समय पर नहलाना भी जरूरी है, क्योंकि भैया गर्मी धीरे धीरे ज़्यादा हो रही है। तो भैया हो सके तो अपनी भैया पशुशाला में साफ सफाई करो और पशुओं को नहलाते रहें मैं। और भैया एक बात का और ध्यान रखना कि भैया अगर हमारे किसान भाई के पास पेड़ हैं तो भैया अपने पशुओं को पेड़ की छाया में खुले में पशुओं को बांधना शुरू कर दें। और भैया इसके साथ साथ एक बात का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत यह हो कि भैया वो है भैया टीकाकरण। भैया हम अपने पशुओं का टीकाकरण जरूरी करवाना है, और भैया पशुओं को बीमारी से भी बचाना है। देखो भैया इसके साथ साथ भैया हमें खेती बाड़ी के काम भी निपटाते रहना है, क्योंकि भैया देखो जून का महीना चल रहा है, तो ऐसे में भैया हमारे किसान भाइयों को बहुत सारे काम खेती बाड़ी के रहें, और भैया व्यस्तता का महीना रहे, क्योंकि आने वाला का जो समय है वो भैया वो बरसात का है। तो ऐसे में भैया हमारे किसान भाई भैया धान की नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं जल्दी से, और भैया उसमें भी कुछ ना भैया तैयारी कर भी ली होगी, तो उसमें और कुछ किसान भाई भैया हमारे धान की नर्सरी की तैयारी में लग भी रहे होंगे। और भैया जिनकी रह गई हो तो भैया नई वो नर्सरी तैयार करते समय कुछ सावधानी जरूर बरतो, कुछ बातों का ध्यान रखो। एक तो भैया जब भी हमारे किसान भाई खेत में अपनी नर्सरी तैयार करो तो पहला भैया खेत की अच्छे से जुताई कर ले मैं, और भैया उसमें गोबर की खाद डाल लो, फिर भैया 3-4 बार अच्छे से जुताई करो, और भैया जुताई करने के बाद तब तक जुताई करो जब तक हमारी जो मिट्टी है वो भुरभुरी ना हो जावो। फिर भैया देखो पाटा लगा कर उसे इकसार कर ले मैं, और भैया समतल जब हमारी जमीन हो जाती है तो उससे क्या होता है कि जो पानी का विपणन हो ना, पानी सभी दिशाओं में चारों तरफ समान रूप से फैलता है, तो इन बातों का ध्यान रखना। और फिर भैया अपने जो नर्सरी की ज़मीन है भैया उसमें पानी भरकर धान की नर्सरी में अच्छे से करनी है। और भैया एक बात का और ध्यान रखना, जब भी हमारे किसान भाई बीज बोएंगे तो भैया बीज को पहले 12 से 24 घंटे पहले भिगो कर रखना जरूरी है, और साथ साथ भैया बीज का उपचार भी बहुत ज़रूरी है। और भैया जब भी बीज हम लेमो तो भैया किसी प्रमाणित बीज का ही चयन करो, उसका हमें इस्तेमाल करना है। और साथ साथ एक बात का ध्यान रखना भैया, हमें खेत की अपनी मेड़बंदी भी जरूर करनी है, तो इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत हो। और देखो भैया अब आने वाला समय है जो बरसात का, तो भैया उसके साथ साथ अपने पशुओं के लिए भैया हरे चारे की व्यवस्था भी करनी है, उसके लिए भैया हमें हरा चारा बोना भी है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। और देखो भैया बात हम बहुत सारी करेंगे तुमसे, और भैया मनोरंजन भी थारा करवाएंगे, और भैया अच्छी अच्छी जानकारी भी देंगे, और भैया खेती बाड़ी की बहुत सारी बात ऐसी हैं जिसमें हमारे किसान भाई आधुनिक तरीके हैं उस बारे में भी जानकारी दे देंगे। पर भैया उसके लिए उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को
2: शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
1: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु
2: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा
1: साप्ताहिक आयोजित कार्यक्रम।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
3: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
2: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
3: खुशहाली का नया प्रयोग।
4: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700014242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
7: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: संदेश तुम्हारे किसान भाई ने भैया सुन लिया, और भैया अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं भैया खेती किसानी की। देखो भैया, हमारे किसान भाई खेती बाड़ी करते हैं और भैया लाभ भी कमाते हैं, और भैया लाभ जब मिलता है, जब काम भैया हम सही समय पर होता है। भैया देखो, अगर इस समय की बात करें तो भैया गन्ना जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण फसल हो, और भैया उसमें हम सही तरीके से उर्वरक प्रबंधन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भैया देखो गन्ना जो एक अधिक पोषक तत्वों की मांग वाली एक नकदी फसल है। अच्छी उपज लेने के लिए भैया संतुलित उर्वरक प्रबंधन जरूरी है, और भैया रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ जैविक उर्वरकों का प्रयोग भी भैया गन्ने के लिए जरूरी है। तो भैया उर्वरकों की सही मात्रा, उचित समय और सही विधि से उपयोग करने पर भैया उत्पादन लागत कम होती है, और भैया मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है, जिससे भी हमारे किसान भाई को लाभ मिलता है। और भैया लाभ लेने के लिए कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। एक तो भैया, हम गन्ने की बुआई से पहले खेत की मिट्टी की जाँच हमें अवश्य करानी चाहिए, और भैया मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों की निर्धारित मात्रा और संतुलित पोषक तत्वों का हमें उपयोग करना चाहिए, जिससे भैया क्या होता है कि एक तो लागत कम होती है और अनावश्यक खर्चों से हमारे किसान भाइयों की बच सकते हैं, और भैया जो लागत है उसमें कमी आती है। दूसरा भैया, एक तो जैविक खाद और कंपोस्ट खाद का ही हमें प्रयोग करना चाहिए, इससे क्या होता है भैया मिट्टी की जो जल धारण क्षमता वो बढ़ती है और सूक्ष्म जीवों की सक्रियता में भी वृद्धि होती है। तीसरा भैया, पोषक तत्वों का, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा का हमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। जैसे नाइट्रोजन है 150 से 225 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पोटास 60 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। इससे अधिक भैया रासायनिक खादों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, और भैया जैसे फास्फोरस है और पोटास है तो भैया इसकी जो पूरी मात्रा हमें बुआई के समय दे देनी चाहिए, और नाइट्रोजन की मात्रा हमारे किसान भाई 2-3 बराबर भागों में बांट कर समय के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। और उसके भैया साथ साथ देखो सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी हमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे भैया जिंक है, मैग्नीशियम हो, आयरन हो, बोरोन हो, इन सब पोषक तत्वों का हमें ध्यान रखना है और भैया साथ साथ जैविक उर्वरकों का प्रयोग भी हमें अपनी फसलों की गुणवत्ता और उपज के लिए करना है। ये भी भैया बहुत लाभदायक होता है। इससे भैया देखो गन्ने की जो जैविक पोषक तत्व है, जैविक तत्व हमारे जैविक उर्वरक है, इन सब भैया एक तो गन्ने की जो वृद्धि अच्छी होती है और भैया कल्लों की जो संख्या उसमें बढ़ोतरी होती है, मतलब कि जो फुटाव होता है वो अच्छा होता है और भैया उत्पादन भी बढ़ता है। और भैया देखो गन्ने में जैसे चीनी की मात्रा उसमें भी बढ़ोतरी होती है। और भैया जैविक अगर हमारे किसान भाई खेती करते हैं तो भैया पौधे रोग और प्रतिकूल परिस्थितियों का बेहतर सामना भी करते हैं और अच्छे से बढ़ोतरी करते हैं। इससे भैया क्या होता है कि जो मिट्टी की उर्वरता ना वो लंबे समय तक बनी रहती है और उत्पादन लागत में कमी आती है और गन्ने की जो सफल खेती हमारे किसान भाई कर लेते हैं। तो किसान भाइयों गन्ने की सफल खेती के लिए संतुलित उर्वरक प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है जिससे भैया हमें लाभ मिलता है। और देखो भैया अगर लाभ की बात करो तो भैया लाभ एक और चीज़ से भी मिलता है कि जब हम भैया हम समय के अनुसार नए नए वैज्ञानिक तरीक़ों से अपना कभी खेती करते हैं, क्योंकि देखो आज का जो समय है वो आधुनिक खेती का है और आधुनिक युग में है तो यंत्रों का जमाना है, तो भैया नई नई तकनीक से खेती करने पर भैया श्रम और समय की बचत होती है। जब दोनों की बचत होती है तो भैया हमें लाभ भी मिलता है और भैया लाभ एक और तरीके से मिलता है, क्योंकि अगर हम अपनी खेती बाड़ी में नए नए यंत्रों का नई नई तकनीकों का उपयोग करेंगे तो भैया आज इसी के संबंध में एक जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी का विषय है AI और कृषि और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अवैस जो कि सहायक प्राध्यापक हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में और आपसे बातचीत कर रहे हैं हमारे भैया नरेश पाल सिंह। तो भैया सुनते हैं ये बातचीत।
9: किसान भाइयों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तकनीकी का जमाना है और कृषि आजकल आधुनिक तकनीक पर आधारित है, तो आज हम एक नए और तकनीकी विषय के साथ उपस्थित हैं जिसका विषय है AI और कृषि। और इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर मोहम्मद अवैश जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं और इनसे हम जानेंगे कि AI का किस प्रकार से कृषि में प्रयोग हो रहा है। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
10: जी धन्यवाद।
9: डॉक्टर साहब सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि AI है क्या, इसको परिभाषित कीजिए।
10: आसान शब्दों में AI को कहा जाए तो AI कंप्यूटर विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट या एक मशीन के जरिए
9: जी
10: एक बुद्धि का प्रदर्शन करने से है।
9: अच्छा।
10: और इसको अगर माना जाए तो इसका इतिहास भी बहुत पुराना है
9: जी,
10: कि जो हम लोग पहले सोचते थे, जो विचार होते थे हमारे, वो पहले हमारे मन के अंदर ही रहता था, अब वो हमारे सामने आ जाता है
9: जी,
10: तो उसी को हम आज आसान शब्दों में कहेंगे यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता है
9: जी। तो मैं ये कहूंगा कि AI क्या किसी मनुष्य का जो कार्य है उसके रूप को ले सकती है?
10: हाँ जरूर। आजकल जैसे कि AI हमारे यहाँ पे चल रहा है, आ गया है, जिसका प्रयोग हम शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अंतरिक्ष विज्ञान, रक्षा, परिवहन और कृषि क्षेत्रों में हम कर रहे हैं, तो मनुष्य का बहुत ज्यादा सहायता कर रही है
9: जी। जी
10: जी, यानी कि हमारा जो मेहनत है, हमारी जो कहना चाहिए लेबर है किसी तरीके, उसको बहुत कम कर रही है और हमारे समय को बहुत बचा रही है
9: जी। जी जी। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यदि हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हम किस प्रकार से प्रयोग में ला रहे हैं और इसके नए नए रूप कृषि क्षेत्र में क्या प्रयोग हो रहे हैं?
10: कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस समय क्रांति सी उत्पन्न कर दी है
9: जी।
10: इस तकनीक से सफल फसलों की जो सफलता से आप उपज को ले सकते हैं
9: जी,
10: और जलवायु परिवर्तन आप देख ही रहे हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल है, पौधों में बीमारी और उनका एकदम तुरंत निदान कर सकते हैं, कृषि रसायनों का सकुशल प्रयोग कैसे करना है हमें, और उसके अलावा रोजगार के मुद्दों के साथ साथ खाद्य सुरक्षा जैसी समस्याएं जो है उनको हम हल कर सकते हैं।
9: तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि खेती में हम जो है बीमारियां हैं और उनकी रोकथाम कर रहे हैं, तो इसके लिए तकनीक रूप से कोई ऐसा यंत्र या कोई चीज इस्तेमाल हो रही है क्या?
10: हाँ, इसके अंदर हम सबसे पहले इसके जो हम देखें तो इतिहास में अगर जाएं तो बहुत समय से हम 1955 से इसका जो है AI का इस्तेमाल हो रहा है
9: जी,
10: मगर हम रिसेंट अभी जो हालिया के वर्षों की बात करें तो 2002-2006 के बाद में AI ने बहुत ज्यादा क्रांति उत्पन्न कर दी है
9: जी।
10: तो हम अगर इस चीज को देखें तो बहुत सारे ऐप हम डेवलप कर लिए गए हैं एआई के जरिए।
9: जी जी जी,
10: उससे हमारी जो फसलों का जो बीमारियां लग रही हैं, कीट लग रहे हैं, आप उसका ऐप के अंदर फोटो खींचिए बीमारी का, और आपको तुरंत ही उसका निदान मिल जाता है कि कौन सी बीमारी है, इसकी क्या समस्या है, और इसके लिए कौन सा हमें उपाय अपनाने इससे बचने के लिए।
9: अच्छा जी, अच्छा, जैसे फसलों में हम कुछ कीटनाशी और कवकनाशी का इस्तेमाल करते हैं, तो अब हम ड्रोन का इस्तेमाल भी ज्यादातर करने लगे हैं।
10: जी,
9: तो ड्रोन का इस्तेमाल एआई के तहत ही किया जाता है?
10: हाँ सर, ये भी एआई के तहत तो है, मगर ये एक समझ लीजिए आधुनिक मतलब वर्जन समझ लीजिए इसका, कि हमें ड्रोन का इस्तेमाल कृषि में बहुत जरूरी हो गया इस समय।
9: जी,
10: जो इस समय हालात चल रहे हैं कि उससे हमें ड्रोन के जरिए आप कीटनाशियों का प्रयोग कर सकते हैं, सिंचाइयों की निगरानी कर सकते हैं कि पानी कहीं ओवर लेवल तो नहीं हो गया हमारा, ड्रेनेज की समस्या को हम दूर कर सकते हैं कि पानी हमारा रात में हमने पानी खोल दिया है और सुबह को जो हमने पानी दूसरे खेत में चला गया, तो उस पर हम निरंतर निगरानी रख के पानी का कंट्रोल कर सकते हैं।
9: अच्छा।
10: पानी और समय दोनों बच सकता है, और उसके साथ साथ इस समय जो बहुत बड़ी परेशानी आ रही है जंगली और हिंसक पशुओं की, खासकर हमारे जिला बिजनौर में, आजकल हम रोज अखबार देख रहे हैं कि इस समय पता चल रहा है कि भाई आज ये हो, तमाम हादसा हमारे सामने आ रहे हैं, फिर भी उससे हम ड्रोन के जरिए देख सकते हैं कि भाई गुलदार तेंदुए कहाँ कहाँ हैं, तो हम सचेत हो जाएं कि हम खेत पे अकेले ना जाएं और जो सावधानी हमें दी गई वन विभाग की तरफ से हम उनको अपना सकें।
9: देखिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इससे हम अपने फसल की निगरानी कर सकते हैं, अपने खेतों की निगरानी कर सकते हैं, और आपने कहा कि जंगली पशु जो आजकल हिंसक हो रहे हैं उनसे भी अपना बचाव कर सकते हैं एआई के द्वारा। देखिए, अब हम बात करते हैं पशुपालन की। यदि हम पशुपालन के विषय में बात करें तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एआई,
10: जी,
9: इसका पशुपालन में क्या प्रयोग कर सकते हैं?
10: हाँ, तो इसमें हम जैसे पशुधन यानी कि लाइव स्टॉक की निगरानी और प्रबंधन के लिए हम एआई आधारित सेंसर से जो लैस आपके आधुनिक उपकरण है,
9: जी
10: हाँ, उनका इस्तेमाल करते हैं, जिसे किसानों द्वारा अपने जानवरों के स्वास्थ्य व्यवहार और उनकी उत्पादकता को ट्रैक करने का तरीका हम जान सकते हैं।
9: अच्छा,
10: और ये उन्नत प्रौद्योगिकी का वास्तविक समय में उनकी जो फूड हैबिट है, जो उनके खाने का पैटर्न है पशुओं का, उसके बारे में बता सकती हैं। उसके साथ साथ जो अब डाइट ले रहे हैं पशु कि किस चीज़ की उनके भोजन में ज्यादती हो रही है, किस चीज़ की कमी हो रही है, उस चीज़ का भी हम पता लगा सकते हैं।
9: अच्छा,
10: हाँ, जिससे किसानों को उनके पशुधन की के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है, और साथ साथ उनकी स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं पशुओं की, उनका भी हम पता लगाने के बाद उनका निदान कर सकते हैं।
9: अच्छा जी, अच्छा, क्या कोई जो ग्रामीण क्षेत्र हैं तो एआई का जो कोई प्रशिक्षण वगैरह है, ऐसी कोई व्यवस्था है?
10: हाँ, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने जो भारत सरकार की तरफ से एक ऐलान किया है, या एक समझ लीजिए कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए कॉमन सर्विस सेंटर है CSC जो कहलाता है,
9: जी जी,
10: इसके तहत 5.5 लाख उद्यमियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुफ्त यानी कि निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाया जाए।
9: तो इसकी जानकारी जो है, जो आप बता रहे हैं जन सेवा केंद्र पे इसका जो निःशुल्क प्रशिक्षण होगा, तो इसकी जानकारी हमारे युवा जो ग्रामीण युवा हैं वो कहाँ से करेंगे?
10: ये जानकारी हमारे ग्रामीण युवा ले सकते हैं, जो मंत्रालय की वेबसाइट है वहाँ से ये जानकारी ले सकते हैं।
9: अच्छा,
10: और साथ ही साथ जिस राज्य से वो संबंधित हैं उस राज्य का जो आपका सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है
9: जी,
10: उसकी वेबसाइट से जाके वो जानकारी ले सकते हैं कि कौन सी कहाँ पे प्रशिक्षण शुरू हो रहा है।
9: अच्छा
10: जी, तो उसके अंदर अपना पंजीकरण कराकर और अपना जो है प्रशिक्षण लें, उसके बाद में अपना कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि जनसेवा केंद्र खोलकर अपना स्वयं उद्यम भी कर सकते हैं। ये एक उद्यमी बनाने के लिए भी एक बहुत अच्छा प्रयास है गवर्नमेंट।
9: जी जी जी
10: जी,
9: अच्छा, हमारे अधिकतर जो ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई होती है या तो नहरों से होती है या नलकूप से होती है।
10: जी,
9: तो नलकूपों की बात करें तो क्या एआई में ऐसा कोई सिस्टम है या ऐसा कोई उपाय है, जैसे हमने ट्यूबवेल चला दिया और हमने ट्यूबवेल चलाना है या नलकूप चलाना है 5 घंटे
10: जी
9: या 5.5 घंटे, तो ऐसा कोई सिस्टम है कि वो 5 या 5.5 घंटे चलने के बाद स्वतः ही बंद हो जाए?
10: हाँ, ऐसे हैं, ऐसे तो बहुत सारे पहले से भी हमारे पास जो नलकूपों में स्टार्टर आते थे जिसको हम लोग बोलते थे कि सब ऑटो कट है
9: जी,
10: और बिजली आ गई तो अपना आप बंद हो गए, और जब बिजली आ जाती थी तो अपना भी ओपन हो जाते थे
9: जी,
10: तो उससे किसानों को रात में दोबारा जो है नहीं जाना पड़ता था खेतों पर। मगर अब ऐसे यंत्र हमारे पास उपलब्ध हैं, उन यंत्रों की सहायता से हम समय उसके अंदर बांध दें।
9: अच्छा।
10: हाँ, कि हमें जो है हमारा जितना खेत है 2 बीघे का या 1 बीघे का, हमारा 1 घंटे के अंदर आपाशी हो जाएगी, तो उसके अंदर समय निर्धारित कर दें और उसके बाद में हम देख सकते हैं कि वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा।
9: अच्छा।
10: तो जिससे हम पानी की बचत कर सकते हैं पूरी तरीके से।
9: जी जी जी। अब बात आती है ड्रोन के इस्तेमाल की।
10: जी।
9: तो ड्रोन का व्यापक रूप से इस्तेमाल हो रहा है।
10: जी।
9: तो ड्रोन का इस्तेमाल, हमने बताया कि जैसा ये हमारा क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसमें जो है जो हमारी मुख्य नकदी फसल है गन्ना।
10: जी।
9: गन्ने में काफी कीटनाशी, कवकनाशी और जो कुछ प्लांट हार्मोन का हम छिड़काव करते हैं।
10: जी।
9: जो कुछ पौधों की वृद्धि नियंत्रक होते हैं उनका भी छिड़काव हम ड्रोन की सहायता से कर रहे हैं, तो इसके विषय में और विस्तार से क्या कहेंगे?
10: जी, ड्रोन के बारे में समझने के लिए, ये ड्रोन जो है कि तकनीक है।
9: जी।
10: अभी उभरती हुई नई तकनीक है जिसको किसान भाई जो है बड़ी तरीके से अपने फसलों की निगरानी के लिए, मॉनिटरिंग के लिए और आपका उर्वरकों का छिड़काव के लिए, साथ साथ कीटनाशकों के छिड़काव के लिए और सिंचाई प्रबंधन में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ड्रोन में जो है हमारे यहाँ सबसे पहले अगर ड्रोन के इतिहास को थोड़ा सा जाने तो 1995 में ड्रोन की शुरुआत हुई है हिंदुस्तान में। जो पहला स्वदेशी हमारा ड्रोन बनाया गया 1995 में बनाया गया, जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने बनाया था।
9: जी जी जी जी।
10: तो उसके बाद में ड्रोन का जो हमारा क्षेत्र है काम करने का,
9: अच्छा,
10: कृषि क्षेत्र में
9: जी,
10: हाँ, तो फसल निगरानी है, उसके बाद में कीटनाशकों का और उर्वरकों का छिड़काव है, जिसके हम क्या करते हैं कि ड्रोन में आपकी कैपेसिटी है कि 30 लीटर है, 10 लीटर है, 50 लीटर का जो बकेट साइज है वो लगा के ड्रोन जो छिड़काव कर देता है पेस्टिसाइड का अपना।
9: जी, जी।
10: हाँ, उसके बाद में फिर सिंचाई प्रबंधन में अगर देखें तो सिंचाई प्रबंधन में ये हम पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं, क्योंकि हम ऊपर से मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारे खेत में पानी भर गया है तो वो ड्रेन हो रहा है तो उसको हम वहीं पर रोक दें।
9: अच्छा।
10: उसके बाद में इसका एक फायदा और, ऐसे समय और लागत दोनों ही बच रहे हैं। और आप इसके बाद में खेतों का सर्वेक्षण, यानी कि हमारी खेतों की जो है अपना किसान खेतों का सर्वेक्षण अपना कर ले पूरे अच्छी तरीके से।
9: जी।
10: कि हमारी खेत की सीमाएं कहाँ तक हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि आज जैसे कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है पत्ता छीलने की।
9: जी।
10: अभी गन्ना अभी छोटी अवस्था में है।
9: जी।
10: और जो घास के नाम पे या पत्ता उतारने के नाम पे जो घसियारे हमारे खेतों में घुस जाते हैं
9: नुकसान
10: और हमें नहीं पता चलता।
9: अच्छा।
10: हाँ, तो उसका भी बड़ा फर्क पड़ता है कि गन्ना जो है वो अपनी पत्तियां उतारने से के बाद में गन्ना जो खुल जाता है तो उसकी ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो पाती।
9: जी।
10: हाँ, और ये लोग पशुओं के लिए ले जाते हैं, तो उससे हम ड्रोन की सहायता से देख सकते हैं कि हमारे खेत के अंदर पशुओं के लिए चारा के ले जाने वाले कौन कौन घुस गए हैं, तो उससे हम निगरानी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चल पाता कि हम इस कोने पे बैठे हैं, दूसरी तरफ से आपका जो घास वाले
9: बिल्कुल जो चोरी करने वाले
10: चोरी करने वाले चुरा के ले गए।
9: खेती में जो चोरी करने वाले हैं वो भी ड्रोन से पकड़े
10: ड्रोन से पकड़े जा सकते हैं।
9: अच्छा, कुछ जैसे हम मत्स्य पालन करते हैं।
10: जी।
9: या पशुपालन करते हैं, पशुपालन की आपने अभी बात बताई थी, तो इसके अलावा मत्स्य पालन में भी कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ?
10: हाँ, इसके अंदर भी है। आपका जैसे लैंड सर्वे का है, पॉन्ड का आपको सर्वे करना है।
9: जी।
10: लेवलिंग के लिए आपको इस्तेमाल करना है कि आप एक तो जो नेचुरल तालाब है हमारे यहाँ उससे अगर हटे के अगर आप नया तालाब बनाने जा रहे हैं।
9: जी जी।
10: तो उसकी लेवलिंग का कितनी गहराई है, कहाँ पे होनी चाहिए, सुटेबिलिटी क्या है, पानी यहाँ पे फ्लड का क्या है, कहीं ऐसा तो ना हो कि आपकी गहराई है जब वर्षा का पानी आए तो आपकी मछलियां निकल के चली जाएं।
9: यानी कि
10: तो आप पहले से उसको
9: सर्वेक्षण जो है तालाब का हो जाता है
10: पहले ही। जी, आप कर सकते हैं और उसके आप मॉडल बना सकते हैं पूरी तरीके से 3D टाइप में।
9: जी।
10: और अपने बेहतर तरीके से अपने तालाब को कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं।
9: जी
10: जी।
9: अब अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि खेती के लिए और इसका जो AI है।
10: जी।
9: जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है।
10: जी।
9: इसका और क्या क्या उपयोग है?
10: इसका उपयोग खेती के साथ साथ, खेती में तो हमारे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसको।
9: जी।
10: और इससे जो हमारे संबंधित दूसरे जो है इसके अंदर आपका प्रिसीजन फार्मिंग, जिसको हम परिशुद्ध कृषि के नाम से जानते हैं।
9: जी।
10: हाँ, इसके अंदर हम बड़े अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके साथ साथ हम GPS GIS टेक्निक जो है वो बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और रोग लगाने का पता और कीट प्रबंधन भी कर सकते हैं। साथ साथ में हम पूर्वानुमानित विशेषण, यानी कि हमें पता चल जाए कि बारिश आने वाली है उसका हमें पहले पता चल जाए,
9: यानी कि मौसम के विषय में भी इससे पता किया जा सकता
10: है। मौसम के विषय में
9: कि मौसम का पूर्व अनुमान क्या रहेगा।
10: हाँ, बिल्कुल सही।
9: तो ये इसमें क्या तकनीक इस्तेमाल होती है?
10: हाँ, इसमें जो है AI द्वारा संचालित पूर्वानुमानित विशेषण कृषि संबंधी निर्णय लेने में परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में एक नई चीज है।
9: अच्छा।
10: हाँ, इससे हम डेटा लेकर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास हमारे जो एरिया में वर्षा कब होगी, हवा कब चलेगी, आंधी का क्या है, तो उसी हिसाब से हम अपनी समय रहते अपना जो है बचाव की कर लें, ताकि सावधानी हम बरत सकते हैं।
9: जी जी, जी। तो और कोई डॉक्टर साहब अनछुआ पहलू हमसे रह गया हो तो कृपया करके
10: इसमें एक, हाँ, मैं एक चीज और साझा करना चाहूंगा साथ साथ।
9: जी जी,
10: उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कृषि विभाग ने एक मिशन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम शुरू की है।
9: जी
10: जी,
9: ये क्या है डॉक्टर साहब?
10: ये है कृषि में मैकेनाइजेशन यानी कि कृषि में यंत्रीकरण के लिए स्कीम की है, और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है आवेदन मांग रही है, और वो एक इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, जैसे कस्टम हायरिंग की चीजें हो गई, मशीनरी हो गई, कृषि ड्रोन भी इसके अंदर है, और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए भी मशीनें दी जा रही हैं।
9: अच्छा,
10: तो इसमें कृषि ड्रोन अगर कोई लेना चाहता है तो इसके लिए आपको जो है किसान को आधुनिक तकनीक से रूबरू कराना है
9: जी।
10: और साथ में ही जो कृषि ड्रोन है, कंबाइन हार्वेस्टर है, और ये सब जो आपका मेज शेलर है यानी कि राइस शेलर है, उसके लिए सब्सिडी दी जा रही है
9: जी जी जी।
10: उसके साथ साथ पंपिंग सेट, थ्रेशिंग मशीन और आपका फ्लोर मिल, ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट के लिए भी आपको सब्सिडी दी जा रही है।
9: अच्छा,
10: तो ड्रोन अगर हमें लेना है या उसके सहायक यंत्र हमें खरीदने हैं, तो हमारे पास जितनी भी राशि है वो जो उसकी लागत आ रही है खरीदने की, उसका 50% हमें यूपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार जो सब्सिडी दे रही है इसको बढ़ावा देने के लिए।
9: तो ये तो बहुत
10: जी
9: अच्छी बात है डॉक्टर साहब।
10: हाँ, और इसके साथ साथ इसमें कुछ योग्यता रखी गई है कि जो लोग इसके आवेदक होंगे उनके लिए कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है ग्रामीण उद्यम को बढ़ावा देने के लिए।
9: जी जी जी, जी।
10: और वो उनके पास अंग्रेजी का ज्ञान होना भी लाजमी है
9: जी।
10: और इसके अंदर अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो हमारे यहाँ आमतौर पर जो कृषि में इस्तेमाल होने वाला ड्रोन है वो 30,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये की लागत यह कीमत का बाजार में मौजूद है।
9: अच्छा
10: जी, और अगर कोई आवेदन करना चाहता है तो यूपी गवर्नमेंट की agridarshan.up.gov.in पर लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं।
9: तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि ड्रोन की कीमत निम्नतर क्या है और उच्चतम क्या है
10: जी।
9: तो डॉक्टर मोहम्मद उवैश, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृषि में अपने उपयोग पर इस विषय पर बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
8: अभी हमारे किसान भाई ने सुनी है जानकारी जिसका विषय था एआई और कृषि, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मोहम्मद अवैस, और आपसे बातचीत कर रहे थे हमारे भैया नरेश पाल सिंह। देखो डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि एआई के माध्यम से किसान भाई अपने श्रम की बचत कर सकते हैं और भैया खेती से लाभ ले सकते हैं, क्योंकि देखो आधुनिक युग में कैसे हम ड्रोन का उपयोग खेती की रक्षा के लिए कर सकते हैं और स्प्रे के लिए कर सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और देखो जब बात लाभ की आती है तो लाभ एक और चीज़ से मिलता है, वो है भैया भारत सरकार की योजनाओं से जुड़कर उन्हें अपना कर। देखो किसान भाइयों, खेती बाड़ी करने के लिए पानी का बहुत महत्व, क्योंकि सिंचाई समय पर अगर फसल को जरूर को मिल जाती है तो जो हमारी फसल है वो अच्छी होती है। और भैया जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई के साधन नहीं है तो भैया वो प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना से जुड़कर लाभ कमा सकते हैं। ये किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम कुसुम है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराना है, डीजल पंपों पर निर्भरता कम करना और बिजली की खपत को कम करना है, कृषि के लिए सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का प्रदान करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। इसमें किसानों की भूमि पर 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना और ऑफ ग्रिड क्षेत्रों में 7.5 HP के स्टैंड अलोन सोलर पंप लगाना है। इस योजना के अंतर्गत जो हमारे किसान भाई हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर इसमें सब्सिडी देती हैं। इससे भैया कम खर्चे में हमारे किसान भाई लगवा सकते हैं। इसके लिए आवेदक भारत का किसान होना चाहिए, किसान के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता होना आवश्यक है, और भैया संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को भी पूरा करना जरूरी है। इसके लिए देखो आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो आधार कार्ड, पहचान पत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज जैसे खसरा, खतौनी, बैंक पासबुक की प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर जरूरी है। आवेदन के लिए अपने राज्य की नोडल एजेंसी या कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाएं, पीएम कुसुम योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें और भैया आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, और फिर इसके बाद आवेदन सत्यापन के बाद चयनित किसानों की सूची भैया जारी होती है और निर्धारित अंशदान द्वारा या उसे जमा करके सोलर पंप लगा दिया जाता है। और भैया अधिक जानकारी के लिए हमारे किसान भाई इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वेबसाइट है pmkusum.mnra.gov.in। तो भैया हमारे किसान भाई इस योजना से जुड़े और भैया लाभ कमाएं। और भैया देखो, जब हमारे किसान भाई योजना से जुड़ेंगे और लाभ लेंगे तो भैया हमारी जो खेती बाड़ी है वो भी अच्छी होगी, और जब खेती बाड़ी अच्छी होगी तो भैया हमारे किसान भाई खुशहाल होंगे, और जब खुशहाल होंगे तो भैया हमारे किसान भाइयों का मन करेगा गीत संगीत का। तो भैया चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुन लेते हैं ये प्यारी सी रागनी।

सुख थोड़े दुख घने जगत में। अभी हमारे किसान भाइयों ने मैनपाल सिंह और साथी की आवाज़ में भैया ये प्यारी सी रागनी सुनी। और देखो भैया हमारे किसान भाइयों का मनोरंजन भी हो गया होगा। और भैया अब देखो अब बात करो मौसम की, अब समय आ गया मौसम की चिट्ठी का। और भैया ये हमें मौसम की चिट्ठी प्राप्त हुई है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ से। और भैया इस चिट्ठी के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवा के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है। तो भैया हमारे किसान भाई मौसम को देखकर कृषि कार्य करते रहे हैं। और देखो अगर बात करो घड़ी की, तो भैया घड़ी बिल्कुल भी आपसे बातचीत करने की इजाज़त नहीं दे रही है। तो भैया चलते चलते हम अपने किसान भाई को अपना पता जरूर बता दें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद। हमारा पिन कोड है 2467633 और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457072888। तो किसान भाइयों इस पते पर हमें आपकी चिट्ठी पत्रिका रहेगा इंतजार। और अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया अंकित कुमार को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। विविधा के अंतर्गत लीजिए सुनिए शौकीन अहमद की वार्ता। विषय है प्रदूषण नियंत्रण में आम जन की भूमिका।
1: आज प्रदूषण नियंत्रण एक समस्या बन गई है। प्रदूषण नियंत्रण दुनिया भर के देशों के लिए चिंता का विषय है। महानगरों की दशा शोचनीय है। भौतिकवाद की अंधी दौड़ ने मानव को स्वार्थी बना दिया है, जिस वजह से जहरीली हवा में सांस लेकर हम लोग तिल तिल मर रहे हैं। प्रदूषण से निजात पाने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे, तभी हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आज हमारे शहरों में प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। दिन प्रतिदिन अवैध रूप से पेड़ों को काटा जा रहा है। प्रदूषण का विकराल रूप कोविड-19 महामारी के दौरान देखने को मिला, जिसने हमें साफ हवा की कीमत समझा दी है, जबकि पर्यावरण संरक्षण हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। परंतु मानव ने अपने स्वार्थों के लिए प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया है, जिसकी वजह से प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है। सर्दी की दस्तक व वातावरण में नमी के कारण दिल्ली NCR व आसपास के जिलों में प्रदूषण बुरी तरह फैल जाता है। बड़े शहरों व महानगरों में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। दीपावली के बाद तो प्रदूषण का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है। दिल्ली में आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध होने के बावजूद दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है। किसानों द्वारा पराली जलाने से इसका धुआं दिल्ली व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों को प्रभावित कर रहा है। प्रदूषण को कम करना केवल शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, आम जनमानस को भी अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। दिवाली पर AQI में 4 गुना तक वृद्धि देखी गई है। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ों के अवैध कटान पर रोक जरूरी है। हमें औद्योगिक इकाइयों को शहर से बाहर लगाना चाहिए। इन औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं व अन्य प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाने चाहिए। शहरों को ग्रीन जोन बनाने के प्रयास करने चाहिए। वन विभाग व सामाजिक संगठनों को संयुक्त रूप से अभियान चलाकर प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयास करने चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम के लिए यह भी अति आवश्यक है कि विशेष रूप से जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। शहरों में वॉल पेंटिंग, होर्डिंग्स व अन्य प्रचार प्रसार के प्रयास करने चाहिए। RWA रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन और सामाजिक संगठनों NGO को प्रदूषण नियंत्रण हेतु विचार गोष्ठी, विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। स्कूल, कॉलेज, स्टूडेंट्स, टीचर्स मिलकर जन जागरूकता अभियान चलाएं तो हम काफी हद तक प्रदूषण पर नियंत्रण पा सकते हैं। हम अपने जीवन की दिनचर्या की बात करें तो हमें इस बात पर भी गौर करना होगा कि प्रातःकालीन से प्रारंभ होने वाली गतिविधियां प्रदूषण नियंत्रण में बहुत उपयोगी साबित हो सकती हैं। हमें गीला कूड़ा हरे रंग के कूड़ेदान में तथा सूखा कूड़ा नीले रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथीन, पेपर, गत्ता जैसे आदि

केवल सरकार के भरोसे हम प्रदूषण को नियंत्रित नहीं कर सकते। वाहनों का धुआं पर्यावरण के लिए संकट पैदा करता है। असीमित वाहनों की संख्या बड़ी समस्या है। हमें सार्वजनिक यातायात के साधनों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हरियाली और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अपने आंगन में अथवा छतों पर छोटे छोटे गमलों में पौधे लगाएं, जैविक खेती करें, कम बिजली, कम पानी, कम गैस का प्रयोग करके प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा सकता है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए जलाऊ लकड़ी का कम से कम प्रयोग करें। वायु प्रदूषण रोकने के लिए अपने वाहनों का ख्याल रखना जरूरी है। वाहनों की फिटनेस प्रदूषण प्रमाण पत्र को समय पर बनवाना चाहिए। अपने दैनिक जीवन में पैदल या साइकिल का उपयोग करने से प्रदूषण का बचाव तो होता ही है, साथ में स्वास्थ्य का लाभ भी होता है। प्रदूषण के कारण आज मानव बहुत सारी बीमारियों का शिकार होता जा रहा है। सांस फूलना, गले में खराश, फेफड़ों की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। गृहिणियां रसोई के गीले कूड़े से खाद बना सकती हैं। खरीदारी करते समय घर से कपड़े का थैला लेकर चलें, पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, धूम्रपान से बचें, गुटखा खैनी का प्रयोग ना करें, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है ही, इससे प्रदूषण भी फैलता है। हम जब भी बाजार जाते हैं तो अतिक्रमण की बहुत बड़ी समस्या नजर आती है। यह समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है, जिसके कारण सड़कों की चौड़ाई घट रही है, ट्रैफिक जाम लग जाता है और यह भी प्रदूषण को बढ़ाता है। वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। आपने देखा होगा रोड के किनारे लगे हुए पेड़ पौधों पर धूल जम जाती है और डिवाइडर पर किस तरह से धूल का अंबार लग जाता है। तो हमें चाहिए कि रोड के किनारे ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और डिवाइडर के बीच में जगह होती है वहां पर भी पौधे लगाएं। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है, जिसके लिए शासन प्रशासन को असल सक्रियता लानी होगी। राजनैतिक दलों को भी पर्यावरण के धर्म को निभाना चाहिए। जैसे कि हमारे त्योहार, हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह पर हैं, मगर हमें गला घोटू वातावरण से बचने के लिए दीपावली पर ग्रीन पटाखे जलाकर प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहयोग करना चाहिए। बारात में आतिशबाजी, पटाखे जैसी चीजों से बचना चाहिए। और किसान भाइयों से भी अपील है कि किसान भाई पराली जलाने से बचें और इसके विकल्प के रूप में खाद बनाकर उसका प्रयोग करें, क्योंकि धुआं कम से कम हो, वायु प्रदूषण से गर्भवती महिलाओं में भी बीमारियां फैल रही हैं, जिसका सीधा प्रभाव आने वाले बच्चों पर पड़ता है, जो भारत का भविष्य है। और भारत के भविष्य को बचाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण जरूरी है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए हमें बहुत सारे विकल्पों के साथ साथ एक बात का विशेष ध्यान ये भी रखना चाहिए कि हमारे आसपास जो कूड़ा करकट फैलता है या कुछ लोग कूड़ा इकट्ठा करके उसे जला देते हैं, उससे जो धुआं फैलता है वो हमारे आसपास के प्रदूषण को बढ़ाता है। तो हमें मोहल्ले में एक ऐसे ग्रुप बनाए और उन ग्रुप में जो नौजवान बच्चे हैं उन सब के साथ मिलकर के हम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक जन जागरूकता अभियान चलाएं। और जब यह जन जागरूकता अभियान चलेगा तो लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी और लोग जानकार होंगे तो इसे प्रदूषण नियंत्रित करने में

0: सहयोगी माना जा सकता है। मेरी तमाम भारतवासियों से अपील है कि प्रदूषण नियंत्रित करने में सहयोग करें।
1: विविधा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता, प्रदूषण नियंत्रण में आम जन की भूमिका। वार्ताकार थे शौकीन अहमद। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत।

अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर के स्वर में, फिल्म थी आखिर क्यों, बोल थे इंदिवर के और धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। श्रोताओं आप सुन रही हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए सुनवाते हैं आपको इस कार्यक्रम में अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म बंदनी से। स्वर है SD बर्मन का

0: बोल शैलेंद्र के और धुन एसडी बर्मन की।
1: ओरे माझी

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, छाया गीत कार्यक्रम में सुनते हैं अंतिम पेशकश फिल्म जीवा से। गायक कलाकार हैं आशा भोसले और अमित कुमार, गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार आरटी परमन।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देश गान।

ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

श्रोताओं, आज रात्रि 9:30 पर दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत और 10:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश कर, जो कि आपकी पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम है।

और श्रोताओं, कल रात्रि 10 बजे राज्य स्तरीय प्रसारण खेल दर्पण कार्यक्रम रिले किया जाएगा लखनऊ केंद्र से, जिसमें प्रस्तुति रहेगी आकाशवाणी लखनऊ की। कल रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम आप सुनेंगे शेरी नशिस्त। प्रतिभागी कलाकार होंगे श्री यूनुस, श्री फारूक खान, श्री इशरतुल्लाह खान और सनावर किरतपुरी, और संचालन करता होंगे श्री गुलाम अब्बास उर्फ गुलशन बिजनौरी। श्रोताओं, सुगम संगीत में कल हम शाम 7:32 पर आपको सुनवाएंगे चंदन दास की गाई चंद गजलें, और विविधा में आप सुनेंगे ब्रिज बिहारी धुरिया की वार्ता, जिसका विषय रहेगा हिंदी साहित्य के विकास में अनुवाद की भूमिका। कृषि जगत कार्यक्रम का समय रहेगा रोजाना की तरह शाम 6:05 पर, जिसके अंतर्गत आपको सुनवाई जाएगी डॉक्टर सुमन देवी से प्रमोद सिंह की बातचीत। बातचीत का विषय रहेगा बासमती धान की नर्सरी में समेकित कीट प्रबंधन।

कल दिन में एक बजकर 15 मिनट पर बहनें सुनेंगी कार्यक्रम महिला जगत और लोकधारा कार्यक्रम में दिन में 1:45 पर आपको सुनवाए जाएंगे भारत सिंह नेगी के गाए गढ़वाली लोकगीत। श्रोताओं, सैनिकों के लिए कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 12:05 पर। मिड डे मेलोडी कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर। और श्रोताओं, कार्यक्रम बात आसपास की इसका समय रहेगा कल प्रातः 9:50 पर। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के विषय में। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, शाम की 7:18 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किड बैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किड बैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
6: हर घर

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, कहा अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए जारी किए प्रवेश पत्र, 21 जून को होगा इम्तिहान। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ योग सप्ताह, प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योगाभ्यास कर जन भागीदारी बढ़ाने का दिया संदेश। और सोमवती अमावस्या पर प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, प्रशासन ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। गौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से शुरू हो गई हैं। नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने उद्घाटन समारोह में कहा कि इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देश भर में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के विजन का नतीजा है। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट घरेलू संचालन का हब बनेगा।
1: ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए हब बनेगा और खास तौर पे यहाँ एरोट्रोपोलिस का मॉडल हमने इस्तेमाल किया। आप देखेंगे तो एशिया का ही सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक हमारे ये जेवर एयरपोर्ट होने वाला है। तो आगे जाकर बहुत ही संभावना यहाँ पे है, नेटवर्क बढ़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग हो, हॉस्पिटैलिटी हो, एग्रीकल्चर हो, कार्गो हो, ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स हैं जो डिपेंडेंट रहेंगे ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
0: इस पहली उड़ान से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले 170 किसानों को स्थानीय विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ लखनऊ भेजा गया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से संवाद करते हुए सरकार अन्नदाताओं को समुचित हक दिलाने के प्रतिबद्ध है और इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है।
2: हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन वह बीच में किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा और आप जो सोचते होंगे उससे अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने वही वहां पर करने का कार्य किया है और मुझे प्रसन्नता है आज आपके कारण वह क्षेत्र बदल रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आपने सचमुच इतिहास रचा है।
0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद और अमृतसर के लिए उड़ानें शुरू हो गई हैं। 1 जुलाई के बाद 16 शहरों के लिए नियमित उड़ानें संचालित होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी में शामिल हुए। सोशल मीडिया क्रिएटर्स से संवाद करते हुए श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना एक विजन है, देश के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे समाज के सभी पक्षों को जोड़कर एक जन आंदोलन बनाकर ही सफल बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में रामभाव महालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने आयोजन के उद्देश्य और महत्व की जानकारी दी। इस सम्मेलन में 10 से अधिक राज्यों के 100 से अधिक डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स एक साथ एक मंच पर जुटे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट

0: के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस सिलसिले में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज से 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, अमरोहा, मिर्जापुर और बिजनौर सहित विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों सहित समाज सेवियों द्वारा प्रोटोकॉल के तहत योग कर योग सप्ताह की शुरुआत की गई। वाराणसी में इस अवसर पर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य में योग, आयुष और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ा देने के लिए कई पहल की जा रही हैं। 12 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से शुरू हुआ। श्री मोदी के नेतृत्व में योग को वैश्विक पहचान मिली। भारत की इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन और स्वस्थ जीवन शैली के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: अयोध्या में श्रीराम मंदिर परिसर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मंदिर निर्माण में लगी सभी एजेंसियां 15 जुलाई तक काम पूरा कर लेंगी।
3: मुख्य रूप से निर्माण का जो कार्य अब अंतिम चरण में है, क्योंकि सभी एजेंसी जुलाई 15 तक वापस हो जाएंगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य जो अब ट्रस्ट को करना है, क्योंकि 90% निर्माण कार्य अब हस्तांतरित हो गया है, ट्रस्ट को दे दिया गया, अभिलेख दे दिए गए, रिकॉर्ड दे दिए गए, तो उनका ऑपरेशन मेंटेनेंस मैं जरूर कहूंगा कि एक चुनौती है। ट्रस्ट जो राम कथा संग्रहालय है, हम आश्वस्त हैं कि यदि यह प्रगति रही तो दिसंबर 2026 तक श्रद्धालुओं को म्यूजियम भी देखने का पूरा पूरा अवसर मिलेगा।
0: सोमवती अमावस्या आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में आस्था के साथ मनाई गई। प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। पेश है एक रिपोर्ट।
4: श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर भगवान सूर्य और भगवान विष्णु का मंत्रोच्चारण के साथ घाट पर जल अर्पित कर पूजन किया और जरूरतमंदों को अनाज और वस्त्र दान किया। सोमवार और अमावस्या का यह मेल स्नान दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। सनातन धर्मावलंबी महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए आज के दिन व्रत रखकर पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करके कच्चे सूत का फेरी देती हैं। अधिक मास का भी समापन सोमवार को पड़ने से आज बड़ी संख्या में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
0: इस अवसर पर अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, हापुड़, बदायूं, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मिर्जापुर सहित अन्य जिलों में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान किया।

0: साथ ही प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद। कहा, अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए जारी किए प्रवेश पत्र। 21 जून को होगा इम्तिहान। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ योग सप्ताह। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योगाभ्यास कर जन भागीदारी बढ़ाने का दिया संदेश। और सोमवती अमावस्या पर प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रशासन ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
2: चलो,
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: मीडियम वेव 400.6, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सुगम संगीत के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है पुनीत मेहरा के गाए भजन।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सुगम संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीवाबाद केंद्र से इस वक्त पुनीत मेहरा के गाए भजन।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में इस वक्त पुनीत मेहरा के गाए भजन आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पुनीत मेहरा के गाए भजन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम अपने श्रोताओं को एक बार पुनः बता दें कि आज रात्रि 9:30 पर दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत, इसका आनंद आप लेंगे श्रोताओं रात्रि 10 बजे। और कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आप सुनेंगे आज रात्रि 10:30 पर। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। गीत संध्या कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं ये गीत जो हमने लिया है फिल्म नमक हराम से। आवाज़ है किशोर कुमार की, बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन आरटी परमन ने बनाई है।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, गीत संध्या कार्यक्रम में आए सुनते हैं अगला गीत फिल्म खामोशी से। गायक कलाकार हैं हेमंत कुमार, बोल गुलजार की हैं और धुन हेमंत कुमार की।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

परिचय फिल्म का गीत श्रोताओं आपने अभी सुना किशोर कुमार की आवाज़ में, बोल गुलजार के थे और धुन आरटी बर्मन की। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए सुनवाते हैं आपको ये अगला गीत फिल्म सिलसिला से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन, गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार शिव हरी।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

फिल्म सिलसिला के इस गीत के बाद आइए श्रोताओं सुनते हैं मन्ना डे की आवाज में ये प्यारा सा गीत फिल्म मेरा नाम जोकर से। बोल हैं नीरज के और संगीत शंकर जयकिशन का।

0: ज्यादा वफादार है। हप हप खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

गीत संध्या कार्यक्रम के अंत में आइए श्रोताओं आपको सुनवाते हैं फिल्म शोर का ये गीत। गायक कलाकार है मुकेश और लता मंगेशकर।

अभी आप सुन रही थी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका एक ही फिल्म से कार्यक्रम में। आज हम चलेंगे यादों की उस हसीन गली में जहां प्यार में तकरार भी थी और बे इंतहा इकरार भी। जी हाँ, आज की हमने फिल्म ली है साल 2004 में रिलीज हुई हम तुम। श्रोताओं, इस फिल्म ने स्क्रीन पर प्यार की परिभाषा को बदल दिया। सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की केमिस्ट्री और साथ में वो प्यारे से कार्टून कैरेक्टर्स, इस फिल्म के गानों ने हमारे दिलों में एक खास जगह बनाई है। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं फिल्म के पहले गाने से, जो कॉलेज के दिनों की याद दिला देगा। आवाज है वर्णिका मेहता और जोगी डी की।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, वैसे इस फिल्म से जुड़ी एक मजेदार बात जानते हैं आप? सैफ अली खान से पहले ये फिल्म हम तुम ऋतिक रोशन और विवेक ओबराय को ऑफर हुई थी, लेकिन किस्मत में तो सैफ का नाम लिखा था। और हाँ, इसी फिल्म के लिए सैफ अली खान को नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। अब बढ़ते हैं फिल्म के उस गाने की तरफ जो हर लड़के और लड़की को दिल की बात कहता है। लड़के सोचते हैं लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं और लड़कियां सोचती हैं लड़के ऐसे क्यों होते हैं। इस मीठी सी बहस को सुरों में पिरोया है अलका याग्निक और शान ने। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, लड़के और लड़कियों की ये बहस तो सदियों पुरानी है और शायद कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन इस नोकझोंक के बीच जब प्यार अपनी जगह बनाता है तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। हम तुम फिल्म की एक और खास बात थी इसके बीच बीच में आने वाले वो एनिमेटेड कार्टून। भारत में इस तरह का एक्सपेरिमेंट पहली बार किसी बड़ी कमर्शियल फिल्म में किया गया था जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। अब वक्त है उस गाने का जो दिल के सबसे करीब है, जब सफर लंबा हो और साथ में कोई खास हो तो ये धुन बैकग्राउंड में अपने आप बजने लगती है। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में पेश है बेहद खूबसूरत गाना 11:11।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्दे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

0: के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि इसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, एआई चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या

0: सर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
1: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टर्बाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली

0: और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
1: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
3: एलएनजी कैरियर दिशा
4: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
2: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्दे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य, रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्दे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agree to establish a joint working group on counter-terrorism. Friend city of Ovion gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H, clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
6: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है यह हमारे साझा विश्वास साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की ऑटोमोबाइल रेलवे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए
5: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
6: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी
5: Prime Minister Modi said the two sides also signed the Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Labor Migration to facilitate mobility.
6: स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर एमओयू की घोषणा की है हम शीघ्र ही सोशल सिक्योरिटी पर एमओयू को भी अंतिम स्वरूप देंगे
5: Speaking on the occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors.
7: I congratulate you to the results in all areas which you have achieved. It's the field of digitalization and the use of artificial intelligence. You've come so far that you're ahead of many other advanced countries in different parts of the world. I would like to congratulate you to economic growth, which is amazing.
5: According to the joint statement, Prime Minister Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. We have a report.
8: During the delegation-level talks, 11 agreements were signed in the fields ranging from labor migration, defense, digital technologies, higher education, audiovisual production, establishment of an AI chair, quantum communication, cooperation in student exchange programs, and tourism development. Agreement was also signed on scientific cooperation between the Indian National Science Academy and the Slovak Academy of Science. Both the countries also agreed to set up joint working group for counter-terrorism and establishment of consular dialogue. With the report of Smriti Ampulruti, Rupesh Rathore, Akashvani News.
5: Later, Prime Minister Modi also met Slovakian President Peter Pellegrini in Bratislava. Mr. Modi reached Slovakian capital last night after concluding his visit to the French city of Nice. The French city of Evian is all set to host the 52nd G7 summit beginning tonight. The meeting is getting underway as the US and Iran have finalized a deal to end the West Asia conflict. French President Emmanuel Macron will formally welcome leaders of the G7 countries, which include the United States, the United Kingdom, Canada, Germany, Italy and Japan, along with the presidents of the European Council and the European Commission later tonight. India, Brazil, South Korea, Kenya and Egypt have been invited to the summit as partner countries. Ukraine, Qatar and United Arab Emirates have also been invited for the summit. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian tomorrow to participate in the summit. We now go over live to our correspondent Ankit Kumar, who is now in Evian tracking developments on the G7 summit. Ankit, how are the G7 leaders translating their recognition of India's strategic importance into practical cooperation on trade, technology, manufacturing and supply chain security? And what outcomes are expected from this summit?
9: Yes, Misit. India's strategic importance for the G7 is increasingly being reflected in the concrete economic

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग। श्रोताओं, आज के दौर में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और तनाव हम सबको घेर रही हैं। ऐसे में जरूरत है हम दवा से पहले परहेज और बचाव की ओर ध्यान दें, और यही काम करता है हमारा प्राचीन विज्ञान योग। ये कहा भी गया है कि योग भगाए रोग। योग केवल आसन नहीं है, यह संपूर्ण जीवन पद्धति है जो शरीर को निरोग, मन को शांत और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। पहला सुख निरोगी काया, इस कहावत को सच करने का सबसे सरल और सुलभ उपाय है योग। आज इस विषय की गहराई को समझाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। दोनों विशेषज्ञों का अनुभव लाखों लोगों के जीवन को स्वस्थ दिशा दे रहा है। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे योग को अपनाकर हम अपनी बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं और स्वस्थ तथा सुखी जीवन जी सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में योग और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो कार्यक्रम के शुरू में सबसे पहले कमल जी, आपसे जानते हैं, बदलते मौसम में सर्दी खांसी से बचने के लिए कौन सी योगासन और प्राणायाम रोज करने चाहिए?
1: जी मुकेश जी, धन्यवाद। बदलते मौसम के लिए सबसे बेहतर जरूरी होता है कि हम लोग आँख नाक कान को ठीक रखें। तो उसके लिए उज्जयी प्राणायाम होता है
0: जी,
1: जो गले को बहुत अच्छे तरह से ठीक रखता है। साथ ही साथ हम कुछ और चीजें भी कर सकते हैं, जैसे नाक में, नासिका में तेल डालना
0: जी,
1: और डेली बेसिस पे डालें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग, उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं हम लोग और सिंह गर्जना कर सकते हैं। इससे गले की खराश ठीक होगी और गला ठीक रहेगा, तो बदलते मौसम में फिटनेस बनी रहेगी
0: जी। अनिता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल नींद ना आना एक बड़ी समस्या है, अनिद्रा के लिए कौन सा योग सबसे कारगर रहता है?
2: अनिद्रा के लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान लगाने की आदत होनी चाहिए, उससे बहुत जल्दी आपको नींद आ जाती है। ध्यान लगाएंगे, जैसे आप लेटेंगे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, अपने आपको थॉटलेस हो जाइए
0: जी,
2: सबसे बेस्ट ये है। बाकी आप जो है ना मोबाइल को दूर रखें सोने से एक घंटा पहले, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी
0: जी। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और इस बीच हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं हिसार से, राजेंद्र। राजेंद्र, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विशेषज्ञ से क्या सवाल पूछना चाहेंगे?
3: नमस्कार जी मुकेश जी, और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता जी, घुटनों का दर्द और कमर का दर्द अक्सर रहता है, और जो बैठने का काम करता है जो उनको ज्यादा ही, और कुछ काम करने से भी घुटनों का दर्द ज्यादा और कमर का दर्द बढ़ जाता है, और ये योग करना चाहिए, कौन सा स्टेप है जो करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, वो इसके बारे में जानना था। जब अभी डॉक्टर साहब गले के बारे में बता रहे थे, अक्सर लोगों को गले का कैंसर बहुत ज्यादा आ जाता है, तो उसके बारे में भी कोई योगा का स्टेप है तो उनके बारे में भी बताए। नमस्कार जी,
0: मुझे लगता है इन्होंने कई सारे प्रश्न एक साथ कर दिए हैं। सिद्ध जी बताए।
2: हाँ देखिए, कमर के दर्द के लिए सबसे अच्छा है आप ना भुजंग आसन करें, बहुत आराम आराम से करें, मरकट आसन करें। यदि कमर में दर्द है तो भी आप मरकट आसन कर सकते हैं
0: जी।
2: और आपने जैसे बोला है कि घुटनों में दर्द है, तो आप हल्दी मेथी सौंठ ये तीनों का कॉम्बिनेशन बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर शाम को दूध के साथ 5 ग्राम ले लें
0: जी।
2: तो ये कंटिन्यू आप लेंगे तो इसमें आपको बहुत लाभ होगा। गले की जहां तक आपने बोला है कि गले में है, तो उज्जयी प्राणायाम करेंगे और आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको उसमें लाभ होगा, गले में भी लाभ होगा जैसे मौसम के बदलते हुए। उसमें गुनगुना पानी करके उसको उसका सेवन किया करें, गरारे किया करें तो गले में आपको लाभ होगा
0: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं कमल जी, हरिद्वार से रवि जवालिया। रवि जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछें क्या सवाल है आपका।
4: हाँ जी नमस्कार जी, और विशेषज्ञ को भी नमस्कार जी।
1: नमस्कार
4: जी, और सबसे पहले आप सभी का आज पवन दिवस है जी, विश्व पवन दिवस, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं जी। और मैं जानना चाहता हूँ जी, योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, सभी जानते हैं। तो सर मेरा जो वर्क लोड है वो मतलब कंपनी में मेरा ज्यादातर बैठने का कार्य है जी, तो उसके लिए मुझे क्या कौन सा आसन करना चाहिए जिससे कि मुझे मतलब ज्यादा दिक्कत ना हो हड्डी में या कोई भी फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि ज्यादातर मेरा बैठने का ही कार्य है जी काम कंपनी में। और एक और क्वेश्चन और है कि क्या मतलब जो मुझे काउंटिंग करनी होती तो क्या म्यूजिकली काउंटिंग से भी एक मतलब रिदम बन सकता है मेरा।
1: धन्यवाद रवि जी, और आपका जो प्रश्न है उसमें ज्यादातर लोगों का ये प्रश्न है, क्योंकि सारे लोग मैक्सिमम ऑफिस में ही काम करते हैं बैठने का काम, तो ये आपके माध्यम से उनके भी काम आएगा। इसके लिए आप चेयर पे बैठे बैठे भी कुछ योग कर सकते हैं, जैसे पैरों को हिलाना, पैरों की मूवमेंट करना, लेफ्ट राइट पैरों को लेके जाना हड्डियों के लिए, जैसे आपने बताया उसमें भी कारगर करता है, ठीक है। और पैरों की रोटेशन जो होती है कई तरह से हो सकती है, ठीक है, लेफ्ट राइट लेके जाना, उंगलियों को दबाना छोड़ना, सांसों के साथ कर सकते हैं। और साथ ही साथ बीच बीच में आप उठने का प्रयास करें हर 2 घंटे बाद, और अपने डेस्क के आसपास पानी जरूर रखें, क्योंकि पानी अगर बीच बीच में ज्यादा पीते रहते हैं, कि बॉडी हमारी 70% पानी से बनी हुई है
0: जी,
1: तो पानी की कमी भी बहुत सारे रोगों का कारण बनती है, तो आप इसको करें आपको निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
0: बिल्कुल लाभ होगा। और अनिता जी आपसे जानना चाहेंगे कि हाई बीपी के मरीजों को कौन से आसन नहीं करने चाहिए, उनके लिए क्या सावधानियां हैं।
2: हाई बीपी के मरीजों को एक तो आसन बहुत धीमी गति से करने होते हैं
0: जी,
2: तो फास्ट कोई भी आसन नहीं करना है, और सबसे बेस्ट उसके लिए जो है सब आसन है, कहने में तो एक हंसी की बात आ जाती है
0: सभी के लिए।
2: हाँ, लेकिन जैसे ही हाई बीपी होता है तो आप सब आसन में लेट जाएंगे तो आपका बीपी 5 मिनट में काफी कम हो जाएगा, तो इस चीज का विशेष ध्यान करें। सब आसन का मतलब होता है वही थॉटलेस होकर सीधे लेट जाना, लंबे गहरे श्वास धीमी गति से भरना और धीमी गति से छोड़ना।
0: और इस समय हमारे साथ एक श्रोता और जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश नेमा। राजेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका।
5: जी मैं सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ, और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है इस हेतु बहुत बधाई। और मेरा सवाल ये है, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए योग का कौन सा आसन श्रेष्ठ है।
0: जी बताएं।
2: हाँ, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम है
0: जी,
2: और उसमें भी भस्त्रिका प्राणायाम है, लंबे गहरे श्वास भरना और लंबे गहरे श्वास छोड़ना एक रिदम के साथ, एक लय के साथ, तो वो जो है आपकी श्वसन क्रिया को नॉर्मलाइज करेगा। उसके बाद पहले तो आपने भस्त्रिका प्राणायाम जितना समय, यानी कि आपने सपोज 2.5 सेकंड समय श्वास को भरने में लगाए हैं, तो कोशिश करें 3 सेकंड को श्वास छोड़ने में लगाएं
0: जी।
2: तो इस तरीके से करना है, फिर धीरे धीरे क्या करना है, 2.5 सेकंड में रोकना है, 2.5 सेकंड भरना है, फिर 3 सेकंड छोड़ने में लगाना है। छोड़ने में अधिक समय लगाने का जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके श्वासों का रिदम बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको काफी लाभ होगा उसमें
0: जी। कमल जी आपसे जानना चाहेंगे पाचन तंत्र ठीक रखने के लिए सवेरे उठकर कौन से 3 योग करने चाहिए।
1: सवेरे सबसे पहले कार्य करना चाहिए 1 ग्लास या 2 ग्लास या 3 ग्लास, जितना आपसे हो सके उतना पानी पीना है, बट इसमें कंडीशन है कि आपको कुल्ला नहीं करना है, और रात में ब्रश करके सोना है
0: जी,
1: ठीक है। मुंह साफ रहना चाहिए, रात में जो भी लार बनती है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जनरली हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, हम लोग सुबह उठते ही कुल्ला करते हैं और हमारी जो बहुमूल्य लार है
0: उसको
1: हम वेस्ट कर देते हैं, तो जब बॉडी के अंदर वो लार पानी के साथ जाती है तो आपकी पाचन क्रिया को स्वतः ही तंदुरुस्त करती है। साथ ही साथ उसके बाद ताड़ासन कर सकते हैं, हाथों की प्रक्रिया होती है जिसमें कमर में रोटेशन होती है, इस तरह के जो 2-3 आसन होते हैं वो कर सकते हैं रोटेशन के साथ, हाथों को लेफ्ट राइट लेके जाना है जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, बैठ करके किया जा सकता है, इसके अंदर घुटनों को लेफ्ट राइट दबाना जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, इससे पाचन क्रिया सुदृढ़ होगी और पाचन क्रिया में लाभ मिलेगा। धन्यवाद।
0: बिल्कुल लाभ मिलेगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश। राकेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे
6: जी। धन्यवाद। मैं राकेश कोटखाई शिमला, और
4: मेरा एक प्रश्न है, जिनको मोतियाबिंद है या किसको कम दिखाई देता है, तो मैं विशेष ये पूछना चाहता हूँ कि आंखों की रोशनी

0: बढ़ाने के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए?
1: आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, बड़ा बहुत ही अच्छा है, आप रात को ब्रश करके अच्छे से सोएं, ठीक है? और जो लार होती है ना मॉर्निंग में, उस लार को आंखों में काजल की तरह लगाएं, तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, धीरे धीरे चश्मा भी उतर जाता है इससे, ठीक है? और मुंह में पानी भर के, फ्रेश होने के बाद मुंह में पानी भर के आंखों में छपके मारना, और वो बेस्ट ये होगा कि यदि आप रात को त्रिफला भिगो देते हैं, उसको छान के सुबह उसमें आंखों को धोना, यानी कि आई कप मिलते हैं उसमें आंखों को घुमाना, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है।
2: अनीता जी, जैसे आपने बताया कि रात में ब्रश करके सोएं और सवेरे जो लार है उसको आंख में लगाएं, क्या एजेंट ऐसा होता है उसमें जो आंखों के लिए लाभदायक होता है?
1: लार तो सर बहुत इफेक्टिव है, जैसे भैया ने अभी बोला था, कमल भैया ने, कि आपको कुल्ला नहीं करना पानी पीने से पहले, तो वो लार आपके लिए उससे बढ़िया दवाई तो कुछ है ही नहीं।
2: बिल्कुल। और महाराष्ट्र के पुणे से जुड़ गए हमारे श्रोता श्रीकांत झकड़े। श्रीकांत जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है हमारे विशेषज्ञ से?
3: हेलो, नमस्कार, मैं मुकेश जी।
2: जी नमस्कार,
3: दोनों नमस्कार है
2: जी। सवाल पूछिए। शायद कहीं फोन लाइन में डिस्टरबेंस है, इस वजह से आपका प्रश्न हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं, आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। उससे पहले जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य पर अगर हम बात करें अनीता जी, तो छात्र परीक्षा के तनाव को योग से कैसे कम कर सकते हैं? कोई एकाग्रता बढ़ाने वाला कोई आसन है?
1: जी हाँ बिल्कुल, प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये प्राणायाम बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, जिससे कि उनकी एकाग्रता बढ़ती है, और थोड़ा थोड़ा वो अनुलोम विलोम और कपालभाति भी करें, लेकिन उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है, जो हर बच्चा आसानी से कर सकता है।
2: जी, और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, विजय कुमार। विजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: मुकेश कुमार जी,
2: जी क्या सवाल है आपका?
4: कुमार जी नमस्ते।
2: नमस्कार, क्या सवाल है आपका?
4: डीजे और सर को भी मेरा नमस्कार जी।
1: नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।
4: मेरा पहला सवाल यह है कि हीट बहुत ज्यादा है
2: जी,
4: इसके लिए कौन सा योग करना चाहिए? और मेरा पेट का ऑपरेशन हो गया है 2004 में
2: जी।
5: जी,
4: और योगा करने से वो ये होगा
5: वेट के लिए? विजय कुमार जी, सबसे पहले तो अपने खाने पीने की जो दिनचर्या है उसको नियमित करें, एक निश्चित समय पर खाएं और सूर्योदय के बाद खाना बंद करें, पहला सबसे पहला कार्य आपको ये करना है। दूसरा कार्य आपको ये करना है, जैसे आपका ऑपरेशन हो रखा है तो सिस्टम यानी गड़बड़ हो रखा है, तो आपके जीवन शैली के आपने फर्मेंटेड चीजों का ज्यादा प्रयोग करना है। फर्मेंटेड चीजों के अंदर आप बासी चावल ले सकते हैं दही के साथ में, अगर सूट करता है, उसके बाद कांजी है और उसके बाद अचार है, इस तरह की चीजों का आप यूज कर सकते हैं, पत्ता अमृत भी ले सकते हैं। और आसनों की अगर बात करें तो आप लेट करके दोनों पैरों को ऊपर उठाना, गोल गोल घुमाना, दोनों पैरों से तभी करें जब आपको हाई बीपी ना हो, अदरवाइज एक एक पैर का प्रयोग करें। साइकिलिंग का प्रयोग करें लेट करके, वो वेट में काफी लाभदायक है। और बैठ करके कटी सौंदर्य आसन होता है, लेफ्ट राइट पैर को खोल करके हाथों को घुमाना, ये करना है आपने। और सूर्य नमस्कार अधिक से अधिक करने का प्रयास करें, निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
2: अनीता जी, एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि योग और प्राणायाम मेडिटेशन, इसमें क्या फर्क होता है, क्या दोनों को करना आवश्यक है?
1: ये दोनों योग के ही अंग हैं
2: जी,
1: प्राणायाम और आसन
2: जी।
1: प्राणायाम श्वासों की क्रिया है जिसको कि हर व्यक्ति कर सकता है। कई बार क्या होता है कि एजड पर्सन ये सोचता है कि शायद मैं तो योग कर नहीं सकता, योग में वो केवल आसन मानते हैं, तो आसन ही नहीं, यदि आप प्राणायाम को भी अपना लेते हैं, और प्राणायाम संपूर्ण है, प्राणायाम से आप शरीर के हर रोग को निकालकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं
2: जी।
1: तो श्वासों की क्रिया को ही प्राणायाम कहा जाता है, और योग का ये एक अंग है, और व्यायाम और आसन इसके और विभिन्न अंग है।
2: और हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं बिहार के दरभंगा से, मोहन पासवान। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से?
6: जी धन्यवाद, प्रणाम इकट्ठे सर
2: जी, बताइए
6: सर। जानना चाहता हूँ कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वास्थ्य का स्वस्थ होना जरूरी है, तो इसके लिए योग व्यायाम और खान पान कैसा होना चाहिए? दूसरा बात है सर, दूसरा प्रश्न है कि की आरोग्य विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय पूरे देश में पंचायत से लेकर शहर मोहल्ला तक खोलने की योजना है क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मैडम?
1: नमस्कार। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी योजना जो है योगियों की तो है ही, श्रद्धेय स्वामी जी की भी है इसमें, रामदेव बाबा की भी है इसमें। ये बिल्कुल वो चाहते हैं कि गांव गांव और गली गली तक ये सुविधा उनको पहुंचे। और आपने बोला स्वास्थ्य के लिए बोला है ना कि तो उसके लिए क्या है, आपको आपको प्राणायाम अपनाना है। श्वासों की क्रिया में क्या, लंबे देखिए श्वास आप प्रतिपल लेते हैं, उसी श्वास को ध्यान के साथ कंसंट्रेट होकर शांत मन से बैठ जाएं और लंबे गहरे श्वास भरें और लंबे गहरे श्वास छोड़ें। उससे आपको बीमारियां भी दूर होंगी। देखिए आपको लगता है कि श्वास तो हम प्रतिपल ले रहे हैं, लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम से आपके रोग जो खत्म होते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, कोरोना के टाइम में तीव्र भस्त्रिका हम लोगों ने किया और हमें कोरोना के पेशेंट के पास बैठकर भी हमको कोरोना का कोई मतलब नहीं।
2: बहुत बड़ी बात। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। तो अनीता जी, घर से काम करने वालों के लिए आंखों और मानसिक थकान दूर करने का कोई योग है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और अधिकतर लोग मोबाइल और कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं तो बड़ी थकान सी होती है।
1: देखिए आंखों के लिए तो पहली बात तो ये कि हर 2 घंटे के बाद आंखों को धो लें पानी से
2: जी।
1: और उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ जैसे कि दवाई आती है ना आंखों की, हमारे तो दृष्टि है, इसको डालें थोड़ा सा आंख में। जो कंप्यूटर पे बैठते हैं उनको जरूर डालनी चाहिए। 2-3 तरह की अब तो आंखों की दवाइयां आ गई हैं। और जहां तक बात है कि हमें थकावट हो जाती है तो थोड़ा जब हम थोड़ा समय निकालेंगे शरीर के लिए, 1 घंटा हमको जरूर निकालना चाहिए। और आप सुबह प्रातःकाल में यदि थोड़ा कपालभाति अनुलोम विलोम ये करेंगे तो आपके शरीर की थकावट बहुत जल्दी दूर होगी आपको लगता है, और आप इतने एक्टिव हो जाएंगे कि लगेगा कि हम पड़ोसियों के भी काम कर दें।
2: जी बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, रशीद अहमद खान। रशीद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
7: थैंक यू। नमस्ते सर, सब लोगों को नमस्कार।
1: नमस्कार।
7: पिछले हफ्ते आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए थे, फोन नहीं लग पाए थे, इसलिए अभी मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ पूरे देशवासियों को, पूरे
2: प्रधानमंत्री शुभकामनाएं। जी सवाल पूछिए।
7: सवाल हमारा ये है कि जैसे क्या योगा करने से चश्मा उतर जाता है, एक बात। दूसरी बात, क्या गुलाब जल वगैरह डालना आंखों में कितना लाभदायक रहता है, प्लीज बता दीजिए।
5: धन्यवाद ऋषि जी। बिल्कुल निश्चिंत ही चश्मा उतर जाता है, परंतु उसके लिए आपको योग निरंतर करना होगा। और आंखों में गुलाब जल तभी डालें जब गुलाब जल आपका शुद्ध हो। शुद्धता की जांच आप अपने लेवल पर कर लें। अगर गुलाब जल नहीं मिलता है तो फिर आप शुद्ध लेवल पर ना मिलने की वैसे आंखों में कुछ भी डाल लें, ठीक है। और योग के अंदर आप प्राणायाम सबसे ज्यादा करें, चश्मा बिल्कुल उतर जाएगा। और आंखों के अंदर जैसे अनीता जी ने पहले ही बताया कि सुबह सुबह की बासी लार जो होती है आंखों में रेगुलर बेसिस पर लगाएं काजल की तरह, आपको चश्मा जरूर उतर जाएगा। धन्यवाद।
2: और अनीता जी, गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम करने के लिए कौन सा प्राणायाम है जो हम 2 मिनट या 5 मिनट जितनी जरूरत है कर सकते हैं?
1: उसके लिए सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम
2: जी,
1: आपके मन को शांत करने के लिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और अपना जो ध्यान का मैंने आपको बोला ना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके करें प्राणायाम को। यदि आप ध्यान में बदल कर, यानी कि आप फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ अनुलोम विलोम करते हैं
2: जी,
1: तो आपका माइंड काफी शांत हो जाता है। लेकिन करेंगे तो मिलेगा रिजल्ट।
2: बिल्कुल करेंगे तो होगा। कमल जी, आजकल डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, योग इनकी रोकथाम में किस तरह सहायता कर सकता है?
5: देखिए डायबिटिक और बीपी ये बीमारियां आज की डेट में ही पैदा हुई हैं, ये पहले नहीं हुआ करती थी। उसके पीछे कारण है कि हमारा लाइफस्टाइल खराब कर लिया हम लोगों ने, तो ये मतलब नेचुरल बीमारी नहीं है, हम लोगों के द्वारा पैदा की गई बीमारी है
2: जी।
5: बीपी का मुख्य कारण हमारे यहाँ रेडिएशन फैला हुआ चारों तरफ, हम लोग जहाँ जाते हैं वाईफाई है, मोबाइल के अंदर वाईफाई है, ये भी एक मुख्य कारण है
2: जी।
5: हर जगह तनाव में, टॉक्सिक माहौल में, ऑफिस में भी टॉक्सिक माहौल है, कई जगह पर बहुत ज्यादा अननेसेसरी प्रेशर रहता है, ये भी एक मुख्य कारण होता है। पहले कारण जानना जरूरी है, उसके बाद ही निवारण होगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी कार्य करें, योग प्राणायाम जो भी करें, इतना स्लो करें कि आपको स्वयं की आवाज भी सुनाई ना दे। आप प्राणायाम कर रहे हैं तो इतना धीरे धीरे करें। मैंने कई बार देखा लोग गलती में है ना बहुत तेज करने लग जाते हैं, उसका फायदा नहीं होता, नुकसान होता है
2: जी, जी, जी।
5: बट मेरा मानना है आप कम करें, बट जितना धीरे करेंगे आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। मेरा अपना अनुभव यह है और डायबिटिक के लिए अगर आप बात करें तो मंडूकासन वन ऑफ द बेस्ट है, रामबाण है, घुटने के बल बैठना होता है, वज्रासन में बैठना होता है। और वज्रासन की खास बात यह है कि खाने के बाद इकलौता एक ऐसा आसन है जिसमें आप बैठ सकते हैं, इससे खाने के बाद पाचन क्रिया भी दुरुस्त होती है और खाना जो खाया वो जल्दी पचता भी है। जैसे किसी का समय नहीं है टहलने का तो वज्रासन में बैठ सकते हैं 5-10 मिनट, उनका जो भी खाया हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसे मंडूकासन में दोनों मुट्ठियों को बंद करें, नाभि के पास लगाएं, आगे की तरफ झुकें, हिप और एड़ियां मिले रहेंगे, जितना संभव हो सके आगे झुकने की कोशिश करें, गर्दन सीधी रखनी है और सांसों को नॉर्मल लेना है। ये है मंडूकासन, ये बिल्कुल रामबाण इलाज है। इसके अलावा वक्रासन है, गौमुखासन है, जिसपे भी नाभि पे प्रेशर पड़ता है वो सब डायबिटिक के लिए लाभदायक है। धन्यवाद।
2: निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को इससे लाभ होगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से अनिल। अनिल, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए, क्या सवाल है आपका?
8: सर, हमारा सवाल ये है कि जो महिलाएं गर्भवती होती है

0: धीरे बहुत धीमी गति से मरकट आसन कर सकते हैं। प्राणायाम में उनको कपाल भाती नहीं करना है, बाह्य प्राणायाम नहीं करना है, उनको अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है, उद्गीत करना है। तो ये कुछ प्राणायाम है जो उनको करने हैं और हमेशा योग शिक्षक के समक्ष बैठकर ही वो करें, सीखें, उसके बाद करें।
1: इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, उनको बटरफ्लाई रेगुलर करना है। बटरफ्लाई करेंगे रेगुलर, बहुत आसान होता है, बैठ के किया जाता है, ये बहुत लाभदायक रहेगा। धन्यवाद। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर। धर्मवीर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए क्या सवाल है आपका।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: धर्मवीर गांधी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट को भी नमस्कार।
1: धन्यवाद।
2: एक मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि मन में सवाल आया था कि आजकल जो हमारी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी हाइट कम रह जाती है, कम होती है, तो बेचारी ऊंची हील की सैंडल पहनती है हाइट बढ़ाने के लिए, पर वो ठीक नहीं है। पर उनका जो शारीरिक हाइट कैसे बढ़े उसके लिए कौन सा आसन करना चाहिए, क्योंकि सुनने वाले सभी ये इसको जरा गौर से सुनेंगे, क्योंकि ये मेन समस्या आज की तारीख में शादियां नहीं हो पाती, कई जगह टूट जाती है इस बारे में। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि घर घर की ये कहानी है।
0: घर घर की, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनके खाने पर ध्यान दीजिए। जितना ये बच्चे फास्ट फूड खाते हैं वो आप उसको डाइजेस्ट नहीं होता, जब डाइजेशन ठीक नहीं होता तो प्रॉपर हाइट कैसे बढ़ेगी। सबसे पहले आप उसका अब खाने पे ध्यान दीजिए। मैं देखती हूँ, मेरा भी चिकित्सालय है तो मैं वहां बच्चों को यही समझाती रहती हूँ कि बेटे इन चीजों को मत खाइए जो आपको नुकसान देती है। प्राणायाम करें और आसन, ताड़ासन है, ठीक है, वृक्षासन है, और आपको 5-6 आसन का ये उपयोग वो करेंगे तो उससे उनकी जो है ना हाइट बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले फिर भी मैं ये कहूंगी कि खाने का ध्यान रखें, समय से उठना, समय से सोना, इस चीज का बहुत जरूरी है उन पर नियंत्रण करना।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को इससे जरूर लाभ होगा। और कमल जी आपसे जानना चाहेंगे, ये श्रोता पूछते हैं कि खाली पेट योग करना जरूरी है क्या, और खाना खाने की कितनी देर बाद योग कर सकते हैं।
3: जी बिल्कुल, खाली पेट करना योगा बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना खाली पेट अगर योगा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा
1: जी,
3: क्योंकि उस समय हमारा सिस्टम पाचन क्रिया में लगा होता है। अगर हम खाना खाने के बाद योग करते हैं उस समय सारा ब्लड सर्कुलेशन पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में लगा होता है, तो योग नहीं करना चाहिए। खाने के कम से कम अगर दिन की बात करें तो 4-5 घंटे बाद करना चाहिए, दोपहर के बाद में, और शाम को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खाने से आप एक काम कर सकते हैं, जिनको इस तरह की परेशानी होती है तो खाना खाने से 1 घंटा पहले कर लें, आधा घंटा पहले कर लें, वो उनके लिए लाभदायक रहेगा। और अर्ली मॉर्निंग सबसे ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि उस समय नेचुरल हवा होती है, उस समय पॉल्यूशन नहीं होता बॉडी के अंदर, बिल्कुल एकदम नेचुरल नॉर्मल रहती है बॉडी, एकदम रिफ्रेश रहती है, तो उस समय करेंगे ज्यादा लाभदायक रहेगा। इस तरह से करें ज्यादा लाभदायक रहेगा।
1: और रायबरेली से एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमा शंकर वाजपेयी। रमा शंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी।
4: मेरा सवाल यही है कि योग और दंड बैठक, जिसे हम लोग देहाती भाषा या आम प्रचलन में योग, एक तो बहुत गणित कठिन है, और जो है ये दंड बैठक, ये भी स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ लाभदायक है या क्या है?
1: जी
3: रामा शंकर जी नमस्कार, धन्यवाद। आपने जो प्रश्न किया, ये बेसिकली दंड बैठक योग के अंदर जो प्राणायाम के बल जो आसन होते हैं उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी। दंड बैठक जो पहले प्राचीन टाइम पे हुआ करता था वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप जब दंड बैठक लगाएंगे तो उससे शारीरिक विकास ज्यादा अच्छा होगा, और जिनके शरीर में बल नहीं है उनके अंदर बल आएगा। युवाओं को खासतौर से बहुत भाता है, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा चीज होता है जो उनकी स्फूर्ति को बढ़ाए और उनके शरीर से पसीना जल्दी निकाले। तो दंड बैठक का समावेश ऑलरेडी योग के अंदर होता है, आप उसका प्रयोग करें और निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। बट इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि दंड बैठक के साथ साथ प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि जब शरीर के अंदर जान ही नहीं होगी तो फिर दंड बैठक लगाई नहीं जाएगी। तो प्राणायाम जितना ज्यादा अच्छे से करेंगे वो आपको ज्यादा लाभ देगा।
1: और बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं अमित। अमित क्या सवाल है आपका।
5: जी नमस्कार सभी विशेषज्ञ टीम को, और मैं अमित उपाध्याय सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल था कि जैसे कि हम लोग योगा करते हैं अलग अलग, जैसे कोई ट्रेनर हो गया, बाबा रामदेव का एक अलग रहता है और बाकी जो ट्रेनर का रहता है, जो मॉड्यूल रहता है अलग एंगल से रहता है, तो ये हम लोग के शरीर में कितना ये इफेक्ट डालता है कि कभी उस ट्रेन कर लिया मैंने, देखकर हम लोगों ने इसको देखा तो इससे कर लिया, इससे कुछ शरीर में इफेक्ट पड़ता है क्या, या फिर या 10 दिन या 1 महीने करने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं, रेगुलर नहीं हो पाता है, तो इससे शरीर में कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या। जी यही सवाल था।
0: देखिए रेगुलरिटी तो बहुत जरूरी है। आप देखिए कि जो भी योगाचार्य होते

0: नहीं, वो कंटिन्यू करते हैं, सालों साल करते हैं, जब तक जीते हैं तब तक करते हैं। तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। 10 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, हमने इतने दिन से अपने शरीर को बिल्कुल बेकार बनाया हुआ है, डल बनाया हुआ है, तो रेगुलरिटी जरूरी है। और जो यदि आपको कोई सिखा रहा है, वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई आपको शिक्षक सिखा रहा है तो उसके उस संपर्क में आके आप कर सकते हैं।
1: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, इंदर भान सिंह। इंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद उनसे संपर्क कट गया है। अनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जिन्होंने घुटने बदलवाए हैं, कुर्सी पर बैठकर भी कोई योग आसन है?
0: हाँ नहीं, सबसे पहली बात वही है, मैंने बोला ना कि कई लोग कहते हैं अरे हम योग कैसे करें। योग का एक अंग है प्राणायाम, जो कि संपूर्ण है। यदि हम आसन भी नहीं कर पाते हैं तो प्राणायाम करें, जिन्होंने घुटने बदलवाए या कुर्सी पे बैठ के करते हैं नहीं वो ज्यादा कुछ कर सकते हैं। और बैठने के आसन भी बहुत सारे हैं, लेकिन वही है, योग शिक्षक के संपर्क में जाकर वो अपना आसन कर सकते हैं। घुटनों को हिलाते रहें, हाथों को हिलाते रहें, इतना तो कर ही सकते हैं। रोटेट करें, गोल गोल घुमाएं, तो ये कर सकते हैं। और प्राणायाम सबसे कंपलसरी है।
1: कमल जी, बुजुर्गों में याददाश्त की कमी हो जाती है, कमजोर होने लगती है, तो उसके में उस स्थिति में भ्रामरी प्राणायाम लाभदायक हो सकता है?
2: जी, बहुत अत्यंत लाभदायक है भ्रामरी प्राणायाम। और इसके अलावा अनुलोम विलोम भी करें साथ साथ, क्योंकि वो भी बहुत लाभदायक होता है। वो आपकी जो तीसरी नासिका होती है, जो इस विशेष नस बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी होती है, उसको एक्टिवेट करता है भ्रामरी प्राणायाम। के अलावा बुजुर्गों को ये भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपस में मिलें, और हाथों की अलग अलग एक्सरसाइज भी क्या करें, जैसे बदल बदल के क्या करें, और भी कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे मोबाइल लेफ्ट की जगह राइट में रख लिया, तो इससे क्या होता है कि मानसिक रूप से उनको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और सबसे ज्यादा मैं चाहूंगा बुजुर्गों से कि आपस में वार्तालाप ज्यादा बना के रखें, क्योंकि वार्तालाप बनाते नहीं है तो उसकी याददाश्त पे असर होता है। तो जितना आप में बातचीत करेंगे उतना बुजुर्ग फायदेमंद रहेंगे।
1: और श्रोताओं, घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही हमारी योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। और कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके पसंदीदा शो जिसका नाम है भूले बिसरे गीत। श्रोताओं, यादें भी बड़ी अजीब होती हैं, कभी गुदगुदाती हैं तो कभी पलकों को भिगो जाती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरे दौर के ऐसे ही नगमे जो सीधे आपके दिल में उतर जाएंगे। चलिए यादों के इस हसीन सफर की शुरुआत करते हैं साल 1949 की एक यादगार फिल्म बरसात से। जब दिल किसी के इंतजार में बेकरार होता है तो धड़कनें बस यही गुनगुनाती हैं। लता मंगेशकर जी की आवाज और निम्मी जी पर फिल्माया, सुनते हैं ये सदाबहार गीत।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत फिल्म बरसात से। बोल थे हसरत जयपुरी के और संगीत शंकर जयकिशन का। श्रोताओं, क्या सादगी थी इस दौर के गानों में। लेकिन मोहब्बत की शुरुआत तो बस एक नज़र से होती है। जब दो निगाहें मिलती हैं तो बिना कुछ कहे ही दिल के सारे राज बयां हो जाते हैं। साल 1948 में आई फिल्म अनोखी अदा का ये गाना इसी खूबसूरत एहसास को बयां करता है। नौशाद साहब का संगीत और शमशाद बेगम की खनकती आवाज़। आइए सुनते हैं, नज़र मिल गई जाने किसकी नज़र मिल गई।

निगाहें मिली, मोहब्बत हुई, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी इसी मोहब्बत के बदले में सिर्फ दर्द और तन्हाई मिलती है। साल 1947 की मशहूर फिल्म जुगनू का एक ऐसा ही दर्द भरा नगमा, जिसने मोहम्मद रफ़ी साहब और नूरजहां जी की आवाज़ में हर टूटे दिल की दास्तान बयां की। आइए डूब जाते हैं इस गहरे एहसास में।

श्रोताओं, कहते हैं कि इंसान तो चला जाता है, लेकिन उसकी यादें हमेशा दिल के किसी कोने में महफूज रहती हैं। जब भी वो गुजरा हुआ वक्त याद आता है तो आंखें भर आती हैं। साल 1963 की फिल्म पारसमणि का एक ऐसा गीत जो आज भी उतना ही ताज़ा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की संगीत और असद भोपाली के बोल, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की हैं। तो आइए सुनते हैं फिल्म पारसमणि का ये गीत।

श्रोताओं, यादों का ये सिलसिला जब हद से बढ़ जाता है तो दिल तड़प उठता है। ऐसे में ये दिल अपने ही साए से भागना चाहता है और किसी ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ कोई दर्द ना हो। साल 1952 की फिल्म दाग में दिलीप कुमार साहब पर फिल्माया ये गीत, जिसे तलत महमूद जी ने अपनी मखमली आवाज़ से अमर कर दिया। सुनिए और महसूस कीजिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत। श्रोताओं, गम की इस दुनिया से भागकर दिल आखिर जाए भी तो कहाँ जाए। जब चारों तरफ रास्ते बंद नजर आते हैं तो इंसान बेबस हो जाता है। साल 1954 की फिल्म टैक्सी ड्राइवर का ये फलसफा आज भी सच लगता है। देवानंद साहब पर फिल्माया और तलत महमूद जी की आवाज में सजा ये आइकॉनिक गाना आइए सुनते हैं। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार एस डी बर्मन।

श्रोताओं, रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सुबह का सूरज जरूर निकलता है। दर्द और तन्हाई के बाद भी उम्मीद का एक चांद हमेशा चमकता रहता है। आज के सफर के आखिरी मुकाम पर हम आपको लेकर चलते हैं साल 1954 की फिल्म तिलोत्तमा की ओर, जहां कल्याणी दास जी की सुरीली, जहां आशा भोसले जी की आवाज में ये हमने गीत लिया है। और इस गीत में यही बताया गया है कि वक्त चाहे जैसा भी हो, बदलता जरूर है। तो आइए सुनते हैं ये नायाब और भूला बिसरा गीत, जब जब निकलेगा चांद तुम्हें याद आएंगे। श्रोताओं, आवाज़ है आशा भोसले की, बोल हैं जीएस नेपाली के, और धुन बनाई है एसएन त्रिपाठी ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम नगमा फिल्म तिलोत्तमा से।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। आज ये कार्यक्रम लेकर मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त शिवा शुक्ला। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज जैसा कि आप जानते हैं आप सुनते हैं अपनी पसंद के गीत, तो भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश हमारे इस नंबर पर 9457078288 पर। तो श्रोताओं, करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत और ले लेते हैं पहला गीत जिसके लिए हमें फरमाइश भी आनी शुरू हो गई है। कार्यक्रम का पहला गीत श्रोताओं हमने लिया है फिल्म दोस्ती से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश मिली है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा ओम प्रकाश मल्होत्रा की ओर से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नू साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किल साबरी, जरीफ अंसारी, परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से। श्रोताओं, इसी गीत को सुनना चाहते हैं जिला अमरोहा नई बस्ती पतेई खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी, सुदेश चौहान। इसी गीत के लिए हमें एक पत्र मिला है श्रोताओं, गांव नगला उपभन नजीबाबाद जनपद बिजनौर से ठाकुर विजयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, केजल, छोटी, शिवी, क्रीधा, ओम प्रकाश, बलवंत, पूनम और उनके परिवार के सदस्य की ओर से। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा और रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दोस्ती से ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए आप भी भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर 9457078288। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत सुनवा देते हैं आपको, आप ही की पसंद का, जो लिया है हमने फिल्म क्या दिल ने कहा, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत के लिए फरमाइश हमें मिली है पींगा वाला चौक कोरैया जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी की। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात अदीब और कादिर चौधरी। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। इसी गीत के लिए फरमाइश आई है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिक्रेस्टो, रोजी डिक्रेस्टो, परल डिक्रेस्टो, विलिस डिक्रेस्टो की ओर से। श्रोताओं, इसी गीत को सुनना चाहते हैं जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़, गांव टोरोवाल जिला नवान शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, त्रिपदा कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, आसिफ अली खान, मोमीना नाज, मुस्काम आसिफ, सादिक अली खान, सारिक अली खान, ये हमें फरमाइश अपनी भेज रहे हैं कस्बा अग्रवाल मंडी टडीरी बागपत उत्तर प्रदेश से। इसी गीत को सुनने के लिए हमें अगली फरमाइश आई मिली है गांव पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, सूरज कुशल वर्मा की ओर से। श्रोताओं, इसी गीत को सुनना चाहते हैं जिला मुरादाबाद गांव दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह और मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहाना अब्बासी, अबान अब्बासी और इनके परिवार के सभी सदस्य ये सुनना चाहते हैं यही गीत, लेकिन ये हमें मैसेज भेज रहे हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से। श्रोताओं, इसी गीत के लिए अगले फरमाइश करता है पद्मा टॉकिज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्वनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह और गांव दूल्हापुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म क्या दिल ने कहा का ये गीत।

आइए श्रोताओं, लेते हैं आपकी अगली पसंद, देखते हैं किस गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है। फरमाइश करता है जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई भारती देवी। आप सुनना चाहते हैं फिल्म चोरी चोरी का गीत, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में, बोल आनंद बख्शी के और संगीत साजिद वाजिद का। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं वाइट फील्ड बेंगलोर से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल, कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, पुनावले पुड़े से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवले। इसी गीत को सुनना चाहते हैं अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वैदिका फूलमाली। इसी गीत के लिए फरमाइश मिली है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा की ओर से। श्रोताओं, अगले फरमाइश करता है इसी गीत के लिए सहारनपुर से सोनाली, आशा नारंग, सुरेश नारंग, सराय मीर स्ट्रीट नगीना से रईस अहमद राही, रुशेज अहमद राही, रुशमान अहमद राही और इनका समस्त परिवार के सदस्य, मोहल्ला बरादरी महमूद खां रामपुर से हमें अगली फरमाइश मिली है भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान और अफसर अली, नगमा नाज मंसूरी की ओर से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, फर्रुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी चौरसिया, संजू लल्ला चौरसिया, पवन गौड़ और योगेंद्र नायक। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म चोरी चोरी से ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से इस वक्त फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, सुनवाते हैं आपको ये अंतिम गीत जो हमने लिया है फिल्म धुंध से, महेंद्र कपूर की आवाज़ में। बोल साहिर लुधियानवी के हैं और संगीत रवि का। इस गीत को सुनना चाहते हैं परीमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान, गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याणम, सुरेंद्र, शमशेर, मनोज, नगीना से बड़ा बातुल माल माल से अकबर अली, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान, आर के राजा, नाज पैलेस, अजमर शरीफ। शरीफ से हमें ये मैसेज मिला है, मैसेज भेजने वाले हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा, असद अरहाम, मोहम्मद आलम हाशमी। हरिद्वार से हमें ये फरमाइश आई है रवि, रवि की ओर से ये लिख रहे हैं जवालियागढ़ मीरपुर हरिद्वार से। मौला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से फरमाइश करता है मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर। इसी गीत को सुनना चाहते हैं रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। करोला मुरादाबाद से अयूब खान, ईरम गुड़िया, शोएब खान। सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी। अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपक मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल पाठक। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग, बन्ने बुजुर्ग बलेरा, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं जिला छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोटके, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोटके, वैष्णवी घोटके, गायत्री घोटके, यज्ञेश घोटके। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है हमारे इन श्रोता की ओर से जो हमें मैसेज भेज रही हैं, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय, दुबीहा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय, प्रांजल रॉय, राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाड़े, अर्चना हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि, कस्बा उगहदी बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार, कार्तिक गुप्ता, निर्भय गुप्ता। ये सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये कार्यक्रम का अंतिम गीत जो हमने लिया है फिल्म धुंध से।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार और फिर अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एविया पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप H में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashwari, the news read by Kiran Jha. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense, following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector. Prime Minister Modi said the two sides also signed the memorandum of understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility. Speaking on this occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France tomorrow to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Prime Minister Modi will then participate in a working session on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries and representatives of the World Bank and the African Development Bank. The French city of Evian is all set to host the 52nd G7 summit beginning tonight. The meeting is getting underway as the US and Iran have finalized a deal to end the West Asia conflict. French President Emmanuel Macron will formally welcome leaders of G7 countries, which include the United States, the United Kingdom, Canada, Germany, Italy and Japan, along with the presidents of the European Council and the European Commission later tonight. India, Brazil and South Korea, Kenya and Egypt have been invited to the summit as partner countries. Defence Research and Development Organisation DRDO today successfully conducted the flight test of the indigenously developed long-range land attack cruise missile from APG Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, Defence Ministry said that the missile achieved all mission objectives, validating critical technologies and demonstrating India's growing long-range precision strike capabilities. Union Public Service Commission UPSC today declared the result of Civil Services Preliminary Examination CSE for this year. UPSC informed that this year, against more than 1,000 vacancies, a total of more than 13,000 candidates have been shortlisted for the Civil Services main examination. UPSC also informed candidates that marks, cut-off marks and answer key will be uploaded on the Commission's website only after the declaration of the final result. The candidates can download the prelim result on the official website of UPSC, upsc.gov.in. Noida International Airport at Jewar in Uttar Pradesh commenced commercial flight operations today, marking a significant milestone in the country's civil aviation sector. IndiGo became the first airline to operate from Noida International Airport, with the inaugural flight landing in Jewar from Lucknow this morning. In the FIFA World Cup football, the Group H clash between Spain and Carabao
3: Underway at Atlanta, United States, and earlier in the day, Sweden thrashed Tunisia by 5-1 in the Group F match in Mexico. And that is the end of the news bulletin.
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी इस सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। प्रातःकालीन सभा में सवेरे 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।